मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर एवं एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पांचवी तिथि तदनुसार 22 मई 2026 प्रातः के 5:58 और 36 सेकंड हुए हैं। इसी के साथ हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। समाचारों के तुरंत बाद एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सू के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आती हैं। ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भक्ति और आस्था मन का सबसे पवित्र भाव है। जहाँ ईश्वर की भक्ति है वहाँ सुकून है।

कण कण में तू, घट घट में तू, तू ही सृष्टि का आधार है, तेरी ही कृपा से चलती सांसें, तू ही हमारा पालनहार है।

कभी धूप है कभी छाव है, तू ही विपदा में हमारी नाव है। विश्वास की ज्योत जले मन में, हे ईश्वर तेरी रजा में ही हमारी खुशी है।

प्रभु आप सागर हैं, हम हैं एक बूंद, आपकी महिमा का नहीं कोई अंत है। हे प्रभु, बस इतनी विनती है हमारी, आपका नाम हम भजते रहें हरदम।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान।

संतान के आसन्न विरह में तड़पते सिर धुनते राजा दशरथ ने पुत्र वधु को अनेक प्रकार से वनगमन से विमुख करने की चेष्टा की। संकोचवश सीता ने प्रतिवाद नहीं किया, किंतु उनका मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त था, अतः उन्हें पति को छोड़कर घर में रहना श्रेयस्कर नहीं लगा और न ही वनगमन भयावह लगा। कैकेयी ने तमककर मुनियों के वस्त्र, माला, मेखला आदि और कमंडलु राम के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम के वश में दुर्बल हृदय वाले राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ सकते। उनके पुण्य, यश और परलोक भले ही बिगड़ जाएं, वे तुम्हें वन जाने को भी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता कैकेयी की सीख श्री राम को भली लगी, किंतु राजा दशरथ को ये वचन वाण की भांति लगे और वो मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को सोच नहीं पड़ता कि वे क्या कहें। श्री राम मुनि का वेश धारण कर माता पिता के सम्मुख शीश नवाकर चल पड़े। राजमहल से निकलकर वे कुलगुरु वशिष्ठ के द्वार पर आ खड़े हुए। वहां ब्राह्मणों तथा याचकों की टोली को वर्षासन देकर उन्होंने दास दासियों को गुरु को सौंपा और हाथ जोड़कर कुलगुरु से प्रार्थना की कि वे माता पिता और पालक की भांति उनकी देखरेख करें। अयोध्या वासियों से उनकी प्रार्थना थी कि वे माता पिता को किसी भांति का कष्ट न होने दें।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बात तो मैं आज जिक्र करेंगे। अमरूद के बागों की देखभाल कर जाना के सावधानी बरतें, इस बारे में कुछ सुझाव। भाई देखो, जो नए पौधे लाए हैं, पहली बात तो है उनको गर्मी और लू से बचाने की। और ये अमरूद अमरूद की बात नहीं है, जो भी हमने बाग लगा रखे हैं, नए बाग लगाए हैं, छोटे पौधे हैं, तो सारे के सारे पौधे ने गर्मी से और लू से बचा कर रहे हैं। पहली तो बात के जब हम नया बाग लगाए हैं, उसके चौगुर्दे के कुछ ईशे वायुरोधक पेड़ हमने लगाने चाहिए, जो सर्दियाँ में सर्द हवाएँ तो उनका बचाव करें और गर्मियाँ में लू तो उनका बचाव करें। अगली बात यह आज है कि उसके चौगुर्दे कोई ऐसी बाड़ लगा दें, जट्टी कट्ठी की है या और इस तरह की, इसी कि भाई आवारा पशु न कोई

0: नुकसान ना पहुंचा पाएं। छोटे पौधे हैं उनको किसी डंडी का या सोटी का सहारा देना। और ईब का जो मौसम देखें तो इस मौसम में देखें सिंचाई सप्ताह में एक बार ज़रूर करनी है। वो बाकी अपनी खेत की नमी का हिसाब देख लें, खेत की मिट्टी का हिसाब देख लें कि कितने दिन उसमें नमी बरकरार रहे, उस हिसाब ने देखें। बाकी जो तापमान बढ़ने लग रहा है ना, गर्मी का मौसम है, तो इस हिसाब ने देखें तो हर सप्ताह अपने बाग की सिंचाई करना ज़रूरी हो जाए है। छोटे पौधे खास तौर पे उसमें तो हर सप्ताह सिंचाई करनी ही करनी पड़ेगी। और सिंचाई कर देना भी थोड़ा ध्यान यूँ रखें कि सवेरे या शाम के टाइम पर सिंचाई करेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। एक जो पौधा की सूखी शाखा हैं उन निकाल दें। अगर बड़े बाग हैं अपने दौरे फलित अवस्था में जो बाग हैं, यानी कि फल देने जिन्हें शुरू कर दिया है, उसमें सूखी टहनी पड़ी राख रहे हैं, पत्ते इकट्ठे हो जाए हैं, उन्हें भी हम निकाल के बाहर कर दें, बिल्कुल साफ सुथरा कर दें। क्योंकि बड़े बागों में जो पत्ते और टहनी पड़े रह जाए हैं तो वो फिर कीड़े ने बीमारियाँ ने जन्म दे हैं, और कीड़े उन पर पौधा बचड़ जाए हैं, पौधे पर फिर फल पा जाए हैं तो बड़ा नुकसान कर दे हैं। फल मक्खी के लिए फेरोमैन ट्रैप हम लगा सके हैं। और ख़ास तौर पर तो देखना चाहिए कि भाई कई जगह तो अपना दो दो हम फसलें ले हैं अमरूद की, और जो अपने दूसरे जो इलाके हैं उनमें तीन तीन भी ले ले हैं। तो एक जो हमने बरसात का मौसम में जो फल आया है उस तो हमने थोड़ा हा रुकना चाहिए, और सर्दी का जो फल है वो हमने लेना चाहिए। तो इसके लिए कुछ एसिटिक एसिड के छिड़काव भी हों ताकि वो छिड़काव कर दें, फूल आवे तो वो झड़ जा और कुछ रह जाए तो वो हाथ के द्वारा हम झाड़ दें, ताकि आगे आने वाली जो फसल है जो सर्दियाँ की है उसमें हमने सही निरोगा और बढ़िया किस्म का जो है वो फल मिल जाए। बड़े बागों के लिए तो है ये, बाकी छोटे बाग हम जो सिंचाई का और खरपतवार का दोनों के लिए है, चाहे छोटा बाग हो अपने दौरे चाहे बड़ा बाग हो। खरपतवार तो बिल्कुल हमने साफ रखना है अपना बाग बगीचा, यहाँ तक कि जो मेड हैं उनको भी साफ करना है, क्योंकि मेडा में तभी जो कीड़े हैं वो पेड़ों पर आ सके हैं। बाकी जो नए पौधे हैं लू तो बचाएं, भाई सिंचाई करें, और जो पुराने पौधे हैं उनके तना पर 3 किलोग्राम चूने में 2 किलोग्राम नीला थोथा मिलाकर और 30 लीटर पानी में अलग अलग भिगो के और फिर छान के मिला कर लेप कर दें, ताकि सूर्य की जो तेज रोशनी है इस तने ने कोई नुकसान ना पहुंचे, तने पर उसका लेप कर दें। और बाकी देखो ऐसा है कि जस्ते की कमी फल गिरने से बचाने के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2.5 किलोग्राम बुझावा चूना, 1000 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर और पौधे पर अगर छिड़काव कर देंगे तो इसमें नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी और साथ साथ में जो जिंक की कमी है वह भी हो जाएगी। 1-2 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में घोल कर इसका भी हम छिड़काव कर सके हैं। तो जितने भी अपने दौरे छोटे बाग हैं खास तौर पर उसमें भी ध्यान रखना है। कुछ अगर सिंचाई की कमी रह जाए तो उसमें भी पत्ते थोड़े पीड़ा अपने लिए जाए हैं तो वो भी देख लें, और अगर जिंक की कमी है तो ये छिड़काव ज़रूर अपना लें। साथ साथ में हमने खरपतवारों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, पौधों को बचाना है, आवारा पशुओं से बचाना है, कोई सोटी का या डंडी का सहारा देना है, और अमरूद का जो पौधा है उसमें अगले महीने थोड़ा मोटा जो खाद है जो सिफारिश शुदा बताई जाए मात्रा वो हमने उसमें देना भी है। बाकी तो ये है कि भाई इस टाइम पे अपना तापमान बढ़ रहा है, सिंचाई का विशेष ध्यान रखें, खरपतवारों का, निराई गुड़ाई का, भाई छोटे पौधे हैं उनकी जड़ें ना दिखाई दें मिट्टी चढ़ाने का तो उससे भी उसका बहुत सारा उन्हें मिल जाएगा। तो ये कुछ मोटी मोटी बात हैं। अगर अमरूद के बागों में इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो अपने अमरूद के बागों से भरपूर फायदा।
1: ये थी कृषि की बातें, आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: एम आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदेहल्यां साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना निकोस क्रिस्टोडोलिड्स इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। श्री क्रिस्टोडोलिड्स इत्येषः ह्यः नवदेहलीं प्राप्तवान्। विमानस्थानके केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग राज्यमन्त्री अजय टम्टा इत्यनेन तस्य स्वागतं कृतम्। सः मुंबई नगरम् अपि गतवान्। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः च परस्पर हितस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु द्विपाक्षिक सहकरणं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः। वार्तायाः अनन्तरं अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि विनिमयञ्च भविष्यति। श्रीमोदी अतिथिविशेषस्य सम्मानार्थं भोजस्य आयोजनं करिष्यति। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सहापि मिलिष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्य अवदत् यत् विश्वं भारतदेशं विश्वसनीयसहभागिरूपेण पश्यतीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीवर्यस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः विषये नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीगोयलः अवदत् यत् इयं यात्रा समाजस्य प्रत्येकवर्गाय लाभस्य प्रत्याभूतिं करोतीति। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिमण्डलस्य भ्रमणेन प्रतीयते यत् भारतं वैश्विकस्तरे दृढतया स्थितम् अस्तीति। सः एकस्य प्रश्नस्योत्तरे अवदत् यत् राहुलगान्धिनः नकारात्मकराजनीतेः कारणात् जनाः निर्वाचने काङ्ग्रेसेति दलं निराकृतवन्तः। पश्चात् अन्यस्मिन् कार्यक्रमे श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतम् अमेरिकाञ्च स्वाभाविकसहभागिरूपेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रौद्योगिकी नवान्वेषणं रक्षा डिजिटल दत्तांशकेन्द्राणि क्वांटम कंप्यूटिंग अथ चिकित्सोपकरणादिषु क्षेत्रेषु परस्परं पूरकरूपेण कार्यं कुरुतश्चेति। अष्टमः भारत फ्रांस समुद्रीय सहकार संवादः बुधवासरे पेरिस नगरे आयोजितः। चर्चायाम् अवैध समुद्रीय गतिविधीनां प्रतिरोधाय परिचालन सहकारं सुदृढं कर्तुम् उभयोः देशयोः सहभागित्व प्रतिबद्धतां प्रति अवधानं दत्तम्। सशस्त्रलुण्ठनं सागरीय आतंकवादः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणम् अवैधम् अनिर्दिष्टम् अथ अनियन्त्रितमत्स्यपालनम् अपि च अन्यानि सागरीयसङ्कटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्चन्यायालयेन आर् जी कर चिकित्सा महाविद्यालये बलात्कार हत्या प्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषणदलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य SIT इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषणविभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्तनिदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य 25 दिनाङ्कात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलम् आदिष्टवान्। NEET परीक्षापत्रस्रावप्रकरणस्य प्रमुखविकासे लातूरनगरस्य बालरोगचिकित्सकः डॉ. मनोज शिरुरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषणविभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डॉ. शिरुरे इत्येषः स्वपुत्र्यै NEET परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदिति अन्वेषणसंस्थाः शङ्कयन्ति। एकोनविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य पुलवामा आतङ्कवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञातभुषुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे मध्यप्रदेशे विदर्भप्रदेशे च उष्णतरङ्गात् तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यतीति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। IPL क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् 89 धावनाङ्कैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 30+200 धावनाङ्कानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्यचतुर्दश कन्दुकक्षेपणचक्रेषु 40+100 धावनाङ्कान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ. कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
4: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
3: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, the news read by VC Pramod. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. Mr. Christodoulidis arrived in New Delhi yesterday. He was received by Union Minister of State for Road, Transport and Highways, Ajay Tamta, at the airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vafaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. The first International Big Cat Alliance, IBCA, summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed. It was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum Summit at several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. In a statement, Ministry of Environment, Forest and Climate Change said that following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date, it has been cleared that the first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. New dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders. The Calcutta High Court has ordered setting up a three-member special investigation team, SIT, of the CBI to probe the developments from the time the R.G. Carr Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 till her cremation. A division bench comprising Justices Shampa Sharkar and Tirthankar Ghosh yesterday said the CBI's joint director, East, will head the team. The other two members of the team would be decided within 48 hours of the court's order. The young medic was sexually assaulted and murdered in the hospital on the night of August 9, 2024. Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Ministry of Railways has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwini Vaishnav at the Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Minister of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior railway officials and field officers from across the country, attended the meeting. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that the U.S. is ready to sell as much energy as India is willing to buy. He said this while responding to a question about India being affected by high energy prices due to the closure of the Strait of Hormuz. The minister said this in the interaction with reporters in Miami as he embarked on the trip to Sweden and India. He also described India as a great partner and said his visit is important as it would give him the opportunity to meet with ministers from the Quad nations.
6: There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them. And so it is an important trip. I'm glad we're able to do it because I think there'll be a lot for us to talk about. And we'll also meet with the Quad there, which is important. Something, I think my first meeting as Secretary of State was with the Quad. So I believe like I got sworn in, I did the thing in the lobby, and then I went right upstairs and that was my first meeting. And I'm glad we're able to do it now in India. And we're going to do one later in the year as well.
5: Mr. Rubio will be in India from the 23rd to the 26th of this month and will visit Kolkata, Agra, Jaipur and New Delhi. The Quad meeting is scheduled on the 26th of this month. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. He had been living undercover as a teacher in POJK following the Pulwama attack. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Today, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है. प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी.

प्रातः 11 बजे विशेष सभा में आज आप सुनेंगे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में विज्ञान भवन नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के 23वां आकलन समारोह और रुतमजी स्मृति व्याख्यान 2026 समारोह में संबोधन का सीधा प्रसारण, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

समसामयिक चर्चा के साथ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुबह सवेरे प्रसारित होगा प्रातः 7:25 पर।

शाम 6:20 पर कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत आप सुनेंगे कृषि संबंधी समस्या व सुझाव विषय पर फोन इन कार्यक्रम का प्रथम प्रसारण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भगत सिंह।

प्रातः 8:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायक कलाकार दधि बालराज व्यास को। कार्यक्रम सुगम संगीत का आनंद आप लेंगे रात 8:25 पर।

रात 9:30 पर आज आप सुनेंगे कचरा प्रबंधन समस्या समाधान में चुनौतियां व आवश्यकता विषय पर हिंदी वार्ता। इसमें प्रतिभागी होंगे रचना भटेरिया, अरविंद भाटिया, रवि प्रकाश। संचालन करेंगे विनय कुमार। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT एपिसोड संख्या 1285 का प्रसारण समय रहेगा 12:30 पर, प्रातः 7:15 पर। गांधी चर्चा में आज आप सुनेंगे संयम विषय पर गांधी जी के विचार। प्रस्तुतिकर्ता होंगे यज्ञदत्त मिश्र। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आज आप सुनेंगे 10:00। कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रसारित होगा 7:30 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर प्रसारित होगा 1:10 पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम एक रंग आप तक पहुंचेगा प्रातः 9:00। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा। गांधी चर्चा में आज आपको सुनवा रहे हैं संयम विषय पर गांधी जी के विचार। प्रस्तुतिकर्ता हैं यज्ञदत्त मिश्र।

0: पहले दिन रायंद भाई से मालूम हुआ कि दूध इंद्रिय विकार पैदा करने वाली वस्तु है। अन्नाहार विषयक अंग्रेजी पुस्तकों के वाचन से इस विचार में वृद्धि हुई, लेकिन जब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं लिया था तब तक मैं दूध छोड़ने का कोई खास इरादा नहीं कर सका था। ये चीज तो मैं बहुत पहले से समझने लगा था कि शरीर के निर्वाह के लिए दूध आवश्यक नहीं है, लेकिन वो झट से छूटने वाली चीज भी न थी। मैं ये अधिकाधिक समझने लगा था कि इंद्रिय मन के लिए दूध छोड़ना चाहिए। इन्हीं दिनों मेरे पास कलकत्ते से कुछ साहित्य आया जिसमें गाय भैंस पर ग्वालों द्वारा किए जाने वाले क्रूर अत्याचारों की कथा थी। इस साहित्य का मुझ पर चमत्कारी प्रभाव पड़ा। मैंने इस संबंध में मिस्टर कैलनबैक से चर्चा की। वे मिस्टर खान के मित्र थे। मिस्टर खान ने उनके अंतर की गहराई में वैराग्य वृत्ति का दर्शन किया था और मेरा ख्याल है कि इसी कारण उन्होंने मेरी पहचान उनसे करवाई थी। जिस समय पहचान हुई उस समय उनके तरह तरह के शौकों से और खर्चीलेपन से मैं चौंक उठा था, पर पहले ही परिचय में उन्होंने मुझसे धर्म विषयक प्रश्न किए। इस चर्चा में अनायास ही बुद्ध भगवान के त्याग की बात निकली। इस प्रसंग के बाद हमारा संपर्क बढ़ता चला गया और वो इस हद तक बढ़ा कि उन्होंने अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि जो काम मैं करूं वो उन्हें भी करना चाहिए। वे बिल्कुल अकेले थे। मकान किराए के अलावा हर महीने लगभग 1200 रुपये वे अपने आप पर खर्च कर डालते थे। आखिर इसमें से इतनी सादगी पर पहुंच गए कि एक समय उनका मासिक खर्च घटकर 120 रुपये पर जा टिका। मेरे अपनी घर गृहस्थी को तोड़ देने के बाद और पहली जेल यात्रा के पश्चात हम दोनों साथ रहने लगे थे। उस समय हम दोनों का जीवन अपेक्षाकृत अधिक कठोर था। जिन दिनों हम साथ रहते थे उन्हीं दिनों दूध संबंधी चर्चा हुई थी। मिस्टर कैलनबैक ने सलाह दी, दूध के दोषों की चर्चा तो हम प्राय करते ही हैं, तो फिर हम दूध छोड़ क्यों न दें, उसकी आवश्यकता तो है नहीं। उनकी इस राय से मुझे सानंद आश्चर्य हुआ। मैंने इस सलाह का स्वागत किया और हम दोनों ने उसी क्षण टॉलस्टॉय फार्म पर दूध का त्याग किया। ये घटना 1912 में घटी। इतने त्याग से मुझे शांति न हुई। दूध छोड़ने के कुछ ही समय बाद केवल फलाहार के प्रयोग का भी हमने निश्चय किया। फलाहार में भी जो सस्ते से सस्ते फल मिलें उनसे ही अपना निर्वाह करने का हमारा निश्चय था। गरीब से गरीब आदमी जैसा जीवन बिताता है वैसा ही जीवन बिताने की उमंग हम दोनों को थी। हमने फलाहार की सुविधा का खूब अनुभव किया। बिना सिकी मूंगफली, केले, खजूर, नींबू और जैतून का तेल ये हमारा साधारण आहार बन गया। यद्यपि मैंने ब्रह्मचर्य के साथ आहार और उपवास का निकट संबंध सूचित किया तो ये भी निश्चित है कि उसका मुख्य आधार मन पर है। मैला मन उपवास से शुद्ध नहीं होता, आहार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मन का मैल तो विचार से, ईश्वर के ध्यान से और आखिर ईश्वरी प्रसाद से ही छूटता है, परंतु मन का शरीर के साथ निकट संबंध है और विकारयुक्त मन विकारयुक्त आहार की खोज में रहता है। विकारी मन अनेक प्रकार के स्वादों और भोगों की तलाश में रहता है और बाद में उन आहारों और भोगों का प्रभाव मन पर पड़ता है। अतएव जो लोग ये कहते हैं कि संयमी के लिए आहार की मर्यादा की और उपवास की आवश्यकता नहीं है वे उतने ही गलती पर हैं जितने आहार और उपवास को सर्वस्व मानने वाले। मेरा अनुभव तो मुझे ये सिखाता है कि जिसका मन संयम की ओर बढ़ रहा है उसके लिए आहार की मर्यादा और उपवास बहुत मदद करने वाले हैं। इनकी सहायता के बिना मन की निर्विकारिता असंभव प्रतीत होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे संयम विषय पर गांधी जी के विचार और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन।

गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे संयम विषय पर गांधी जी के विचार, प्रस्तुतिकर्ता थे यज्ञदत्त मिश्र। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

कार्यक्रम सुन रही सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो साथी सोनिया शर्मा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस गीत के साथ।

बिल्कुल, जीवन चलने का नाम है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, हमें जीवन में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्रोताओं, हमारे भारत देश जो है हमेशा से ही वीरों की भूमि रहा है, जहाँ कई महापुरुषों ने जन्म लिया। इन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन की आहुति दी और इस देश को दुनिया भर में गौरवान्वित करने का बेहद सराहनीय काम किया। हम हर साल भारत में ऐसे ही प्रसिद्ध लोगों यानी महापुरुषों की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उन्हीं में से एक हैं राजा राम मोहन राय, जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं। 22 मई को यानी आज के ही दिन इनका जन्म हुआ। भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक इन्हें माना जाता है। इनका जन्म 22 मई वर्ष 1772 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। भारतीय समाज को आधुनिक बनाने और कुरीतियों को मिटाने में इनका योगदान अतुल्य है। राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का अंत किया। इन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया। इनके ही प्रयासों से वर्ष 1829 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर इस प्रथा को समाप्त कर दिया। समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। इन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आजीवन इन्होंने कार्य किया। मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था का भी विरोध इन्होंने किया। इन्होंने ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर का प्रचार किया और रूढ़िवादी जाति व्यवस्था तथा मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। भारत में पत्रकारिता के अग्रदूतों में से ये एक थे। इन्होंने वर्ष 1821 में संवाद कौमुदी नामक बंगाली समाचार पत्र की शुरुआत की। इन्हें राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। इन्होंने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए उन्हें अपना दूत बनाकर ब्रिटेन भेजा था। राजा राम मोहन राय जी का निधन 27 सितंबर वर्ष 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। इनके द्वारा किए हुए कार्य, इनके आदर्श और सामाजिक सुधार आज भी और आगे भी हमारे देश को प्रेरित करते रहेंगे।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: अंबर नीला, धरती हरी, रंगों का यह संसार है। हर एक जीव और पौधे में कुदरत का अद्भुत प्यार है। कोई विशाल, कोई अति सूक्ष्म, सबकी अपनी पहचान है। छोटे से कीट पतंगों में भी बसा जीवों का प्राण है। नदियाँ, पर्वत और वन उपवन जैव विविधता का सार है। पारिस्थितिकी के इस चक्र में सब जीव ही आधार हैं। एक दूजे पर निर्भर सारे, कोई भी नहीं यहाँ बेकार है। शेर की दहाड़ में गूंज तो कोयल की मीठी पुकार है। मानव ने जब जब प्रकृति पर स्वार्थ का पहरा लगाया है, तब तब इस सुंदर संतुलन ने भारी संकट उठाया है। आओ मिलकर संकल्प ले, इस धरोहर को हम बचाएं, प्रकृति के इस इंद्रधनुष को और भी रंगीन बनाएं। जी हां श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो हर वर्ष 22 मई को यानी आज के ही दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी पर जैव विविधता के महत्व, पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और मानव गतिविधियों से उत्पन्न खतरों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2026 की यानी इस वर्ष की अगर हम विषय की बात करें तो वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, यह जो थीम है इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा केवल वैश्विक नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए हर व्यक्ति और समुदाय को स्थानीय स्तर पर सक्रिय कदम उठाने होंगे। और साथ ही जैव जो विविधता है, पेड़ पौधों की अगर हम बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, सूक्ष्म जीव जो हैं, विभिन्न प्रजातियां हैं, हमारे स्वस्थ जीवन, भोजन और जलवायु के संतुलन का मुख्य आधार है। वर्तमान में बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई के कारण कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। आज का यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि जैव विविधता का संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए कितना आवश्यक है।

श्रोताओं, हमें अपने जीवन में विश्वास और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं वो हमें अवसर देती हैं गलतियां करके सीखने का, या फिर यूँ कहें कि चुनौतियों को अवसरों में बदलना और खुद पर भरोसा रखना। यह दृष्टिकोण तनाव को कम करता है और असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाता है। अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना निस्वार्थ भाव से, ये सभी जो चीज़ें हैं हमें एक हिम्मत देती हैं अंदर से, जो हम करना चाहते हैं, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसे हम किस तरह पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमें स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए। हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसे हमें स्वयं को पहचानना चाहिए। जो हीन भावना होती है उसे अपने आप को दूर रखें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन पर काम करें। अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं तो हम उसे सुधार सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, उनको सबसे पहले स्वीकार करके फिर उसमें सुधार हम कर सकते हैं। हर स्थिति में समाधान खोजने का प्रयास अगर हम करेंगे तो निश्चय ही हमें सफलता मिलेगी। अच्छे परिणामों की उम्मीद जो होती है हमें मानसिक शांति देती है और हमें ऊर्जा प्रदान करती है। चुनौतियों का सामना करना, डटकर सामना करना, कोई भी कठिनाइयां हैं हमारे सामने वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती बल्कि अस्थाई होती हैं। सकारात्मकता मानसिकता वाले लोग असफलताओं से जल्दी ही उबर जाते हैं। तो बात तो वहीं आ गई कि अगर हमें अपने आप पे भरोसा है, अगर हमारे अंदर विश्वास है, एक पॉजिटिविटी है, एक सकारात्मकता है, तो हम सभी विपरीत परिस्थितियों में से निकलकर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे।

ये आसमां छिन गया तो क्या, नया ढूंढ लेंगे हम। वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। मत पूछ हौसले हमारे आज कितने विशब्द हैं। एक नई शुरुआत, नया आरंभ तय है। तो श्रोताओं, इसी विश्वास के साथ, इसी सोच के साथ इस दिन की शुरुआत कीजिए और अपनी रेडियो साथी सोनिया शर्मा को दीजिए अनुमति।

अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम सुबह सवेरे मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 8:15 पर समाचार होंगे अंग्रेजी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
5: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
8: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
5: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, UAE से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं, 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है POK में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर PM सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
5: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: लोक संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कलाकार दधि बालराज व्यास जी को।
4: अब राजा नल ने वह हंस छोड़ दिए तो उन्होंने दमयंती के बाग में जाना था और जो सबसे बड़ा हंस था वो कहने लगे, भाई विदर्भ देश जाना है, हंसों मेरी साथ चलो। तो क्या

जिगर में खटके देवता भी दर्शी करण में भटके रे देवता भी दर्शी करण में भटके और डूंगे।

घर से सेवा, मेरा मात पिता गुरु संत की सेवा, मात पिता गुरु संत की सेवा, जो करते दिन रात, हेरा जो करते दिन रात रे, इज्जत मिलती।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रोहतक केंद्र। लोक संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कलाकार दधीबाल राजव्यास जी को।
1: अब हंस जो है दमयंती के बागों में डट जाते हैं, उनको देख करके बड़ी खुश होती है, तो

में आज मारे बागों में फिर रेशो किसी ख्याल में दमयंती सखियों सब आई।

क्रोध सदा नीचे की तरफ न जावे, पानी और क्रोध सदा

0: लोक संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कलाकार दधीबाल राज व्यास को।
1: अब दमयंती उन हंसों को पकड़ लेती है तो हंस कहने लगे, दमयंती तू हमारे को छोड़ दे और तेरा ऐसा काम कराएंगे कि तेरी शादी राजा नल से हो जाएगी और ये संदेशा मैं खुद दे दूंगा जाकर के, तो क्या कहते हैं?
2: तेरा हंसा ने दुख दे तेरे दिल।

रक्त का करुणा राम किशन नरनंद वाले फल पड़े कर्म का भरीड़ा। एक दिन सबने मरना अमर को रहा नहीं दमयंती, क्यों पकड़ा बिन खोट मने।

इसी के साथ हमारा आज का लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है, जिसमें हमारे आज के कलाकार थे दधीबाल राज व्यास। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 9 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक रंग। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो साथी सोनिया शर्मा का नमस्कार। महफिलों और भीड़ में अक्सर तन्हा से रह जाते हैं हम, जब से गए हो छोड़कर दुनिया में तन्हा तुम हमको। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से। अनजान के बोल हैं, संगीत बद किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

दूर देश में बैठा पंछी अपनी बोली भूल न पाए, माटी की खुशबू याद आए जब भी पुरवैया लहराए। सूनी आँखें राह निहारी अपने घर आंगन की ओर, गूंज रही है कानों में अब अपनों की वो मीठी शोर। महानगरों की चकाचौंध में अपना पंसा लगता फीका, माँ के हाथों की रोटी बिन हर पकवान लगे है फीका। त्योहारों पर दिल भर आता जब सब होते हैं परिवार, परदेसी की इस दुनिया में छूट गया वो प्यार दुलार। चाहे जितनी सफलता छू लूं इस अंबर के तारों को, तड़प हमेशा बाकी रहती मिलने को इन नज़ारों को। श्रोताओं, नाम फिल्म से अभी आपने गीत सुना, पंकज उदास की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया था। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुदेश वाडकर और लता मंगेशकर के युगल स्वर में, ये गीत है। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, संतोष आनंद की शब्द रचना है और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जब तू नहीं था किस्मत में, फिर प्यार क्यों हुआ मुझे तुमसे। जब जुदा करना ही था ये वक्त उससे, फिर तूने मुझे मिलाया क्यों उससे। तन्हा था मगर खुश था जिंदगी से, शायद ये दर्द भी मुझे मिलना था ही तुमसे। प्यार कुछ दिनों का दर्द, उम्र भर का ये तो ठीक नहीं, इसका गिला तो उम्र भर रह जाएगा मुझे तुमसे। क्या हुआ जो हम सफ़र ना हुए, ऐ बिछड़ने वाले, मैं फिर किसी मोड़ पे मिलना चाहूँगा तुमसे। हाथ छूटने से दिल के नाते नहीं टूटा करते, मैं एक बार ये बताना चाहूँगा मिलकर गले तुमसे।

दिलवाले फिल्म से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत है। समीर के बोल है, नदीम श्रवण ने संगीतबद्ध किया है।

इन राहों में अब वो बात नहीं जो कभी हुआ करती थी, तेरे जाने से सुनी हो गई महफिल जो कभी हंसा करती थी।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म से। उदित नारायण की आवाज़ में और साथ में है अलका याग्निक, सपना अवस्थी की आवाज़ों में ये गीत है। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। तो सुनवा रहे हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म से ये गीत।

नैनों से ओझल हो तुम पर दिल के बहुत पास हो। मीलों की ये दूरियाँ बस एक छोटा सा एहसास है। तुम्हारी यादों की खुशबू महकाती है हर पल मेरा, जैसे इन सर्द हवाओं में हो कोई मीठा सवेरा।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है खुदा गवाह। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम एक रंग अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रातः के 10 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके बाद 10:05 पर समाचार होंगे अंग्रेजी में, जिन्हें हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइट से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडुलाइट कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडुलाइट मुंबई भी जा चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडुलाइट की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर की निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS चतुर्थ के साथ किया जा रहा था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी

0: किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाईं। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति बीएसएफ की अजय शक्ति का प्रमाण है। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजा राममोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से राजा राममोहन राय ने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulides, in New Delhi today. Mr. Christodoulides arrived in New Delhi yesterday. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the airport. He also visited Mumbai. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Veftis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulides to India in his current capacity. Prime Minister Narendra Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices related to boost ease of living, ease of doing business and further reforms in order to realise the shared dream of a Vikasit Bharat. Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Railway Ministry has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwani Vaishnaw at Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Ministers of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior railway board officials and field officers from across the country, attended the meeting. The Calcutta High Court has ordered setting up a 3-member special investigation team, SIT, of the CBI to probe the developments from the time the RJ Kaur Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 to her cremation. The young medic was raped and murdered in the hospital on the night of August 9, 2024. A division bench comprising Justices Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh yesterday said the CBI's Joint Director East will head the team. The other 2 members of the team would be decided within 48 hours of the court's order. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 11 बजने को हैं। अब जो कार्यक्रम आप सुनेंगे उसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार। सीमा सुरक्षा बल गान की प्रस्तुति अभी आपने सुनी और विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू के साथ आकाशवाणी की ओर से कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और माननीय मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपना स्थान ग्रहण कर चुके, उनको पुष्प भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार पुष्प भेंट कर रहे हैं श्री अमित शाह जी को।
1: Well, the program has begun with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah. They've all taken the seats on the dais. And now we have the welcome address by the DG of BSF, Shri Praveen Kumar. He walks to the podium to address the gathering.
0: आपको बताना चाहेंगे आज यहाँ सीमा सुरक्षा बल का 23वां अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान जैसे गरिमामय और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन आज विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में किया गया। कुछ एक पलों में विधिवत स्वागत।

और फिलहाल आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आज उन वीर सीमा प्रहरियों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने पराक्रम से देश का गौरव विश्व पटल पर ऊंचा किया है। अनेक सीमा प्रहरियों ने वीरता के अमित कीर्तिमान स्थापित किए हैं और

0: The 23rd BSF Investiture Ceremony and the Rustamji Memorial Lecture is taking place today at the Vigyan Bhavan. And with the arrival of the Home Minister, Shri Amit Shah, the program has just begun and he was presented with a bouquet. And now, the DG of the BSF, Shri Praveen Kumar, is at the dais addressing the gathering with a welcome address.
1: और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. उनका साहस, समर्पण और बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. हम आज अपने बल के संस्थापक श्री के एफ रुस्तम जी की गौरवशाली विरासत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि और सफल नेतृत्व ने इस महान बल की मजबूत नींव रखी. पिछले 6 दशकों में सीमा सुरक्षा बल ने विश्व के श्रेष्ठतम सीमा सुरक्षा बलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है. सीमा प्रबंधन, आतंकवादी रोधी अभियानों तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीएसएफ ने अद्वितीय पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे जवानों ने वीरता एवं कर्तव्य निष्ठा की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए 2 वीर चक्र एवं अनेक वीरता पदक अर्जित किए हैं. हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: सुदृढ़ एवं व्यापक सीमा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तत्परता और जवानों का कल्याण. गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की तथा माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है. अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजर तथा एकीकृत कमांड सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावी रूप से अपनाया गया है. गत वर्ष बीएसएफ ने सीमा पार से भेजे गए 300 से अधिक ड्रोनों को निष्क्रिय कर मार गिराया है, जो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति हमारी सतर्कता एवं सजगता का प्रमाण है. साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आवास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर एवं मनोबल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है. सीमा सुरक्षा बल ने खेलों में के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. पिछले 1 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 149 पदक अर्जित किए हैं. यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कल ही मात्र 24 घंटा पहले बीएसएफ की प्रथम सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा एवं बीएसएफ का ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त किया है. साथ ही बीएसएफ की पुरुष पर्वतारोहण टीम माउंट लोत्से अभियान पर अग्रसर है, जो बल की अदम्य साहस एवं उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है. यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपनी हीरक जयंती मना रहा है. सेवा, बलिदान और शौर्य के 60 गौरवशाली वर्ष. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, मैराथनों एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में बीएसएफ ने कश्मीर, जम्मू, अमृतसर एवं देहरादून में सफल मैराथनों का आयोजन किया, जो जनता के साथ बल के गहरे जुड़ाव एवं राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है. महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु बीएसएफ पूर्णतः प्रतिबद्ध है. हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं कि सीमा की समस्त सीमा प्रहरी परिवार सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है. अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ. जय हिंद.
2: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी ने विधिवत स्वागत किया सभी अतिथिगणों का. और अब बीएसएफ डॉक्यूमेंट्री पर एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा.
3: सुरक्षा बल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है. यूं तो सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली यात्रा, उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन और अद्वितीय आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ साथ आधुनिकतम तकनीकी दक्षताओं को एक छोटे से अंतराल में बयां कर पाना बेहद कठिन है, परंतु हमने इसके सारांश को एक छोटे से वृत्तचित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे नाम दिया है सीमा और आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी सीमा सुरक्षा बल। तो प्रस्तुत है यह वृत्त चित्र।
4: वर्ष 1965 में स्थापना के साथ ही बीएसएफ ने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला। स्थापना के मात्र 6 वर्षों के बाद संस्थापक महानिदेशक श्री के एफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ ने 1971 के युद्ध में पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं पराक्रम का परिचय दिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बीएसएफ की अहम भूमिका रही है। बाद के वर्षों में सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ ने पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत के प्रतिविद्रोहिता अभियानों में अप्रतिम योगदान दिया। कारगिल युद्ध के समय भी बीएसएफ के वीरों ने अग्रिम मोर्चों पर डटे रहकर अपनी बहादुरी सिद्ध की। भारत सरकार के 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने में भी बीएसएफ की सक्रिय भागीदारी रही है। इन सभी अभियानों में अद्वितीय योगदान के लिए बीएसएफ ने अनेक वीरता पदक अर्जित किए। आज पश्चिमी सीमा पर हिमालय की बर्फीले व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, तपते रेगिस्तान तथा गुजरात के विशाल रण जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए सीमा प्रहरियों के समक्ष सीमा पार आतंकवाद, हथियारों एवं गोला बारूद की तस्करी, हीरोइन व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। पूर्वी सीमा पर सीमांत क्षेत्रों में घनी आबादी, नदी नालों की बहुतायत, मानसूनी वन और उत्तर पूर्व की जटिल पहाड़ी श्रृंखलाएं भौगोलिक जटिलता प्रस्तुत करती हैं। पूर्व में सुंदरबन डेल्टा तथा पश्चिम में गुजरात के क्रीक जैसे दुर्गम जलीय सीमांत इलाकों में बीएसएफ की वाटर विंग के फ्लोटिंग बीओपी एवं अत्याधुनिक क्राफ्ट इन क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी जैसे चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी पूरी जिम्मेदारी से योगदान देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के प्रहरियों ने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया।
5: ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
4: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेंगी। गृह मंत्रालय सदैव बीएसएफ के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है तथा बल के आधुनिकीकरण, परिचालन क्षमता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
5: और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूँ, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती।
4: आधुनिकीकरण की दिशा में बीएसएफ अग्रसर है, जिसे स्मार्ट फेंस की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करती है। यह फ्लडलाइट्स, ड्रोन आधारित निगरानी, रडार, फिडार, सीसीटीवी कैमरों और अन्य उपकरणों के समेकित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन फॉरेंसिक्स के उपयोग में भी बीएसएफ ने नए प्रतिमान रचे हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। बीएसएफ की अश्रु गैस इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी बीएसएफ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। बीएसएफ में खेलों के प्रति नीतियों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खानपान, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बीएसएफ के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, पुलिस ड्यूटी मीट तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और वुशु जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं बल का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। बीएसएफ के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी नस्ल के श्वानों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं बल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं अन्य देयकों के त्वरित निस्तारण को भी बीएसएफ प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बल की हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को पिरोए हुए अनेक कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में बीएसएफ के योगदानों को जन जन तक पहुँचाना है। हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बीएसएफ के महिला पर्वतारोही दल ने वंदे मातरम अभियान को सफल काम करते हुए 21 मई 2026 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
6: कौशल, शेरिंग, रेबेका और मुनमुन, सबसे पहले तो समस्त बीएसएफ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
4: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रगीत गाकर बीएसएफ टीम ने देश और बल के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। आज इस अवसर पर प्रत्येक सीमा प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।
2: सुरक्षा बल ने अपने 6 दशकों में गौरवपूर्ण सफर में न केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं को विशिष्ट संगठन के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में होने का सम्मान भी अर्जित किया है। और अब सीमा प्रहरियों का अलंकरण समारोह मुख्य अतिथि श्री अमित शाह के कर कमलों से।
0: And now the awards are going to be given to all the people for their gallantry and for the wonderful work they have done for the country and what they have achieved. And they'll be receiving the award from the Home Minister, Shri Amit Shah. And Shri Amit Shah has come to the front of the dais to give away the awards to everyone.
7: BSF ki 35 battalion ki ek tukdi area domination ke liye aage badh rahi thi. तभी नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अब इस बहादुर प्रहरी ने न सिर्फ आखिरी सांस तक नक्सलियों से लोहा लिया बल्कि अपने साथियों को सुरक्षित बचा

163 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023, मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव।

आरक्षक नरेंद्र कुमार मरणोपरांत एवं श्री अशोक कुमार उप कमांडेंट 122 बटालियन 28 मई सन 2023 मणिपुर का मौर्य इलाका राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के मकसद से तैनात बीएसएफ की 122 बटालियन की एक टुकड़ी का नेतृत्व बहादुर अधिकारी श्री अशोक कुमार कर रहे थे। अचानक उग्र भीड़ ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सीमा प्रहरियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस दौरान सीमा प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिदेवेरी पर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता और पराक्रम के लिए बहादुर अधिकारी अशोक कुमार तथा शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पहले पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती सुनीता देवी।

देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट 7वीं बटालियन, 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी सीमा चौकी खरकोला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व संभाले रखा और अपनी जान पर खेलकर अपने घायल साथियों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य, पराक्रम, नेतृत्व एवं बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम करने वाले इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट।

राठौर उप कमांडेंट, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्त में लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न हुए सामरिक व पेचीदा कूटनीतिक परिदृश्य को बदल देने वाले बहादुर अधिकारी श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट को उनके अदम्य साहस, शौर्य तथा सूझबूझ के लिए वीरता पदक से अलंकृत किया गया। श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट।

श्री आलोक नेगी सहायक कमांडेंट 53वीं बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन द्वारा की गई तीव्र एवं लगातार गोलाबारी के बीच 53वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री आलोक नेगी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने जवानों का मनोबल बनाए रखा और अपनी प्रभावी कार्रवाई से शत्रु की गतिविधियों को निष्फल किया। साहसिक नेतृत्व, वीरता, पराक्रम और असीम शौर्य के लिए इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट।

मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा 175 बटालियन, 20 अप्रैल सन 2023, भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा ने टेंगोन नदी के पुल के समीप कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। शौर्य, पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए मातृभूमि की रक्षा सुनिश्चित करने वाले हेड कांस्टेबल नरबू शेरपा को राष्ट्र द्वारा वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा।

और अब सराहनीय सेवा पदक उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिनकी लंबी बेदाग और सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप राष्ट्र द्वारा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम अलंकरण हेतु गर्व से आगे आ रहे हैं श्री मनिंदर प्रताप सिंह पवार महानिरीक्षक।

और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक श्री अंकित गोयल आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर 12 नवंबर 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों और कमांडोज के बीच 13 से 16 नवंबर 2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वीरता शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अंकित गोयल उप महानिरीक्षक।

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह
1: एंड नाउ श्री अमित शाह, द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ अ ईयर। ही वॉक्स टू द पोडियम।
2: आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी, श्री तपन डेका जी निर्देशक आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, श्री महेश कुमार अग्रवाल विशेष महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, और आज इस सभागार में उपस्थित 43 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिनको अलग अलग प्रकार के पदक आज प्राप्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है, और भारत सरकार के सभी उपस्थित अधिकारीगण, अलग अलग सीएपीएफ के डीजी और प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अधिक निष्ठा, कर्तव्य परायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है इसका प्रतीक है। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति में स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण KF रुस्तम जी के नेतृत्व में BSF की स्थापना हुई, और जब से BSF की स्थापना हुई है सैन्य BSF ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है इसका बड़ा महत्व होता है और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बना

आने का काम बीएसएफ ने किया है, जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गृह मंत्री पदक भी हमारे जवानों ने दिया, जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है। मगर सबसे पहले मैं अभी अभी बीएसएफ की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को, उनके अनुभव को यहां बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे, और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में एक गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्र, अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल ये सिद्धांत तय किया गया और उसके बाद बीएसएफ को देश की सबसे दो कठिन सीमाओं का काम दिया गया। पाकिस्तान से सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी है, परंतु उस वक्त भी सोच समझकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो बीएसएफ को दे दीजिए, बीएसएफ कभी दो कदम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे कहते हुए आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर, दो बॉर्डर को आपके संभालने के बाद जितनी भी चुनौती आई, इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है, कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई, अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने हैं। मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है। और मैं आगे पर 60वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा, मगर आपने, आपके पास जो सीमित संसाधन थे वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ कर देश की सुरक्षा करने का काम किया है, जिससे हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते,
हमने राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन, इस सबके साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और एक, हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरों को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के उस पार से कृत्रिम तरीके से जनसंख्यिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोकने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नार्कोटिक्स और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ये करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, आज सीमा सुरक्षा बल के काम का व्याप देखते हैं तो सियाचिन और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, कुपवाड़ा, केरन, उरी जैसे दुर्गम क्षेत्र, राजस्थान का रण, कच्छ का छोटा रण, सरक्रिक के दलदली नाले, सुंदरवन के घने जंगल और झरने, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की कठिन पूर्वी सीमाएं और ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए कठिन संवेदनशील नदी क्षेत्र भी है। और ये सभी के बीच में सीमा सुरक्षा बल डटा हुआ है। और इसी के कारण 1965 में महज 25 बटालियनों से अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ सीमा सुरक्षा बल आज 270,000 की नफरी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बना है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस 8 साल की जर्नी में एक महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 47 सेना मेडल और 1262 वीरता के लिए पुलिस पदक सीमा सुरक्षा बल ने अपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के कारण अर्जित किए हैं, वो हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए 3 हमले हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करकर, एक बार एयर स्ट्राइक करकर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार करकर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी, नक्सलवादी बेखौफ होकर जन नरसंहार करते थे और सरकारें वार्ता करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिंग का एक प्रकार से घोषणा है। और मैं मानता हूं इसमें सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने वाले हमारे जवानों को हमने यहां पर अलंकरण से नवाजा है। मगर मित्रों, आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए। ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है। और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। और मैं मानता हूं ये लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी
केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते देखते देखते समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया है कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है, कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा गिरीड दोनों देशों की सीमाओं के सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने किया कहा कि 60वां वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले 1 साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नारकोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं, इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब
एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस

0: इसको घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग मिलेगा और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं। और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।
1: भविष्य में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और मजबूत सुरक्षा ग्रिड के लिए अभियान चलेगा और अभियान में सहयोग की भी आवश्यकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने विचारों के साथ।
2: जो महोदय के हृदय में इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा।
1: और अब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह।
2: धन्यवाद श्रीमान। और
3: हेलो एबेमेंटो गिवन टू द होम मिनिस्टर बाय द डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री प्रवीण कुमार।
1: विशेष महानिदेशक द्वारा धन्यवाद।
4: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
3: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय द राष्ट्रगीत।
5: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का, जिसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार।

0: the end of the 23rd investiture ceremony of the Border Security Force. And, well, the last two items, the national song and the national anthem. And with that, we see the Home Minister making exit from the plenary hall. And it was a wonderful occasion. People, I'm sure, are really going to cherish this all their life, all the members of the Border Security Force who have been here. And it's been a wonderful experience, a wonderful message on the Rustam Ji Memorial Speech lecture by the Home Minister, Shri Amit Shah.
1: आज का ये अलंकरण समारोह साहस समर्पण और राष्ट्र सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक है हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखा सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में न केवल हमारे वीर जवानों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया बल्कि हमें राष्ट्र सेवा के मूल्यों और अधिक गहराई से समझने की प्रेरणा भी प्रदान की इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू ओबी इंचार्ज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वी के तोमर इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्रा कमल सिंह हेमराज मीणा और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूं नमस्कार
2: दिल्ली के विज्ञान भवन से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 23वें अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे विवरण दे रहे थे प्रीति मोहन और डी एंड्रयू ये आकाशवाणी है
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत आइए आपको सुनवाते हैं युग पुरुष फिल्म का गीत

श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत और आइए आपको सुनवाते हैं तेरे नाम फिल्म का गीत। गीत को लिखा है समीर ने और गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

और आइए अब सुनते हैं ताल फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और उदित नारायण।

इसी गीत के साथ ही आज का ये फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, श्रोता सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई, अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी, सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षा वन नहीं है।
1: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं वर्षा वन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओं, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
2: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
2: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
2: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं है, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
2: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
2: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ जी जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
2: जी,
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती
2: जी।
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
2: सुंदरबन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरबन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
2: जी
1: हाँ, सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
2: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
2: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
2: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
2: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
3: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ। ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान हैं।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे। संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
3: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हाँ। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं। ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है।
0: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
1: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
0: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
1: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
2: जी सुनिए,
4: हाँ
2: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
4: ये लो थे मक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
2: हाँ
4: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
2: अरे अरे इसको भी डालो।
4: हाँ
2: ये देखो
4: देखो देखो कितना छोटा था, नहीं ये पौधा कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
2: प्यारा लग रहा है मेरा छोटा सा बच्चा।
0: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
1: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
4: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे, ये अब कितने बड़े भी लग रहे हैं।
2: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
4: ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
5: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
6: हमारा शहर हो
7: कमाल, इतना सुंदर, इतना बढ़िया।

0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
2: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
3: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
0: आह, पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है। फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करने न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दिन के 1 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद आप सुनेंगे समाचार। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
2: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Oh. आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। कुछ क्षणों के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम

0: अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है।
1: स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूँ।
0: श्री शाह ने सुरक्षा से जुड़े उभरते खतरों का उल्लेख किया। इनमें अवैध घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी, जाली नोटों का चलन और हथियारों व ड्रग्स की तस्करी शामिल हैं। गृहमंत्री ने ज्यादा एकीकृत और व्यापक सुरक्षा ढांचे की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल का आह्वान किया। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और रेल संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद यह आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के आह्वान को व्यवहारिक रूप देते हुए कल चंडीगढ़ से दिल्ली तक का सफर शताब्दी ट्रेन से किया। मुख्यमंत्री इससे पहले भी अपने सरकारी बेड़े में गाड़ियों की संख्या कम कर अनावश्यक ईंधन खर्च को घटाने की पहल कर चुके हैं। अब ट्रेन से यात्रा करने का मकसद जनप्रतिनिधियों को संदेश देना है कि यदि जनप्रतिनिधि समय बदलाव को अपनाएं तो समाज में भी तेजी से सकारात्मक परिवर्तन आता है। जींद में कल जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा कृत्रिम अंग वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के प्रदेश उपाध्यक्ष अंकुश मिगलानी ने शिरकत की। समारोह के दौरान कुल 313 दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के अनुसार कृत्रिम अंग और अत्याधुनिक उपकरण वितरित किए गए। समारोह के बाद मीडिया से विशेष बातचीत करते हुए वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी ने कहा,
2: आज हमने जो 32 लाख रुपए का सामान बढ़ रहा है, जो हमारे जिन की शक्ति है रामजी लाली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई कहूंगा ज्यादा से ज्यादा गांव तक बात पहुंचनी चाहिए कि रेड क्रॉस संस्था वो लोगों के लिए क्या कर रही है। अभी तो लोग सोचते हैं कि हम रक्तदान में ऐसे, वो पता होना चाहिए कि रेड क्रॉस जो हर एक के लिए एक समान खड़ी। विकलांगों तक गांव तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात पहुंचाए कि विकलांगों को कोई भी इशू है तो रेड क्रॉस संस्थाओं के साथ खड़ी है।
0: मीडिया ने बंद पड़े नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर सवाल किया तो मिगलानी ने स्पष्ट किया कि नशा खत्म करने के लिए सरकार और रेडक्रॉस दोनों बेहद गंभीर हैं। जल्द ही सभी नशा मुक्ति केंद्र पूरी सक्रियता से काम करने लगेंगे। सोनीपत जिले में राई स्थित हरियाणा की पहले खेल विश्वविद्यालय के तरणताल में कल देर शाम एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक छात्र की पहचान दिल्ली के गौतम नगर निवासी निशांत के रूप में हुई है, जो खेल विश्वविद्यालय में पीजी डिप्लोमा कर रहा था। बताया जा रहा है कि निशांत का शव तरणताल में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद निशांत को तुरंत सोनीपत के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देर रात शव को अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया। सोनीपत पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें, हर किसी के लिए जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उसे पलटने के लिए कार्रवाई करने का एक आह्वान है। उन्होंने कहा कि समृद्ध जैव विविधता सतत विकास की अनगिनत चुनौतियों का समाधान है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

आपके अनुरोध पर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अनीता पारेशर का नमस्कार और आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं छोटा सा घर फिल्म से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और साधना सरगम और गीत को सुनना चाहते हैं महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानिरे और कार्तिक और युवराज, धामनी मानोरा महाराष्ट्र से तुलसीराम डेरे, माया डेरे, संदेश आदेश, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे, दादुलिया डेरे, अमोल डेरे, चंद्रकांत पाटिल और शब्बीर खान, बठिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, दीपिंदर, वीरेंद्र, सिमरन, कुलदीप, एकम, दमन और अभिजोत, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर, मोहम्मद वकील, फिरोज आलम, नाज परवीन। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

साधना सरगम और सखियों की आवाज़ में आइए सुनते हैं विजयपथ फिल्म का गीत। गीत को सुनना चाहते हैं मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी इंदौरा, विकास इंदौरा, रमन इंदौरा, रितु इंदौरा, भविंश खन्ना, मिसेल खन्ना, किंशुक खन्ना और दीपांशी इंदौरा। लचनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश और मुकेश कुमार साहू। नागपुर से नाना डोंगर दीवे, रमा डोंगर दीवे, सीमा, रीमा, दीक्षा और राहुल डोंगर दीवे। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गंवाणकर, श्वेता, सुमित गंवाणकर और ध्वनि गंवाणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गंवाणकर, प्रणीता गंवाणकर और टुक टुक गंवाणकर। उमरखेड़ महाराष्ट्र से आप हैं अभिजीत गंवाणकर और एकांश गंवाणकर। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमधाड़े और स्वराज जमधाड़े। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। कार्यक्रम की का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं प्यार कोई खेल नहीं फिल्म से। गीत को गाया है फाल्गुनी पाठक ने। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत है, जतिन ललित का संगीत, और फरमाइश आप सभी की है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, दत्रेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा, नया पारा भिराई से बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी, ईश्वर राज सूर्यवंशी, चंद्रकांत, प्राची और टीयूषी सूर्यवंशी, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगनानी, जग्गी दुआ, नरेंद्र तनेजा, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा और किरण ठाकुर।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना और निवान शर्मा। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक। आदर्श गांव बलियाली से दर्शनलाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार बंसल, ममता रानी बंसल, कमल कुमार बंसल, गर्विश और तमन्ना बंसल। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं हाँ मैंने भी प्यार किया है फिल्म का गीत। गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। समीर के लिखे गीत की धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

पटेल नगर पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया, मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान और रवनीत और निशु, अलीका डब्वाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह विवान, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरुचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं बेवफा फिल्म का गीत।

अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसकी धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने। गीत रचना समीर की है, गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। फिल्म का नाम है एतराज। फरमाइश आप सभी की है, रतलाम मध्य प्रदेश से आप हैं, बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से आप हैं अवधेश राय, प्रीति राय, नवनीत राय। छत्तीसगढ़ बेमित्रा से

पूर्णिमा सारथी, पूजा, आरती भाव्या और सुषमा सारथी, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन सोनी, सीता और गीता, सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ऐतराज़ फिल्म का गीत।

और श्रोताओं, अब आज के अंतिम गीत के लिए फरमाइश है आप सभी की वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गाव्या और सुच्चा पाठक, गांव चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, विवेक, प्रयाग, प्रियांशी और गांव चौधरीवास से ही आप हैं मांगीराम सत्तोड़, सुनील, शुभम और यश, बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष, चकला बाजार सामाना से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल और खुशदिल परिवार, सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि और सोहम, डब्बवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, लुधियाना से बसंत लाल और कोमल, कैथल से सागर और आम्रपाली, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, अनिष्का और तन्मय गजबिये, भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का गीत। गीत को गाया है लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम ने। गीत रचना असद भोपाली की है और संगीत है राम लक्ष्मण का।

0: कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
1: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीता अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
2: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपा कुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2 चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
3: आने वाले 1 के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को

0: लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 270,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार छत्तीसगढ़ ओडिशा पंजाब राजस्थान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा कांगड़ा कुल्लू हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू शिमला चंबा ऊना हमीरपुर मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइड्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान।

0: खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भैया ने सुरेंद्र भाई की राम राम। भैया देखो, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम की भी जब हम बात करें भैया, जो मई और जून का महीना है वो काफ़ी गर्मी का वो है, और उसमें एक नौतपे की हम बात करें तो वो 25 मई से लेकर और 2 जून तक माना गया है। और ये एक गर्मी का बहुत ये कह जा सके भाई बिल्कुल बीच वो है, उससे कुछ दिन आगे कुछ दिन पीछे, और उस समय में बहुत ज़्यादा जो गर्मी है वो पड़ा है। इस समय में भी जो हमारे किसान भाई हैं वो एक काम करें कि भाई जितना भी संभव हो सके सुबह थोड़ा वक्त उठ के अपनी जो खेतों की जुताई है वो ज़रूर कर लें, क्योंकि उसका करने का एक ये फ़ायदा है कि भाई जितनी भी धूप ज़मीन के अंदर जाएगी तो उतना ही फ़ायदा हमारी ज़मीन को होगा, उतना ही भुरभुरापन होगा, और उतनी ही हमारी जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उसकी जो ताकत है वो बढ़ेगी। इसमें जो हमारे किसान भाई हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो बैलों से, अब देखो कम खेती हुआ है लेकिन जहाँ बैलों से भी खेती हुआ है तो उसमें भी इस बात का ध्यान दें भाई, अपना सुबह थोड़ा वक्त टाइम से मान लो 3-4 बजे हम चले जाएं और 9-10 बजे तक अपना जितनी भी जुताई हो आराम से करें, वो चाहे हम बैलों से करें चाहे ट्रैक्टर से करें, क्योंकि उसके बाद फिर जो धूप है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए है, और ये हो जाए भाई मान लो हम ज़्यादा धूप में काम करेंगे तो नुकसान हो सके। बाकी ज़मीन के जो फ़ायदे की हम बात करें तो वो ज़मीन के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जितने भी तेज़ धूप में हमारी ज़मीन तपेगी। ज़मीन का तपने का एक ये मतलब है कि भाई कुछ भाई ये सोचें कि भाई जो हम आग लगाएं उससे तपा, उससे तपती नहीं, उससे जलती है, और उससे जो हानिकारक कीड़े हैं वो मरते नहीं ना खरपतवार ख़त्म होते, लेकिन ये धूप एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हानिकारक कीड़े ख़त्म हुए हैं, फंगस की जो ज़्यादा बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हुए हैं, और जो भी हमारी ज़मीन है उसकी ताकत बढ़े है, और ताकत के मान लो नीचे की जो ज़मीन है वो ऊपर आ गई, ऊपर वाली नीचे चली गई, तो एक अच्छी गहराई तक हमारी ज़मीन उपजाऊ जाए है, इसमें ये ध्यान देने की बात है। और जहाँ तक बात करें भाई, देखो जहाँ बाड़ू के टिब्बे हैं वहाँ तो जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने अगेत में कपास की बिजाई कर ली, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे मान लो इस तरह की दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे भी हम जो पछेत में बिजाई करनी है उसमें भी बहुत कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी। और देखो, और तो ये सावधानी है भाई, हम जो बीज हैं वो पछेत वाला ले लें, क्योंकि जिस समय हम लेट बिजाई कर रहे हैं उस समय पर जो तापमान है जैसे अब है, क्योंकि जो कपास है इसका बिजाई का जब हम देखें तो जो सही समय है वो मई का और आधा जून तक का हुआ है, और मई से और आधा जून तक में ये कहा जा सके भाई ईब जो भी हमारा किसान भाई बिजाई करना चाहे है तो वो कर सके है, और इसमें भी इस बात का ध्यान दें अगर भाई जो बाकिया अप्रैल से भी शुरू हो गया है बिजाई तो, और अगेते जहाँ पे ज़्यादा धूल उड़े है और उसके कारण जो पौधे हैं वो जल जाए हैं तो उस जगह पर जो हमारे किसान भाई हैं वो अगेत में 15 अप्रैल से ही शुरू करते हैं, और जो जून का महीना है पहले सप्ताह तक हम मानना है कि इसकी कर चुके हैं तो वहाँ तक हम इसकी बिजाई कर दें, जहाँ पर जो रेतीली मिट्टी है जहाँ तक वो नहीं चढ़ती वहाँ पर हम मान लो अब है वो कर चुके हैं, क्योंकि वो समय जा लिया। और उसके बाद भाइयों देखो, जो हमारे किसान भाई हैं उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि भाई उसमें जो हम किस्म ले हुए किस्म लेनी है हमने जो पछेत में यानी कि कम अवधि में तैयार हो जाए और जल्दी जो कपास से वो उसमें खिलना शुरू हो जाए, टिंडा आना शुरू हो जाए, इस तरह का कुछ आज जो भाई हमने पछेत में बिजाई करनी है उसमें क्या कुछ सावधानी रखनी है तो इन बातों की चर्चा करेंगे। उससे पहले सुनेंगे रागनी राकेश किलोया और उनके साथियों की गाई हुई।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ, हर दिल हर घर और हर जन हर वर्ग को जोड़ने का है साधन, विश्वसनीय असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर, हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार, अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक

0: दीदी, नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: तो भैया ने ये तो सुनी थी रागनी, राकेश कलोहिया और उनके साथियों की गाई हुई। भाई आज शुक्रवार का दिन है और फोन इन कार्यक्रम रहेगा शाम को, और उसकी रिकॉर्डिंग इस दिन में करेंगे 3 से 4:15 बजे तक। इसमें जो भी किसान भाई अपनी कोई भी बात कहना चाहे, कोई सुझाव लेना चाहे, तो आज खेतीबाड़ी संबंधी डॉक्टर नरेश सांगवान जी जवाब देंगे। तो आप खेतीबाड़ी संबंधी जो भी बात पूछना चाहो वो पूछ को, वो चाहे बागवानी की है, चाहे वो सब्जी फसलों की बात करें, या अनाज वाली जो हमारी फसलें हैं जैसे धान की है, बाजरे की, गवार की, या कोई भी हम बात है वो खेतीबाड़ी संबंधी आज डॉक्टर साहब से कर सकें हैं और उनका सुझाव ले सकें हैं। इसमें हमारे जो नंबर हैं वो रहेंगे 012-62 का STD कोड है, 255-446, 255-447 और 255-448, ये 3 फोन लाइन काम करेंगी। इन पर जो हमारे किसान भाई हैं वो बात करें, क्योंकि एक शुक्रवार को पशुधन के बारे में बात करी जा है और एक शुक्रवार को खेतीबाड़ी संबंधी। इस बार जो बातचीत करी जाएगी वो खेतीबाड़ी संबंधी करी जाएगी। उसमें देखो सभी किसान भाइयों से एक अनुरोध है कि भाई वो अपना कागज़ और पेन साथ में ले कर बैठें, और फिर जो भी डॉक्टर साहब कोई दवाई बतानी है या कोई किसी चीज फसल की किस्म बतानी है तो उसके बारे में जैसे ही बताएं तो फिर आप लिख सको, इस बात का ध्यान दें। बाकी खेत खलिहान में जो हम चर्चा कर रहे थे भाई, जो कपास फसल है उसके बारे में, और कपास फसल के बारे में तो जो 75 किस्म है उस वो हमने लेनी पड़ेगी। और सबसे ज़रूरी तो बात यह है कि जो उसका मान लो हम ले रहे हैं उसका समय थोड़ा कम होना चाहिए, और इसमें चाहे हम BT की ले रहे हैं, चाहे अमेरिकन किस्म ले रहे हैं, जो भी किस्म ले रहे हैं, तो वो हमने कम समय और कम अवधि वाली लेनी है। बाकी इसमें जो बिजाई के तरीके की हम बात करें, पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 45 से 60 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 3 फुट के आसपास, ताकि जो पौधे हैं वो अच्छे तरीके से जो धूप है, हवा है, उनको सही मिले और उनका जो फुलाव है वो बहुत बढ़िया बने। जितना भी कपास की फसल में फुलाव ज़्यादा होगा उतनी पैदावार हमने ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यदि मान लो हमने उसको नज़दीक नज़दीक लगा दिया तो फिर वो पौधा हमारा फूल नहीं पाओगा, लंबाई बढ़ जाएगी लेकिन वो फूल लगा नहीं। और फिर एक जैसे बीच बीच में हमने उसके नड़ा पता करना है तो उसमें भी आसानी रही रहे है, इसलिए पौधे से पौधे का जो फासला है वो 45 से 60 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन का जो फासला है वो 90 सेंटीमीटर हमने रखना है। बाकी इसमें जो बीज की हम गहराई की बात करें, बीज को इसको हमने एक तो अच्छी नमी है उसके अंदर बोना है, क्योंकि पहले जो अपने बुजुर्ग थे वो की कह अगर दे भाई जो कपास है या बाड़ी पहले इसको कह दिया करें तो उसकी हम 2 बार पड़े कराया कर दे डबल। उसका ये कारण था कि भाई जो नमी है वो गहराई तक चली जा, और जैसे ही हम जुताई करें और फिर उस मिट्टी को जैसे हम सुहागे से ढकें तो वो नमी ज्यों की त्यों बनी रहे। और कपास के अंदर बहुत लंबे समय तक कोशिश ये करी जा है जितना भी समय निकाल लिया जा कि भाई उसके अंदर सोका ना बने, और लगभग वो 1.5 महीने के आसपास तक भी ये मानी जा है कि भाई हम सिंचाई ना करें। और जब ईब से आगे 1.5 महीने की हम बात करेंगे तो हो सकता है कि उस समय तक जो ये मानसून की मौसम है वो बरसात है वो आ जाए, तो इसलिए भाइयों हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बिजाई हमने करनी है वो अच्छी नमी में करनी है। और जो बीज है वो 4 से 5 सेंटीमीटर तक ही गहराई तक हम बो सके हैं। उससे यदि हम ज़्यादा बीज बोएंगे तो फिर जो उसका घुंडा निकल रहा है, जो उसका जर्मिनेशन हो रहा है, उसमें फर्क आ जाएगा। इसमें हमने बीज का उपचार है वो करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें देखें वे कई जो हमारे अच्छे प्रगतिशील किसान भाई हैं वो मिट्टी का उपचार भी कर लें पहले, क्योंकि ये सारे के सारे कारण जड़न गलन के, विल्ट के, इस तरह के हैं। और जब हम इनका उपचार पहले करते हैं तो फिर जो हमारी फसल है वो लगभग ठीक ठाक रहा है। जहाँ तक हम पछेत बिजाई में सिंचाई की बात करें तो इसमें जल्दी जैसे वो सूखा नहीं, उसके लिए हम थोड़ा अच्छी नमी में इसकी का जो पड़ेव है वो कर ना वो बोएं। और मान लो फिर बाद में जाकर हमने ये लगभग वह पानी दबाओ है तो 30 से 35 दिन के बाद बाद ही हमने इसमें पानी देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा भाइयों। ये सुनेंगे रागनी राकेश कलोया और उनके साथियों की गाई हुई।

तो भजन यीशु ने राग निरा की इसकलू यार उनके साथियों की गाई हुई भैया देखो ये फिर बता दें भजन कृषि संबंधी जिन भजन की जो समस्या है उसके लिए फ़ोन इन कार्यक्रम है और उसमें आप फ़ोन करें और अपनी समस्या का समाधान उसका जो उसके बारे में जो सुझाव हैं वो लें डॉक्टर साहब से। और ईब जो खेत खलिहान कार्यक्रम है इसका समय समाप्त। सारे बाण भैया ने राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है दिन के 3:24। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले जारी रहेगा। शाम 5:10 पर विशेष सभा में मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर, प्रसार भारती की ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। अब हमारी विशेष सभा आरंभ होती है। हमारे कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहें?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा, चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
2: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
3: डर।
2: हाँ, मन में डर जो होता है,
3: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
2: क्या बात है।
3: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे, क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाते रहे, तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी,
2: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
3: बिल्कुल सहज रूप।
2: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
3: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था, 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह, तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th का ही 11th का ही,
2: जी जी,
3: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि एक साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो। और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल ओ भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
2: अच्छा।
3: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
2: जी।
3: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटिक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा। 12 साल मैं बजा चुका और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी। और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ

0: में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने। और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकारनाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहां थी।
1: अच्छा
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए।
1: जी
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी,
1: हाँ
0: तो मेरे मन में आया ये विचार। मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से, यानी जिस तरह कंठ से
1: जी
0: आवाज आती है, उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा,
1: जी
0: तो उस तरह। और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए
1: जी जी
0: तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे,
1: वाह वाह।
0: तो इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओमकारनाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से,
1: जी जी
0: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला, मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खास तौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है,
1: जी
0: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया।
1: हाँ जी
0: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी, पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो
1: जी जी
0: है उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है, तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया, और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है, कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता तो नहीं था, फिर भी
1: हाँ
0: अगर हुआ तो चैन नहीं होता
1: जी
0: था
1: जी
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा? एक आपका चूंकि संगीतकारों का कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टी एन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो ये सवाल ऐसा है।
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी
1: जी
0: हम रहे 5 बच्चे
1: अच्छा
0: मेरे पेरेंट्स के,
1: हाँ
0: तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है,
1: हाँ जी
0: चाहे लड़की हो या लड़का,
1: हाँ
0: पिताजी भेंट में दे देते हैं एक वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है,
1: वाह।
0: तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: हाँ। जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को लेके?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो इसीलिए उनका, वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वायलिन में, इंस्ट्रूमेंट में,
1: इंस्ट्रूमेंट में
0: जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: क्या बात। अम्मा जी वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है,

0: और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
1: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का।
0: जी
1: बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
0: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है, उसकी बात करते हैं मजी। आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है, वो बहुत ही पॉपुलर हुई थी।
1: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया,
0: जी,
1: खूब उन्होंने प्रोत्साहन
0: और जो
1: दिया।
0: कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी की?
1: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की।
0: जी
1: तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से
0: वाह,
1: समझ में आता
0: बिल्कुल
1: था
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: लोगों को।
0: जी
1: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे, तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़प्पन नहीं, पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
0: बिल्कुल। और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके साथ
1: मेरे
0: जुगल?
1: भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो तब वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं
0: जी
1: दोनों
0: जी
1: में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को, दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि
0: जी
1: सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
0: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो सम्प्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
1: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है,
0: जी,
1: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है। पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की, जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
0: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
1: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में।
0: जी बिल्कुल,
1: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
0: हाँ जी,
1: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे,
0: जी
1: तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे
0: हाँ
1: बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को, तो वो पूछा इतने में करोगी, तो मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था, मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर, तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो जो जो हलचल जो हो रहा था, तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो
0: जी
1: मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गई थी, और मैंने उनको

0: अब मैं निश्चिंत ही यही कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर, तो उसके बाद मैंने 45 मिनट दराग देश बचाया। तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा, आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुना है उनका एकलव्य का? तो लोग हाँ कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में, और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया, जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं। तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं, उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, पर मैं यही सोचती हूँ, हमें ये इतना बड़ा समुद्र है, इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे हमारे सभी साथियों को आपके साथी विशाल का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम बात करेंगे जैव विविधता दिवस के बारे में। प्रकृति ने हमें अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत और वन दिए हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों और वनस्पतियों की विभिन्नताओं को जैव विविधता कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। जैव विविधता मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन, भोजन, औषधियाँ और लकड़ी प्रदान करते हैं। विभिन्न जीव जंतु पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। यदि जैव विविधता नष्ट हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ जाएगा। जैव विविधता पृथ्वी की अमूल धरोहर है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए हमें सभी का कर्तव्य है कि प्रत्येक प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा करें तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण बनाएं। साथियों, आज है शुक्रवार का दिन। आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत। आज की जो पहली फरमाइश है वो है गोला बाजार बक्सर से अभिनंद आर्य, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित, आदर्श नगर मलोट, राज शर्मा, मीना, योगेश, गौरव, साइना, निवान, बटिंडा से मनजीत कौर जोड़ा, कर्णवीर करण, दीपेंद्र, वीरेंद्र, सिमरन, प्रेम। इन्होंने जो गीत सुनना चाहा है, फिल्म रॉकस्टार से गीत है, गाया है मोहित चौहान ने, संगीत दिया है ए आर रहमान ने, लिखा है इरशाद कामिल ने। आइए साथियों सुनते हैं गीत।

साथियों, अभी आपने सुना गीत फिल्म रॉकस्टार से। गाया था मोहित चौहान ने, संगीत दिया था एआर रहमान ने, लिखा था इरशाद कामिल ने। साथियों, आज की जो अगली फरमाइश है वो है बेरडी से हुक्म करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची, तन्नू। कोटो नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित, हैप्पी। दुबिहा निवेदा गाजीपुर से प्रत्येक राय, रोशनी, प्रांजल। इन्होंने गीत सुनना चाहा है, फिल्म साजन से गीत है। गाया है अलका याग्निक ने, लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम और शरवन ने। आइए साथियों, सुनते हैं गीत।

साथियों, अभी आपने सुना गीत फिल्म साजन से गीत था। गाया था अलका याज्ञिक ने, लिखा था समीर ने, संगीत दिया था नदीम और शरण ने। साथियों, अब हम कार्यक्रम में बात करेंगे सांप्रदायिक सद्भावना के मूल्य के बारे में। भारत एक विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अनेक धर्म, जातियाँ, भाषा और संस्कृति मिलजुल कर रहते हैं। सभी धर्मों के लोगों के बीच प्रेम, भाईचारा और आपसी सम्मान बनाए रखने ही सांप्रदायिक सद्भावना कहलाता है। यह हमारे देश की एकता और अखंडता की पहचान है। सांप्रदायिक सद्भावना समाज में शांति और एकता बनाए रखते हैं। जब लोग एक दूसरे के धर्म और विचारों का सम्मान करते हैं, तब समाज में प्रेम और सहयोग बढ़ता है। इससे देश की प्रगति और विकास संभव होता है। महात्मा गांधी, कबीर और गुरु नानक जैसे महान व्यक्तियों ने सद्भावना और भाईचारे का संदेश दिया। सांप्रदायिक सद्भावना हमारे देश की शांति है। यदि हम सभी मिलजुल कर रहेंगे तो हमारे देश और अधिक मजबूत और विकसित बनेगा। इसलिए हमें हमेशा प्रेम, शांति और भाईचारे की भावनाओं को अपनाना चाहिए। साथियों, आज की जो अगली फरमाइश है वो है आदर्श गांव बलियाली, जिला भिवानी, हरियाणा से दर्शन लाल बंसल, सुदेश, प्रवीण, ममता, कमल, गर्विश, तमन्ना बंसल, बाटापारा दितरंगई से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक, जावेंद्र, इन्होंने गीत सुनना चाहा है। फिल्म वीर जारा से गीत है। गाया है लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और साथियों ने। लिखा है जावेद अख्तर ने। संगीत दिया है मदन मोहन जी ने। आइए साथियों, सुनते हैं गीत।

साथियों, अभी आपने सुना गीत फिल्म वीर जारा से, गाया था लता मंगेशकर, उदित नारायण और गुरदास मनोहर साथियों ने, लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत दिया था मदन मोहन जी ने। साथियों, अब समय हो गया चलने का, फिर से मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा संसार कार्यक्रम, आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी समाचार, जिन्हें हम अपने केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन देर भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी।

0: पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। शाम 6:20 पर कृषि जगत के फोन इन कार्यक्रम में डॉक्टर भगत सिंह से बातचीत का विषय रहेगा कृषि संबंधी समस्या व सुझाव। रात 9:30 पर आप सुनेंगे परिचर्चा, विषय रहेगा कचरा प्रबंधन समस्या समाधान चुनौतियां व आवश्यकता। प्रतिभागी होंगे रचना भटेरिया, अरविंद भाटिया और रवि प्रकाश, संचालन विनय कुमार का। सुगम संगीत कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 8:25 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 7:30 एक फिल्म से कार्यक्रम में रात 9:15 और भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में रात 10:00। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब जानकारी कल के मुख्य आकर्षणों की।

कल रात 9:30 बजे आप सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:30 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। युवाओं का दैनिक कार्यक्रम के युवा संसार के प्रसारण का समय रहेगा 5:30।

पशुधन का लू से बचाव, इस विषय पर आधारित कृषि की बातें कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 6:50 पर। दोपहर 2:30 बजे खेत खलिहान में चर्चा का विषय रहेगा कृषि यंत्रों की देखभाल।

कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता से पुनः प्रसारित बातचीत आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। विषय रहेगा केंचुआ खाद बनाने का तरीका व उपयोग। शाम 7:00 ग्रामीण संसार में सुनिएगा हरियाणवी लोक गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।

0: लोक संगीत कार्यक्रम में सुबह 8:30 बजे कलाकार होंगे सूरज भान, गंगनिया और साथी। हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी प्रसारित होगा दोपहर 12:30 पर। सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस खान सुबह 6:40 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:15 और रात 8:25। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस लेकर आएंगे सुबह 9:00। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर के 1:10। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:30। एक फिल्म से कार्यक्रम रात 9:15 पर। ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। अब होंगे प्रादेशिक समाचार हमारे चंडीगढ़ केंद्र से।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान के निवेशकों को हरियाणा में निवेश का निमंत्रण दिया। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई CBSE नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे और गुरुग्राम की स्पेशल टास्क फोर्स ने भिवानी में छापेमारी कर एक व्यक्ति से 8 किलोग्राम 940 ग्राम हेरोइन बरामद की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत और जापान के बीच वर्षों से मजबूत राजनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी रही है। अगली पीढ़ी का औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए जापान के साथ मिलकर लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं बन सकती हैं, जिससे बेहतर हरित और समृद्ध भविष्य का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित इंडो जापान

0: सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने सम्मेलन में पहुंचे जापान के निवेशकों को हरियाणा के साथ भागीदारी करने का निमंत्रण देते हुए कहा कि देश की विभिन्न प्रमुख विकास परियोजनाओं में जापान की उन्नत तकनीक और सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
1: तो जापान लेकर के आता है वो प्रेसिशन टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जो भारत लेकर के आता है स्किल टैलेंट ग्रोथ एंड एस्पिरेशन, और हरियाणा इन दोनों के संगम पर खड़ा है। एंड साथ हरियाणा भारत में जापानी कंपनियों का सबसे बड़ा केंद्र बना है। लगभग 394 जापानीज इंडस्ट्री एंड 600 से अधिक जापानीज व्यावसायिक प्रतिष्ठान आज हरियाणा में कार्यरत है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि भारत जापान साझेदारी का सबसे जीवंत और सफल मॉडल किसी राज्य में दिखाई देता है तो वह हरियाणा है, जहां जापानी निवेश औद्योगिक विकास और तकनीकी सहयोग ने विकास को नई गति दी है। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी नवाचार निर्माण प्रौद्योगिकी स्थिरता व भविष्य के लिए होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और आधुनिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी एक हालिया परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में से कम 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। बोर्ड ने कहा कि यह कदम अपनी अध्ययन योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने का हिस्सा है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि तीसरी भाषा के लिए कक्षा 10 की कोई बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। गुरुग्राम की स्पेशल टास्क फोर्स की यूनिट ने भिवानी में छापेमारी कर रोहित नाम के एक व्यक्ति से 8 किलोग्राम 940 ग्राम हेरोइन बरामद की है। बरामद की गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 36 करोड़ रुपए आंकी गई है। एसटीएफ अधिकारी प्रीतपाल सांगवान ने एक पत्रकार वार्ता में यह जानकारी देते हुए दावा किया कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह राज्य के इतिहास में अब तक की नशीले पदार्थों की दूसरी सबसे बड़ी रिकवरी है। उन्होंने बताया कि खुफिया सूत्रों से पुख्ता जानकारी मिलने के बाद भिवानी में आरोपी के घर छापेमारी कर यह मादक पदार्थ बरामद किया गया।
2: कल हमारी एसटीएफ गुड़गांव की टीम सब इंस्पेक्टर विवेक के नेतृत्व में भिवानी मौजूद, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक आदमी यहाँ पे नशे की खेप लेके आया है। ऐसे भिवानी साहब से परमिशन लेके हमारी पार्टी ने वहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट बुलाया और उसकी मौजूदगी में तलाशी ली गई, तो इंदिरा कॉलोनी भिवानी के रोहित के घर से लोहे की अलमारी से 8 किलो 940 ग्राम चिट्ठा बरामद हुआ। पूछताछ में अभी तक ये पता चला है ये जो नशे का पदार्थ है ये पंजाब की साइड से लेके आता है और हरियाणा में सप्लाई करता है, तो इस पूरी चेन को ब्रश करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे।
0: उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस नशा तस्करी के धंधे में आरोपी रोहित का सगा भाई भी संलिप्त है। पुलिस जांच के अनुसार रोहित का भाई पहले से ही नशा तस्करी के मामलों में पंजाब पुलिस की वांछित सूची में शामिल है और अदालत द्वारा उसे भगौड़ा घोषित किया जा चुका है। उसके खिलाफ पंजाब में NDPS एक्ट के तहत गंभीर मामले दर्ज है। पुलिस को अंदेशा है कि इस रैकेट में कई अन्य स्थानीय डीलर करियर और बड़े फाइनेंसर भी शामिल हो सकते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर इस अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट को चला रहे हैं। हरियाणा पशुधन व डेयरी विभाग द्वारा पशुधन को भीषण गर्मी और लू से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। हरियाणा पशुधन व डेयरी विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रेम सिंह ने हमारी संवाददाता को बताया कि विभाग के सभी अधिकारियों को पशुपालकों को लू से बचाने के उपायों के प्रति जागरूक करने की हिदायत की गई है।
3: सभी VLDs पशु चिकित्सक STOs एंड DD साहिबान को बताया गया है कि वो जितने भी हमारे पशु पालक हैं उनको निर्देशित करते रहें कि पशुओं को कैसे दूसरे गर्मी से बचाना है। पशुओं को छायादार वृक्ष के नीचे बांधे, शेड के नीचे रखें ताकि किसी प्रकार की डायरेक्ट हीट उनके शरीर के ऊपर ना पड़े। दूसरा, उनके अगर पंखे या कूलर की व्यवस्था कर सकते हैं या स्प्रिंकल लगा सकते हैं, पशुओं को रेगुलर पानी देते रहें। पशुओं को एकदम सूखी थोड़ी ना खिलाएं, उसमें कुछ ना कुछ लावण मिश्रण जरूर मिक्स करें, हरा चारा मिक्स करके खिलाएं।
0: स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर आमजन को लू से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। हमारे जींद संवाददाता को नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन कोहली ने जींद जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए एहतियाती कदमों की जानकारी दी।
4: विभाग की तरफ से जैसे ही एडवाइजरी जारी की गई, वार्ड में अलग से बेड किट मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए चिन्हित कर दिए गए हैं। पूरे जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनमें ठंडे पानी की व्यवस्था कर दी गई है। पेशेंट्स के लिए कूलर और जो संवेदनशील एरियाज हैं जैसे ICU है, इमरजेंसी है, उन डिपार्टमेंट्स में AC का इंतजाम कर दिया गया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान के निवेशकों को हरियाणा में निवेश का निमंत्रण दिया। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई CBSE नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: आकाशवाणी का यूरो तक केंद्र है, भाई कार्यक्रम सुनेंगे कृषि जगत। और कृषि जगत में भाइयों देखो, आज शुक्रवार का दिन है और बारी है फ़ोन इन कार्यक्रम की। और फ़ोन इन कार्यक्रम में भी जो बारी है वो खेती बाड़ी संबंधी जो भी हमारे किसान भाई हैं उनकी उनके समाधान की। तो डॉक्टर नरेश सांगवान जी स्टूडियो में आए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: तो डॉक्टर साहब फ़ोन लेना शुरू करते हैं। हेलो।
5: हेलो,
3: हाँ जी, नाम बताओ।
5: जी बलेराम, गांव नंदारा, जिला रोहतक।
3: बलेराम जी, हाँ, के पूछना चाहो जी? डॉक्टर साहब बैठे हैं खेती बाड़ी के।
5: सुरेंद्र भाई, राम राम। डॉक्टर साहब को भी राम राम।
3: हाँ जी, राम
4: राम, राम जी, राम राम।
5: बात ये डॉक्टर साहब है।
4: हाँ जी।
5: एक पेड़ ला था नींबू का।
4: हाँ हाँ हाँ।
5: ऊपर से फूंगो ही सूखे है और अमरूद

0: बुला रखी थी बेल गिया कमला में।
1: हाँ हाँ हाँ
0: कमले बुला रखी उसमें गिया की तोरी की बेल ला रखी है।
1: हाँ जी हाँ
0: वो एक डेढ़ हाथ की तो ठीक चल रहा है, फिर ऊपर तो फुंगल की भी सुखर लाग गया है।
1: ये टेम्परेचर का ही है जी, कई जगह ये बीज का हो जाता है। हार्डी जो गिया की जो वैरायटी थी वो नहीं है, ये हाइब्रिड बीज आ रहे हैं इनमें ये है समस्या। हाँ इस टाइम पे लगने की भी एक तो कम लगती हो तो दो चार बेल कट्ठी हो फिर तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का आप स्प्रे कर लो ठीक है। हाँ वरना तो दो चार बेल के लिए कुछ मिलेगा भी नहीं, वही शाम को पानी दो और राख वगैरह बखेर दो। हाँ
0: अच्छा
1: हाँ जी
2: ठीक है जी, धन्यवाद जी। बोलिए राम जी।
0: अच्छा
2: हेलो।
3: राम राम जी।
1: राम राम जी,
2: नाम बताओ जी।
3: जी बाड़ी के बजाय करें पछेती, उसका नंबर बताओ जी, जो बढ़िया गला आंदा हो सुथरा बीज हो।
1: इस तरह जी जो रिकमेंड कर रखी है वैरायटी हरियाणा सरकार ने, राशि की है, अंकुर सीड की है, हाइब्रिड कावेरी सीड की है, कोई नूर की है, माइको की है, कहीं भी नज़दीक से अच्छी कंपनी का बीज ले लो। अजीत सीड की है, अमर बायोटेक की है, अगर बीटी कपास बोनी है तो ठीक है जी।
3: हाँ या बीटी बोया करें जी।
1: हाँ बीटी बोलो, वैसे तो लेट हो रहे, इसी महीने आप बो सकते हो ठीक है जी।
3: कल ना पानी का उसरा है जी।
1: हाँ हाँ
2: कल का उसरा है तो उसको
1: तो चाहे आप किस हिसाब से बोना चाहते हो, एक तो नाली बना के नालिया में बीज चोब के पानी दे दो वो भी बेटर। हाँ डोड़िया पर ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल है, बीज चोब दो और पानी का उसरा है, वो नमी ऊपर तक जानी चाहिए। हाँ
2: ठीक है जी।
3: नंबर बताओ जी फिर।
2: किस चीज का जी, किस्म का?
3: हाँ
1: किस्म का आप माइको की ले लियो, MRC 7041 है। आप ये कहो कि भाई जो कम दिन वाली हैं, राशि की हैं, अंकुर की हैं, एक रघुवीर वैरायटी है आई बीटी कॉटन की, वो बो सकते हो, अंकुर जसी बो सको, अंकुर 5642 जो आपको बढ़िया दुकानदार से मिल जाए वही आप बोलो। रसीद ले लेना उससे, एक भाई अच्छी कंपनी की दे दो।
2: पक्का पर्चा जरूर ले लियो जी, जब बीज आप ले हो काल ना कोई दिक्कत आने लायक जा कुछ, मान लो कहीं आन जान का तो हो जाए किसान ने।
1: कौन से गांव में बोन,
2: कहाँ से बोल रहे हो आप? जींद से।
1: जींद जिला। अच्छा जी,
2: बीबीपुर से।
3: हाँ जी
1: ठीक है।
2: हाँ तो आप जहाँ से भी बीज ले हो वहाँ से पक्का पर्चा जरूर ले लियो जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद जी।
2: हेलो
4: नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार, नाम बताओ जी।
4: जगदीश है जी, गांव कमारी रेवाड़ी जिला है।
2: जगदीश।
1: हाँ जी जगदीश जी,
4: मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं ये जहर मुक्त कैसे होगा जी? एक एक तरफ तो आप सिफारिश करते हो इतना खाद डालो, इतना कट्टा गेरो, ये समझ में सोचा ना है। एक तरफ तो मतलब आप इतनी सिफारिश करते हो, एक तरफ कह दो जहर मुक्त करो।
1: इस तरह जी जहर मुक्त उस टाइम हो जाएगी, हम गोबर के खाद की भी सिफारिश करते हैं, 2-3 ट्रेली गोबर का खाद हर फसल में, सब्जियों में, गंदे नाले का पानी ना लाओ, ऊपर ऐसा स्प्रे ना करो ठीक है ना। और पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छी किस्म का बीज लो, जो रिकमेंडेड वैरायटी है, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं, जितनी उसकी ज़रूरत है उतनी डालो तो जहर मुक्त अपने आप ही हो जाएगी जी। गोबर का खाद डालो, नीम वाले आप स्प्रे करो, नीम बेस। अच्छा वाले फसल चक्र अपनाओ, जो भी है दाल वगैरह बीच में लेके, ताकि जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहे।
4: वो तो ठीक है जी, फिर आप यदि सिफारिश कर देते हो ना भाई इतना कट्टा गेरो इतना करो, फिर हम तो इतना गेरते भी नहीं जी, आप बताते हो ना इतना कट्टा हम गेरते नहीं खाद।
1: नहीं वो तो टेस्ट बेस पे ही डालने चाहिए, मिट्टी टेस्ट करा के जितनी जरूरत हो उतना ही डालने जी। हाँ ज्यादा डाल,
4: मैंने मिट्टी टेस्ट कराई थी रेवाड़ी।
1: हाँ जी हाँ जी,
4: तो सारा तत्व मतलब उन्हें बता दे, 16 तत्व होते हैं, 16 तत्व की कमी बता दी।
1: हाँ जी हाँ हाँ, तो मैक्सिम चौधरी साहब, मैक्सिमम तत्वों की कमी गोबर के खाद से पूरी हो जाती है उस जमीन में। गोबर का खाद डालो, उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। और दूसरी जो है ये NPK है, ये कम मात्रा में डालो।
4: हाँ वो तो ठीक है जी, देव खास जी है, सरकार नहीं करे मदद से, यूरिया मिले ऐसे नहीं मिलेगी।

0: है जी
1: जैसे जैविक खाद मिलन लायक जाए तो किसान खरीदन लायक जाए, जैसे यूरिया खरीदते हैं ऐसे।
0: ये जैविक खाद में कई बार बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। आप अपना खुद केचुए की खाद तैयार कर लो, हरी खाद तैयार कर लो, डेचा गवार जमीन में बालो, फसल चक्र अपना लो, वो अच्छा है। जैविक खाद की माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से आप वो ले सकते हो, ओजोटोबैक्टर ले सकते हो, दूसरे फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया ले सकते हो जो आपकी मदद करें।
1: वो तो ठीक है जी, ये तो अपना ये एरिया का आपने पता है जी, ये करें को ना, ये तो बस जानो बस यूरिया है, बस वो करें से जैविक खेती अपनावे
2: इसमें
1: तो बहुत
2: जगदीश जी,
1: बढ़िया
2: हर
1: काम
2: एक
1: है जी।
2: आदमी तो जैविक करता नहीं, लेकिन जो
1: हाँ
2: एक
1: जी,
2: सिफारिश है ना, वो डॉक्टर
1: हाँ
2: साहब ने
1: जी,
2: बतानी भी पड़े हैं। रही बात, जो आदमी जैविक खेती करना चाहे उसको कोई रोक थोड़ा रहा है, वो सलाह तो जैविक खेती की भी दी जा है, वह जैविक कर लो। लेकिन जो मान लो रासायनिक खेती करना चाहो, ही बार एक ऊपर ये थोप्या तो नहीं जा सकता कि भाई आप करो ही जैविक। जैसे मान लो
1: हाँ
2: आपका
1: सर,
2: आपका मूड ये है कि भाई हम जैविक खेती करेंगे, आप कर लो जैविक
1: हाँ
2: खेती, ठीक है
1: हाँ
2: ना।
1: वो तो ठीक है जी, वो तो
2: हाँ, वो
1: करें
2: जैसे
1: ये
2: डॉक्टर साहब ने
1: भी
2: बताया, हरी खाद है, बाप टाइम है उसने बो कर ना उसके अंदर काट दो, आपका नाम की तो होगी जैविक खेती है।
1: हाँ जी
2: हाँ
0: ना,
2: चलो
0: अपने
2: ठीक,
0: खाने के लिए उगाते हैं
2: हाँ
0: लोग, कोई ऐसी बात
1: हाँ
0: नहीं।
1: ठीक है जी, वो तो
2: ठीक,
1: ठीक है, बस तो यही करना पड़ेगा जी, वो
2: बिल्कुल
1: क्या है।
2: बिल्कुल ठीक है जगदीश जी। हेलो, तो डॉक्टर साहब देखो जहाँ तक, हेलो हेलो,
1: हेलो,
2: हाँ जी नाम
1: हाँ जी
2: बता।
1: नमस्कार जी,
2: हाँ नमस्कार जी, नाम बताओ,
1: मनोज बोल रहा हूँ जी, नू नमाजरा से, ये
2: ये कौन सा जिला पड़े आपका?
1: हमारा जद जिला है जी,
2: अच्छा जी,
1: ये बहादुरगढ़ के पास।
2: अच्छा जी,
1: हाँ
2: हाँ बोलो क्या समस्या है
1: आज
2: खेती बाड़ी
1: ये
2: संबंधी?
1: की बेल लगाई थी, कई
2: हाँ
1: लगा रखी हैं, वह
2: अच्छा,
1: एक एक दिन मैं सारी जड़ गई, एक का दिन मैं बहुत बुढ़ी हो रही थी, छात पर चट्टन हो रही थी,
2: अच्छा
1: पल घर में ही लगा रखी तो रहा नदी पर हम ढक्कन लाग गए, कहीं है बेल
0: हाँ,
1: तो
0: बस ये टेम्परेचर के कारण जो 46 डिग्री टेम्परेचर गया है तो
1: वो तो
0: ही।
1: है,
0: हाँ
1: पर
0: जी,
1: एक कदम में कती सी बढ़ से
0: ओ
1: आके एक कदम
0: नहीं,
1: में
0: ओ
1: खत्म
0: क्या
1: होगी।
0: हुआ, जो मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो 46 डिग्री पर पहुंचने के बाद वो जड़ में कुछ रहा ही नहीं, एकदम जुड़ जाती है, मतलब फिर पक्के के नज़दीक है, घर में है ऊपर, हाँ, तो इसलिए कई बार ये टेम्परेचर के कारण हो जाता है ये।
1: नहीं तो और जो बेल है ना उन नाम दोपहर में ढक्कन लाग गए
0: हाँ ना,
1: वो
0: दीवार
1: बिल्कुल
2: के साथ में आपकी,
1: ना, वहां तख्ती पकड़ के बिचाड़े थी,
2: फिर बगड़ के बिचाड़े थी, दीवार तो कितनी दूर है?
1: दीवार तक 8-7 फुट दूर थी, वह दीवार पर चढ़ हो रही थी, वह लगा रखी सपोर्ट सीटी शाटी
2: हाँ
1: उन पर चढ़ा रखी थी।
2: चलो, देखो दीवार के साथ में होने में भी कई बार
0: टेम्परेचर का
2: बढ़ जाए
0: ज्यादा,
2: डॉक्टर
0: जहां
2: साहब।
0: पक्का एरिया है
1: हाँ
0: और है
1: वो
0: कत...
1: तो बना तो और जो बेल है सुबह ढकी दे, हाँ
0: ना
1: शाम
0: बि,
1: नौ
0: बि,
1: घाटा,
0: हाँ बिल्कुल
1: आज
0: बिल्कुल,
1: ये
0: हाँ
1: पानी पानी है, एक माह का पानी पानी नया लगाया है अपना सबमर्सिबल
0: पानी आप टेस्ट
1: है
0: करा लो, और पानी
1: ना,
0: शाम
1: वो
0: के टाइम पे द...
1: 650 TDS है जी,
0: अच्छा ये,
1: मतलब पी सका आदमी सा पानी है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं ना,
0: न ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती,
1: ना खारे नहीं है, खारेपन नहीं है पानी में,
0: नहीं
1: पैंतीस छत्तीस फुट पर लगा है।
0: शाम के टाइम पर पानी दो, और पानी का सके तो कृषि विज्ञान केंद्र में लैब है, उसमें दूसरे
1: वो
0: और
1: तो नहीं,
0: साल्ट तो नहीं
1: सुबह
0: है।
1: मतलब दोनों टाइम सुबह वक्त तो नहीं दे दिया, शाम में दे दिया,
2: नहीं, सुबह तो बिल्कुल देना ही नहीं है, शाम शाम
0: सुबह
2: को
0: ना
2: देना
0: दो
2: है,
0: आप।
2: कम
0: हाँ
2: देना है। हाँ
0: हाँ वक्त है दे तो 5 बजे दे लो, लेकिन शाम का
1: हाँ
0: पानी अच्छा रहता है, शाम को
1: शाम में
0: दो।
1: दे,
0: हाँ,
1: सूखी
2: और
1: में
2: डॉक्टर साहब हर रोज देने में भी ठीक नहीं
0: ना,
2: ना,
0: हर रोज देने में ठीक नहीं
2: मान
0: है,
2: लो
0: जब
2: 5 दिन
0: बेल
2: में,
0: पर रोज नहीं
2: नहीं,
1: ना,
2: 5 दिन में, 4 दिन में कम से कम है।
1: अच्छा गिया की
2: हाँ
1: बेल में
2: जी,
1: हम तो रोज
2: नहीं
1: खाना जी,
2: नहीं नहीं उसका ये भी कारण उसका है डॉक्टर साहब, जड़ गलन का कारण भी उसका है
0: जड़
2: ना।
0: गलन का हो सकता है या साल्ट ज्यादा हो, जो आपने टेस्ट नहीं कराए अभी। हाँ ठीक है ना,
1: हो सका नुआ खराब हो
2: हाँ
1: तो
2: वो
1: हम तो
2: ज्यादा
1: पानी तो रोज
2: नहीं, नहीं ज्यादा
1: डाला,
2: पानी मत डालो।
1: जमीन इसी है जी, एक कदन में इसी हो जा, पानी ना डाला तो कभी सूख का
2: नहीं,
1: कभी उजा हो जा,
2: उसकी
1: कभी
2: जड़ा द्वारा
1: क्या।
2: थोड़ी खुदाई कर दो ना,
0: हाँ
2: फिर नमी ज्यादा लंबे समय तक रही रहेगी।
0: उसमें क्या है, थोड़ा गोबर का खाद साइड में लगा दो नोड़ा के, ताकि वो पानी ना रोके रखे।
1: अच्छा जी
2: ठीक है जी, धन्यवाद जी।
1: ठीक, धन्यवाद। हेलो सुरेंद्र भाई नमस्ते जी,
2: हाँ नमस्कार जी, नाम बताओ
1: नाम तो महिपाल है जी, वो काम बताना जी मुझे ला जी,
2: जी।
1: हाँ जी
0: महिपाल जी,
1: महिपाल जी, डॉक्टर साहब को नमस्ते जी,
0: नमस्कार जी।
3: सुरेंद्र भाई एक बात आपने तो करा दे।
2: हाँ बोलो।
3: युरागनी थोड़ा मैंने कहने कम नहीं करे आपने थोड़ा ही नहीं कही थी यार मैया।
2: देखो ना तो युरागनिया का प्रोग्राम यू है खेती बाड़ी संबंधी, इसकी अच्छा कोई समस्या हो तो बताओ।
3: सुरेंद्र भाई जो बाड़ी का बीज पूछा ये देसी बाड़ी बोना चाहने जी।
2: अच्छा हाँ ये बात हुई ना पूछन की आपकी बाड़ी की।
0: देखो अगर बीटी कपास का बोना है तो कई कंपनी है, 100 के करीब वैरायटी रिकमेंड कर रखी है यूनिवर्सिटी ने, अजीत सीड की है, अमर बायोटेक की है, अंकुर की है, बायोशीड की है, धनलक्ष्मी, किसी भी जमे इफको खरीफको से अच्छी दुकान से आप बीज ले लो, या अगर गवर्नमेंट के दे रही है तो गवर्नमेंट की उससे ले लो दुकान से बीज और अच्छी तरह उसको बो, ये रिकमेंडेड है, कोई ऐसी बात नहीं है। हर नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र में इनकी लिस्ट गई हुई है, आप बो सकते हैं
3: जी। सर कि मैं यार सब्सिडी बताऊंगा
0: नहीं, सब्सिडी तो आप डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के ऑफिस से पूछो आप, अगर सब्सिडी है तो। हाँ ड्रिप वगैरह पे दे सकते हैं ये सब्सिडी, अगर ड्रिप से बोते हैं और है, लेकिन अब तो आपने कपास बोनी है तो अभी बोलो, जल्दी बोलो, हाँ क्योंकि आगे लेट हो जाएगी। हाँ देखो अच्छी लगने के बाद अच्छा मौसम हो तो 25-30 मन निकल आती है। अच्छा, ये आपकी जमीन पे आपकी मेहनत पे निर्भर कर रहे।
2: महिपाल जी इसमें अच्छा। देखो अपनी मेहनत भी तो काम करे है ना।
3: हाँ ठीक।
2: एक औसतन पैदावार ही बता दी, मान लो 8 क्विंटल 9 क्विंटल निकले आई, 10 क्विंटल भी निकले हुआ है, और जो अच्छी मेहनत करोगे तो 12 भी निकल सके, हर जो ना करोगे तो वह 2 भी रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करो और जरूर मिलेगा, ठीक है ना। ये जो डॉक्टर साहब ने बताई है बीटी संबंधी, ये आप कोई भी आप किस्म ले, अच्छी भरोसे की जगह ते ले, और जो पक्का बिल है वो जरूर ले लियो महिपाल जी इसमें, क्योंकि बीज के अंदर कई बार बड़ी दिक्कत आ जाए और वो फिर बाद में उसका कोई जिम्मेवार नहीं होता, पक्का बिल जरूर ले लियो, ठीक है। धन्यवाद जी। हेलो
4: नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, नाम बताओ जी।
4: राजेंद्र जी सांगी से।
2: राजेंद्र जी,
0: राजेंद्र जी कैसे हो?
4: नमस्कार सांगवान साहब।
0: नमस्कार जी, हाँ बताओ जी। हाँ
4: ठीक हो?
0: हाँ ठीक ठाक जी।
4: अच्छा
2: खेती खेती बाड़ी संबंधी राजेंद्र जी आज कोई भी डॉक्टर साहब से।
4: सांगवान साहब से, सांगवान साहब से नमस्ते करने से मेरे नादा।
2: अच्छा जी।
4: और वो धान के बारे में तो ज्यादातर लोगों का।
2: हाँ धान के बारे में।
0: हाँ धान की प्योद बोन का सही समय आ रहा है।
4: अच्छा।
0: हाँ धान की प्योद बोई जा सके है, अपने बासमती चलती है 11, 21, 17, 18 है, ये अच्छी तरह है।
4: ये ज्वार में भी ये है सरकार 8,000 रुपये दे।
0: नहीं ज्वार का नहीं पता, ये तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस बताएगा जी। हाँ ज्वार की भी जो यूनिवर्सिटी की वैरायटी है, HE 136 है, HE 171 है, HE 308 है, तो इनकी बिजाई करें, बढ़िया चारा है इनका यूनिवर्सिटी की वैरायटी का, मिल जाए।
2: इसमें राजेंद्र जी क्या है कि आप यदि इस खेत में पहले धान लगाते हो ने और लगाते आ रहे हो, अब मान लो आप कोई भी अलग फसल बदल कर करो, जैसे हम चारे की बात करें या जो दूसरी फसल है वो करें, तो फिर इस तरह का हो सके, उसके बारे में भी आप पूछ लिया करो।
4: अच्छा
2: हाँ ठीक है ना।
4: ठीक है
2: ठीक है, धन्यवाद जी। हेलो
5: हेलो नमस्ते जी।
2: नमस्कार, नाम बताओ जी।
5: नाम जी कुलदीप बेरा।
2: कुलदीप जी, गांव कौन सा है कुलदीप जी?
5: काम पानवाना है जी।
2: जिला?
5: जिला दादरी।
2: दादरी,
0: हाँ कुलदीप जी बताओ।
2: बोलो कुलदीप।
5: ये जी एक इसका केला का पेड़ ला रहे।
0: अच्छा जी।
5: और इसका फूल नहीं लग रही, बोला डॉक्टर सांगवान साहब बैठे हैं आज।
0: इस तरह जी केले का देखो पहले डे साल तो लगते नहीं, दूसरे साल आके उसमें लग जाएंगे, एक की जगह दो केले के पेड़ इकट्ठे हो ना तो अच्छा है, वैसे एक के भी लग जाते हैं, लेकिन दो साथ के साथ केले के पेड़ हों, अच्छा खाद डालो, पानी दो, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। कई बार कई बार क्या है कि तीसरे साल में जाके लगता, कई बार दूसरे साल में जाके, ये निर्भर करता आपका पौधा किस टाइप का है।
5: ये जी करीब 3-3.5 साल हो गए होंगे।
0: हाँ तो इस साल लगने चाहिए इसमें तो, अब की बारिश के सीजन में लगेंगे। हाँ
5: बारिश के सीजन में।
0: हाँ अब की बार लगेंगे, आप उसकी देखभाल करो। इसे ऐसी बात नहीं है कि ये जो कीड़े कीड़ा और उसमें कीड़े ना लगें पौधे में।
5: ठीक है जी, राजवीर के पास आंगन का।
2: चलो
0: नहीं, ठीक है,
2: ठीक है जी, धन्यवाद जी। हेलो
6: हेलो, सुरेंद्र भाई जी को मेरा नमस्कार।
2: जी नमस्कार जी, नाम बताओ
6: जी। कहाँ बाग होते महेंद्रगढ़ से प्रकाश संभावता बोल रहा हूँ
2: जी। प्रकाश जी,
6: जो डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी प्रकाश जी, हाँ बताओ जी।
6: जी सर, ये कपास सर ये 33 दिन की होगी सर।
0: हाँ जी हाँ,
6: तापमान सर ये बढ़ता जाएगा, 2-6 बता रहे हैं।
0: हाँ हाँ,
6: तो सर इसमें पानी लगा जाएंगे 33 दिन की होगी।
0: 33 दिन की आपको ये रेतली जमीन है और ये लगा कि ये गड़बड़ में है, तो आप पानी लगा लो, वरना और थोड़ा है इंतजार कर लो।
6: अच्छा जी,
0: हाँ
6: रेतली नहीं सर, दोमट माटी है।
0: हाँ तो और थोड़ा है इंतजार कर लो। हाँ जब ये हो जाएगा भाई, क्योंकि पानी की तलाश में जड़ गहरी जाएंगी, जब ये आगे अच्छी पैदावार देगी। हाँ
2: जल्दी पानी देने में फिर वो इतना जड़ गहराई में
0: जड़ गहराई में नहीं जाएगा।
2: 8-1 बजे ही देख लिया करो खेत में जाके।
6: ना डेली जाऊं सर
2: खेत में। नहीं 8 बजे ही देख ले, उसमें जब मान ले सोका मानी दिखे कुछ पत्ते हमने नो लग गए तो फिर अपना पानी
0: जब ये हो जाए मरने लगी। हाँ तो एक आधे पत्ते तो फिर ये फिर पानी दे दो।
2: हाँ फिर दे दो।
6: और सर जैसे अपना तो हफ्ते भर में काट दे देगी सर यार।
0: हाँ
6: तो इसमें सर ये सूडान घास जो है ये सूडान घास है ये लगा सका इस टाइम।
0: हाँ लगा सको हो, जवार इस टाइम बो सकते हो, सूडान घास भी कोई भी चारे की फसल, मक्का है लोबिया है कोई भी चारे की फसल इस टाइम बो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, उसमें आपने सावधानी ये बरतनी है, खेत में नमी पूरी हो, शाम के टाइम बो और ऊपर से सुहागा मार दें, खुले में बोगे तो लू चले हो सारी नमी उड़ जाएगी, उगेगा नहीं बीज आपका।
2: ज्यादातर रोटावेटर से बूंद साहब, और जो उसका बान है ना वो फोका रहे है।
0: और रोटावेटर का बान फोका रह जाता
2: फिर
0: है,
2: फिर उसके ऊपर जब सुहागा लगा दे,
0: सुहागा लगा दे फिर
2: तो दबाव में जो नमी है वो बनी रहेगी,
0: वो बनी रहेगी।
2: ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी। हेलो
7: हेलो, नमस्कार जी।
2: नमस्कार, नाम बताओ जी।
7: मैं गांव काले राम से छोटू राम बोल रहा हूं
2: जी। छोटू राम जी बोलिए, क्या दिक्कत है?
7: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
7: मैं जी 1 एकड़ में ग्वार बिजाई कर नहीं सके, मैं जी आपसे तोती कटवा दी, डूंगी बुआई करवा के खूब।
0: हाँ जी।
7: तो डॉक्टर साहब 2-3 साल हो गए ग्वार कम हो गए, ऐसा बीज बताओ जो 20-25 मिनट जो पहले हो सकता ग्वार उस हिसाब हो गया।
2: ग्वार की तो मेरे ख्याल में ये किस्म है जो आप बिजाई करते आ रहे हैं ना। हाँ बाकी आपके एरिया में और कोई दूसरी कोई नई ले आया हो तो वो देखो आप एक बार।
0: HG 365 हो 563 हो ये बो सकते हैं आप। HG 220 हो ये अच्छी वैरायटी हैं, ये पैदावार अच्छी दे देंगी 9-10 क्विंटल तक आपकी।
7: साहब पहले तो जल्दी आज ये 2-3 साल हो गए मेरे तो ये थोड़ी हो, कोई घर खास कोनी, कोई खाद पानी कुछ लगावा इसमें?
0: नहीं खाद पानी तो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से टीका ले लियो राइजोबियम का, बीज उपचार उससे कर लियो, और नीचे 35 किलो DAP प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर डाल लियो।
7: अच्छा DAP डालनी पड़ेगी?
0: नहीं आपने क्या है दाना बनाना है तो नीचे DAP डालना पड़ेगा, जितनी भी दाल दाल वाली फसल है मूंग है अरड़ है उड़द है तो उसमें लोबिया है, नीचे 35 किलो DAP प्रति एकड़ के हिसाब से आप डालो। और किसान भाई चारे में भी जो ज्वार बाजरा चारे के लिए लिया जाए उसमें भी कम से कम 35 किलो DAP प्रति एकड़ के हिसाब से, ताकि चारे में फास्फोरस की कमी न रहे और दूध न सूखे पशुओं का। हाँ जी बिजाई के समय नीचे बान में डाल दे आप। हाँ लू तो चल रही है इस टाइम तो
7: बड़ी।
0: हाँ बिजाई के समय, हाँ जून के एंड में जब बारिश शुरू हो जाए उस टाइम गवार की बिजाई कर सकते हो, अच्छी पैदावार दे, कोई वो नहीं है।
2: ठीक है जी, धन्यवाद जी। हेलो
8: हेलो,
2: हाँ जी नाम बताओ। हेलो हेलो, हाँ जी नाम बताओ ना, बोलो।
8: प्रमोद बोलो जी, गांव खरगड़ा रोड।
2: हाँ प्रमोद जी बोलो फिर।
8: सर जी मैं पूछ, 2 किले अड़के हैं।
2: अड़के हैं?
8: हाँ मतलब गति कमजोर है।
2: हाँ हाँ समझ गए।
8: ठीक है, और पानी खराब है।
2: हाँ
9: और ऊपर निकले धान लगा दे साइड वाले।

0: ਜੀ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਬਵਾ,
1: ਆਪਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਰੇ?
0: ਹਾਂ ਜੀ।
1: ਅੱਛਾ,
2: ਆਪ ਜਵਾਰ ਬੋ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਵਾਰ ਹੀ
1: ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ।
0: ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੋ ਜੀ,
2: ਹਾਂ ਜੀ,
0: ਉਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ,
1: ਜਵਾਰ ਤੋਂ ਅਬ ਬੋ ਦੀ।
2: ਅੱਛਾ, ਜਵਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬੋਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ।
0: ਹਾਂ ਜੀ।
1: ਆਪਕੇ ਪੜੋਸੀ ਕਿਆ ਬੋ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ? ਦਾਨ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਆਪਕੇ ਦਾਨ ਲਗੇ ਹੈ
2: ਤੋ। ਹੈਲੋ,
0: ਹਾਂ ਜੀ,
2: ਜਵਾਰ ਕਾਟਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੂਸਰੀ ਰਬੀ ਕੀ ਫਸਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਗੇਹੂੰ ਵੀ ਬੋ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਮਕ ਹੈ ਤੋ ਉਸਮੇ ਸਾਲਟ ਟੋਲਰੈਂਟ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ, ਨਮਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਕਿਸਮੇ ਬੋ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਗੇਹੂੰ ਕੀ ਵੀ ਔਰ ਜੌ ਕੀ ਵੀ।
1: ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ,
3: ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਨਾਮ ਬਤਾਓ ਜੀ।
3: ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਸਰ
1: ਜੀ, ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ?
3: ਬਾਪੜਾ ਗਾਓ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਭਿਵਾਨੀ।
1: ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ
3: ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਤੋਂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਰ ਬੂੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਰਪਤਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ
1: ਬਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਰਪਤਵਾਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ।
2: ਕਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਇੱਕ ਤੋਂ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਐਸਾ ਬਦਲ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਕੀ ਫਸਲ ਲੈ ਲਓ, ਬਰਸ਼ਮ ਲੈ ਲਓ, ਜਈ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਸੇ ਖਰਪਤਵਾਰ ਕਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਪਤਵਾਰ ਕਾ ਜੋ ਬੀਜ ਈ ਇਤਨਾ ਜੜਕੇ ਪੜ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਤੋ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਕਾ ਇਲਾਜ ਤੋ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਕਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਬਦਲ ਲਓ ਇੱਕ ਆਧੀ ਵਾਰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਖਰਪਤਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ।
3: ਔਰ ਧੂਪ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਏ ਜੀ, ਬੰਨ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਜਾਂ 25 ਦਿਨ?
2: ਧੂਪ ਤੋ ਵਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, 25 ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੂ ਪੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਛੋੜ ਦਿਓ ਆਪ, ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਿੱਟੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਡਲੇ ਪਾੜ ਕੇ। ਹਾਂ,
1: ਈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੁਤਾਈ ਕਰਦੀ?
3: ਹਾਂ ਜੀ, ਜੁਤਾਈ ਬਾਈ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜੁਤਾਈ ਕਹਾਂ?
1: ਚਲੋ ਬਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸਨੇ ਬਾਈ ਕਰਦੀ ਆਪਨੇ, ਡਲੇ ਪਾੜ ਦੀ ਉਸਕੇ।
3: ਹਾਂ ਜੀ,
1: ਤੋਈ ਵਾਪਸ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਖਰਪਤਵਾਰ ਤੋਂ,
2: ਵੇ ਆਪੇ ਗਰਮੀ ਮੈਂ ਜੋ ਐਕਸਪੋਜ ਹੋਗੀ ਮਿੱਟੀ ਡਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਧੂਪ ਲੱਗ ਕੇ 46 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਆਪਕਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਪਰ ਜਾਏ ਤੋ ਪਾਣੀ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਟ ਵਿਛਾਣੀ ਪੜੇਗੀ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਖਰਪਤਵਾਰ ਕੇ ਬੀਜ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੀਟ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਤੀਸ਼ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਬਤਾਓ।
0: ਰਾਮ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ।
1: ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਨਾਮ ਬਤਾਓ ਆਪਣਾ।
0: ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਰਾਮ ਬੋਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਾਲੇ ਜੀ?
1: ਮੰਗੇ ਰਾਮ ਜੀ।
0: ਹਾਂ ਜੀ,
1: ਹਾਂ ਜੀ, ਬੋਲੋ, ਕਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ?
0: ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮ ਰਾਮ।
2: ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।
0: ਥੋੜੀ ਮੰਗਾ ਵਾਰਮ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਹਫਤਾ ਮੈਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਟੋਪ ਫੰਗਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਕਈ ਬੂਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕੱਦੇ ਵਾਂ, ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
2: ਪਾਣੀ ਤੋ ਦੇ ਲਿਓ, ਅਬ ਫੁੱਲ ਚਮਕਣੇ ਲੱਗਿਆ ਤੋ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਤਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਣੇ ਲੱਗਿਆ ਤੋ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਲਿਓ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੇ। ਮੈਲਾਥੀਓਨ ਕਾ ਯਾ ਔਰ ਕਿਸੀ ਕਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸਮੇ ਤੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਸਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੇ ਦੋ। ਹਾਂ, ਆਪਕੋ ਯੇ ਲਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਫੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੌਦਾ ਪਾੜ ਕੇ ਖੇਤ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦੋ।
0: ਡੇਢ ਕਿੱਲਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ?
2: ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਲਿਓ ਆਪ, ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਉਸਮੇ ਕੋਈ ਅਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਰ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਲਿਓ। ਹਾਂ,
0: ਪਕਾਈ ਕਿਤਨਾ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ?
2: ਪਕਾਈ ਤੋ ਯੇ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਪੇ ਹੈ, ਯੇ 65
0: ਦਿਨ ਮੇਂ
2: देखो जी ये तो नंबर मैं बता नहीं सकता है, पकाई तो आगे आपकी अगली धान की फसल है आराम से बूझ जाएगी, जो भी अगली फसल लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 70 दिन में पक जाएगी ये।
0: अच्छा,
2: ज़्यादातर 70 दिन में तैयार हो जाए,
1: 65-70 दिन के आसपास ये तैयार हो जाए डॉक्टर साहब। और फिर जो किसान भाई हैं जो अगर धान लगा हुए हैं उसके लिए ये दे भी दे है काम।
0: पहले तो एक बारिश ही होगी थी,
1: लेकिन अब तो थोड़ा हा जो मौसम है वो गर्मी का है, और गर्मी में जो फंगस की बात करो ये तो खुद भी खत्म हो सके है, बाकी जो पौधे डॉक्टर साहब ने बताया वो दबा दो दूर एक साइड में ले जाएगा।
0: अच्छा,
1: सिंचाई
2: कर दो सिंचाई,
0: कोई बूंदाबांदी का मौसम नहीं बता रखे डॉक्टर साहब?
2: नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो ये टेम्परेचर ही
1: शायद कई दिन और रहेगा,
2: कई दिन और रहे
1: ये, ये 25 मई से लेके और जो 2 जून है वहाँ तक तो 9 तपा बता रहे हैं मांगेराम जी, तो उसके आगे पीछे तो ये कहा जा सके गर्मी हो है।
2: अब तो अपने आप को, फसल को, पशुओं को, खुद को गर्मी से बचाओ,
1: गर्मी से बचा के रखो यही।
0: तो फिर तो लगा,
1: हाँ लगा दो, ठीक है, धन्यवाद जी,
0: धन्यवाद जी।
1: तो डॉक्टर साहब देखो कुछ जो हमारे किसान भाई हैं उनका एक प्रश्न रहे है वह जो खरपतवार का, जैसे एक भाई का प्रश्न आया था और उसमें जो एक कोई भी हम फसल ले जैसे धान की लेना शुरू कर दिया या कपास की लेना शुरू कर दिया, कई जगह कपास और गेहूं का चक्कर है, कई जगह पे ये इसका धान का और इसका गेहूँ का फसल चक्कर है, तो ये जो खरपतवार है न ये बड़े दुखी कर रहे हैं।
2: एक तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा सुरेंद्र जी, मई के महीने में किसी भी सब्जी में नोड़ाई गुड़ाई न करें, घास को उगने दो ताकि वह उस सब्जी को आपको माइक्रो क्लाइमेट को ठीक रखे, मेंटेन रखे, उसको बचाएं
1: जी।
2: एक दिसंबर और जनवरी के महीने में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक खरपतवार न निकालें खेत में ताकि पाले से बची रहे, और इस टाइम भी गर्मी से बचाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है जो भी सब्जी है और है, एक गन्ने को छोड़कर आप किसी भी चीज़ में नड़ाई गुड़ाई न करें
1: जी।
2: गन्ने में नड़ाई गुड़ाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो उनके पेरिनल वीड होते हैं, बहुवर्षीय वीड होते हैं।
1: डॉक्टर साहब फोन लेते हैं, हेलो हेलो
0: हेलो, राम राम सुरेंद्र भाई,
1: राम राम जी, नाम बताओ।
0: मुनीराम बिवानी,
1: मुनीराम जी बिवानी से,
0: हाँ जी,
1: हाँ मुनीराम जी, खेती बाड़ी संबंधी कोई बात पूछो।
0: हमारे एक सिस्टम है जी 5 साल की,
1: अच्छा,
0: और उसकी लगर जो निकल रही है ना वो सुकल लगी, क्या था सुकल लगी,
2: क्या निकल रही है जी?
0: ऊपर जो टहनी निकल रही है लगर सी, कच्ची कच्ची लगर निकल रही है,
2: हाँ हाँ हाँ,
0: वो सूखने लगी है जी।
2: अच्छा जी, हाँ तो इसमें तो 5 साल की होगी, तना ठीक है?
0: तना भी नहीं है जी, ठीक, तने के अंदर काला काला सा हो रहा है जी।
2: इस तरह नीचे जमीन रेतली है?
0: रेतली है जी।
2: इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस पानी दे दिया करो, कोई इस टाइम और कोई इलाज नहीं है, है? ये हाई टेम्परेचर में कई बार सूख जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
0: ये तने की ख्याल है ना जी, इसके अंदर काला काला हो रहा है, तड़पड़ा तड़पड़ा गूंद जैसा
2: वो हो जाता है, एक आधी जगह कोई उसको कोई चीज लग जाती है और लग जाती है।
0: अच्छा जी,
2: हाँ ऐसी कोई वो फंगस नहीं है, चौवा ऊपर तो नहीं है, नीचे ही होगा ना? हाँ
0: नीचे है जी, और एक बगल में एक तूत का पेड़ है जी,
2: हाँ जी,
0: और उसके पत्ते हैं बीच बीच में तो आ रही है कानी कानी लाल होगी उनकी,
2: तो अच्छा कानी इस टाइम लाल हो जाती हैं शहतूत के पत्ते की, कई बार क्या है कि भाई जमीन में नमक है, आपने नमकीन पानी डाल दिया तो कानी कानी बन जाती हैं, ऐसी कोई ये नहीं। शहतूत की तो आप सर्दियों में कटाई छंगाई कर दिया करो और नीचे पानी दे के गोबर खाद डाल के वो गर्मियों में अपने आप टहनी फूटेंगी, वो अच्छी आएंगी। पुरानी जो सूखी टहनी है उनको काट दिया करो सर्दियों में, और फिर जो फरवरी मार्च का महीना आएगा तो अच्छी फैलती है वो तो। हाँ, वो नीचे देख लियो कसी से खोद के, कोई हार्ड लेयर तो नहीं है काकर वगैरह की ओर की, या ना कहीं नमक इकट्ठा हो रहा हो तो उसके कारण किनारियों पे सूखना या लाल सा आ जाता है।
0: चपलाई का पानी डालना था जी, और वो पानी तो से नमकीन पानी गड़ा नमकीन है जी।
1: सप्लाई का पानी नमकीन आवे आपके?
0: हाँ जी।
1: नहर का नहीं अंदा?
0: नहर का भी कदे नहर का छोड़ दे कदे
1: जिस दिन नहर नहर का छोड़ देने उस दिन ले लो आप
2: नहर का, वो डालो, बाकी बारिश पे निर्भर करो। खराब पानी मिनिमम डालो सिर्फ बचाने के लिए।
0: अच्छा जी।
2: हाँ, जो नमकीन पानी है उसके कारण ये पत्ते साल्ट आके ये खराब हो जाते हैं।
0: अच्छा जी, ठीक
1: ठीक है, धन्यवाद मुनिराम जी।
0: धन्यवाद जी।
1: हेलो हेलो,
4: राम राम जी। डॉक्टर साहब
1: जी, राम राम, राम, राम, राम, राम, राम नाम जी।
4: बताओ जी। जी नाम सुदेश कुमार जी, जिला कलाम, जिला रोहतक जी, तहसील कलाम।
1: बोलो जी, क्या दिक्कत है? खेती बाड़ी संबंधी
4: किसका बारे में विषय विषय
2: है जी?
4: अच्छा जी, डी एस आर धान लगाने का नाम है।
2: DSR धान लगा सकते हैं आप?
4: टेम्परेचर ज्यादा नहीं है?
2: टेम्परेचर तो ज्यादा है, रुक जाओ 4-5 दिन।
4: किस तरीके से मशीन दोबारा बोई जाएगी, किसी हिसाब से उसका उपचार करा?
2: हाँ, मशीन से बो आप, बीज का उपचार, बीज का उपचार तो उपचार हो, कर वो भिगोने की जरूरत नहीं है अभी। नो
4: एक तो पड़े करके वो सुकम हो के पानी देवा।
2: हाँ, दो आप दो कोई सी भी चीज अपना सके पहले पड़े करके बो दोगे वो भी अच्छा है।
4: यार सुकम हो के पानी दे दिया। हाँ, रंगा दादा
2: इसमें सबसे जरूरी तो ये है, आप अपनी जमीन को लेजर लेवलर से बिल्कुल एक सार करो, उसके बाद ये टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप बोलो, 2-4 दिन बाद टेम्परेचर थोड़ा डाउन आ जाए ना तो आप बोलो। हाँ,
4: तो मतलब सुखा बोकर ऊपर पानी दे दिया, रंग खत्म बतवाड़ करना जमगा
2: नहीं? वो क्या है कि 2 लीटर स्टोम्प का आप स्प्रे कर दियो बिजाई के तुरंत बाद।
4: अच्छा, तो वो पेड़ ना जो गांधर नहीं जाएंगे कि मेरे काम में?
2: ना ना ना, ना ना ना, आप सूखे बोओगे और फिर पानी दोगे, पानी देने के तुरंत बाद आप 2 लीटर स्टोम्प प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दो।
4: स्टोक मतलब पीली दवाई?
2: हाँ हाँ, ये पीली दवाई, पेंडीमेथिलीन, पेंडीमेथिलीन।
1: और जय, आप पहले सिंचाई करके करो तो जिस टाइम आप बिजाई कर लो ना, बिजाई करते ही उसी समय शाम के समय पे उसमें स्प्रे कर दो, जो खरपतवार। ठीक है जी, धन्यवाद जी। हेलो, तो डॉक्टर साहब, जो हम बात कर रहे थे खरपतवार नियंत्रण की, क्योंकि जो खरपतवार हैं वो हर फसल के लिए बड़े नुकसानदायक हैं, और उसमें जो फसल चक्कर है उसका अपना एक विशेष महत्व तो ये है कि हमारी ज़मीन के जो पोषक तत्व हैं वो भी बढ़े हैं।
2: इसमें मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा, जहाँ धान की बो सीधी बिजाई करें, कम से कम जिस खेत में बरसम बोई हो, बरसम कम बोते हैं, ज्वार कम बोते हैं, चारे वाली फसलों में आप बोओगे तो खरपतवार की समस्या कम रहेगी,
1: कम रहेगी।
2: गेहूं धान जब आप बोओगे तो चाहे DSR करो और करो तो उसमें खरपतवार की समस्या आती है।
1: बाकी जो हम मान लो पेड़े काट कर उस समय लगाए हैं उसमें तो फिर पानी खड़िया रह जाए है, उसमें तो फर्क रह जाए।
2: उसमें
1: बाकी सीधी बिजाई में इससे थोड़ी ही दिक्कत जरूर रहे है, जो खरपतवार है वो बने।
2: सीधी बिजाई में पानी का बड़ा हिसाब रखना पड़ेगा आपको, नमी का, क्योंकि ये दवाई जो भी पेंडीमेथिलीन है कोई भी वीडिसाइड है बगैर मॉइस्चर के वो काम नहीं करती। अगर मॉइस्चर कम रहेगी फिर भी वो काम नहीं करेगी।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा फोन लेते हैं। हेलो
5: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार, नाम बताओ जी।
5: सतीश सांगवान है जी।
2: हाँ जी, सतीश जी,
1: कहाँ से बोल रहे हो सांगवान साहब?
5: गांव सारंगपुर, जिला दादरी
1: जी। बताओ।
5: एक गेहूं की बेल ला रखी है जी, कुछ 10-12।
2: हाँ जी।
5: वहाँ का जी वो नर फूल आते हैं।
2: अच्छा जी।
5: एक बेल का दो तीन फूल आए थे, वो भी कंद के मादा फूल आए थे,
2: तो
5: सभी करने

0: क्या करना पड़ेगा?
1: आप स्प्रे कर दो एथ्रिल का।
0: पैथ्रिल का?
1: हाँ, 4 मिलीलीटर एथ्रिल
0: अच्छा,
1: 20 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ में की सिफारिश है, या तो उस हिसाब से आप दवाई कम कर लियो।
0: और ये कुछ भिंडी की ला रखी है जी,
1: हाँ जी,
0: उनका फल नहीं आया जी।
1: भिंडी का तो आ जाएगा फल, जो भी भिंडी तो कभी ऐसा
0: दो
1: रिपोर्ट्स
0: फुट का लंबा बदरी है जी।
1: नहीं, कोई ना, उसमें तो एक वो वैरायटी ऐसी होगी जो लंबी बढ़ने के बाद वो फल देती होगी। एक ये टेम्परेचर का ही फर्क है, इस टाइम पे
0: अच्छा
1: इतने हाई
0: अच्छा
1: टेम्परेचर पे फूल अपने आप ही ख़त्म हो जाते थे किसी भी चीज़ का है। हाँ,
0: कुछ गहरी भी है जी, हर 4 इंच पर पौधा है वो, शायद मेरे ख्याल गहरी भी है कुछ नहीं।
1: नहीं वो तो जो उसको धूप मिलेगी
0: हाँ, धूप सही
1: उसको
0: मिलती है।
1: लगेंगी, भिंडी तो लगेंगी। हाँ, बहुत
0: अच्छा,
1: ज़्यादा गहरी आपको लगे तो बीच बीच में से जो कमज़ोर पौधे हैं उसको निकाल दियो।
0: हाँ, हर 4 इंच
1: हाँ,
0: पर पौधा है जी वैसे तो।
1: तो दराती से काट दियो। हाँ, अगर
0: अच्छा,
1: आपको ऐसा लगे कि भाई ये फैल नहीं रहे हैं।
0: उसमें
1: हाँ,
0: डेढ़ महीने की होगी जी ये बोई हुई।
1: हाँ जी हाँ,
0: उसमें जो एक आध पौधा कमजोर हो ना उसको निकाल
1: जो
0: दियो।
1: कमजोर पौधे हैं एक आधे उनको
0: अच्छा
1: निकाल
0: अच्छा
1: दो। हाँ,
0: ठीक है
1: ठीक
0: जी,
1: ठीक है सतीश जी,
0: धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब देखो, अब जो समय है वो धान की पौध का है, और धान की पौध का कैसे उपचार करना चाहिए ये कुछ बात। हेलो हेलो, हाँ जी, नाम बताओ।
0: हाँ जी, अच्छा, मैं जोरा राम बोल रहा जी,
1: जी
0: डॉक्टर
1: जोर
0: अभी।
1: जोरा राम जी बोलो।
0: आज एक पेड़ा जी, उसका यो जमन का
1: हाँ जी,
0: फल आ रहे है, यो हो रहा जितना, यो नसवारी सा रंग नहीं हो जाएगा पत्तियां का
1: नसुआरी सारंग के देखो, ये पत्तियों के नीचे धब्बे से बन जाते हैं, आ जाता है
0: हाँ
1: रंग सा। हाँ बिल्कुल है,
0: हाँ
1: इस टाइम तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज तो ये है कि आप सूखी टहनी काट दियो। अब तो पानी देगा अपना, फ्रूट लो जो भी है, जामुन लगने लग रही है, पानी दो शाम के टाइम पर, नमी रखो, जामुन झड़े नहीं के हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद जहाँ जो भी उसमें बुरादा चढ़ है और है वो झाड़ के सारा, जहाँ जहाँ सुराख है, क्लोरोपाइरीफास कोई भी इंजेक्शन भर के वहाँ अपने तने पे स्प्रे
0: नहीं
1: कर
0: जी,
1: दियो। हाँ
0: ऊँ तो आ रहा खड़िया जी पेड़ा तो,
1: हाँ हाँ
0: मतलब जो है ना उसका जो फ्रूट का रंग चेहरा बदल गया रंग, जिस तरह रंग नहीं हो रहा है फ्रूट
1: हाँ
0: का भी, पत्तियां का भी, न्यू है जिस तरह कोई
1: ये
0: ये नसवारी
1: टेम्परेचर कई
0: नसवारी का
1: बार
0: रंग।
1: नहीं, कई बार ये टेम्परेचर के कारण हो जाता है। ये कि आप देखो नीचे उसमें खाद पानी पूरा डल रहा है कि नहीं, क्योंकि खाद हर साल डलना चाहिए, चाहे जो भी है, जामुन है, आम है उसमें 50 किलो
0: अच्छा
1: का अच्छा भारी भरकम पौधा है तो 50-60 किलो गोबर का खाद हर पौधे में डलना चाहिए, चारों तरफ के खुदाई करके, ताकि
0: अच्छा
1: उसमें
0: जी,
1: न्यूट्रिएंट की कोई कमी ना रहे।
0: अच्छा, जो 4-5 साल का पेड़ा है, कहाँ
1: नहीं, 4-5 साल के में तो आप 5-7 किलो गोबर का खाद डाल दो। हाँ,
0: किलो जी?
1: 10 किलो गोबर का खाद डाल दो, कोई दिक्कत नहीं।
0: हाँ, 10 किलो डाल दिया था जी, डाल दिया था जी।
1: तो जो उसका तना है उससे एक बिलात चौगुर्दा जगह छोड़कर ना, फिर जहाँ तक छतरी है ना वहाँ तक की वहाँ
0: खुदाई
1: तक
0: करके,
1: आप
0: और फिर आप जब सिंचाई कर दो उसने जो जड़ हैं वो उसको वहाँ से ले लेंगी। ठीक ठीक है जोरा है,
1: सिंह जी,
0: धन्यवाद जी,
1: धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद। हाँ जी,
1: हेलो हेलो जी,
0: नमस्कार
1: नमस्कार, नाम बताइए
0: सर, मैं दलजीत बोल रहा था हिसार से, खेती
1: जी। दलजीत जी,
0: संबंधी सवाल
1: हाँ,
0: है
1: खेती
0: मेरा।
1: बाड़ी संबंधी है दलजीत जी।
0: अभी बरसात तो हुई नहीं है, पानी लगा के क्या बो सकते हैं? पानी आ रहा हो तो गुआर
1: नहीं
0: गुआर बो सकते हैं कि?
1: नहीं, गवार भी बो सकते हैं, ज्वार भी बो सकते हैं, बो तो कुछ भी सको होगा आप, कोई ऐसी बात नहीं है,
0: अच्छा
1: लेकिन वो उगेगी जब उसमें पूरी नमी हो, शाम के टाइम पर वो ऊपर सुहागा मार दें।
0: जी, स्वागत
1: हाँ
0: मानना जरूरी है,
1: हाँ सुहागा मारना ज़रूरी है, वरना तो फायदा नहीं
0: सूख
1: उसका।
0: जाएगी।
1: हाँ जी,
0: ओ ठीक है, थैंक यू,
1: धन्यवाद जी।
0: ओके।
1: तो डॉक्टर साहब, जो हम बात कर रहे थे धान फसल की,
2: धान एक मुख्य फसल है और उसकी जो पहली हम ये कहें अगर जो पैदावार है उसका पूरा श्रेय तो एक चीज़ पर जा है और वो है प्यो तैयार करना। तो जो प्यो तैयार करने का सही एक जो वैज्ञानिक तरीका है वो थोड़ा हा बताओ।
1: सबसे पहले तो यह है जो भी बीज लें अच्छी किस्म का लें, रिकमेंडेड है। आपने बासमती बोनी है, दूसरी बोनी है, मैं वैरायटी बता दूं, लंबे कद वाली बोनी है, CSR 30 है, तरावड़ी बासमती है, पूसा 11-21 है, पूसा बासमती 18-47 है, कम अवधि वाली है, HKR 48 है, गोविंद है। ये वरायटी अच्छी जगह से ले, उसके बाद इसका बीज उपचार
2: करेंगे किस्म की बात। हेलो
0: जी, राम राम।
2: जी राम राम, नाम बताओ जी।
0: रामधारी बोल रहा हूँ जी, फोगाट गांव से, जिला सरकी जागरी।
2: रामधारी फोगाट जी, जी बताइए खेती बाड़ी संबंधी फोन इन कार्यक्रम में।
0: कपास एक महीने की बोई होगी।
1: हाँ जी।
0: तो फिर इसमें मौसम पानी पात देना पड़ेगा कि और सदेगी?
1: आप उसको देखते रहो, पौधे मर तो नहीं रहे, कोशिश करो जितनी करड़ लग जाए।
0: अच्छा।
1: अगर आपको ये लगे कि पेड़े मरने शुरू हो गए तो फिर आप शाम के टाइम पर पानी लगा दो।
0: अभी मरने मरने शुरू ना हो रहे हैं
1: तो फिर अभी चलने दो। हाँ
0: अच्छा जी। फिर कुछ और
1: नहीं, पहले तो आप खुराक तो बाद में दे लियो। हाँ, पहले ये मौसम ठीक होने दो।
0: हाँ। भी बाद में देंगे ना, तो मतलब आप ये क्या 70 दिन तक कोई जरूरत नहीं है?
1: हाँ, कोशिश करो 50 दिन तक भी, 45-50 दिन तक भी आपका जितना भी चल जाइए। हाँ
0: बस यही पूछ रहा था।
2: चलो ठीक है, धन्यवाद जी, रामधारी जी। हेलो, तो डॉक्टर साहब जो हम किस्मों की बात कर रहे थे उसमें लंबी जो बढ़ने वाली किस्म है, ज़्यादातर क्षेत्र तो अपना इसका इब नहीं रहा, जो एक मुख्य है हमारी बासमती जो मैक वाली जिसको हम कहा करते, लेकिन ज़्यादातर जो क्षेत्र है। तो डॉक्टर साहब फिर फोन आ गया, फोन लेते हैं। हेलो
0: जी, नमस्कार
2: जी। नमस्कार, नाम बताओ जी।
0: नरेश बोल प्रावर से।
2: हाँ नरेश जी बताइए।
0: बट सामान की डॉक्टर बच्चे से तो बुझ जाने बीच दाना अभी कुछ सा बढ़िया रहेगा बाउंड में।
2: नरेश जी एक बात बताओ, आप जो खेती कर रहे हैं हाँ। आपकी जमीन कैसी है पहले तो ये देखो, किस्म
0: तो बढ़िया जमीन मेरे को कमी को ना,
2: पानी
0: मीठा बढ़िया पड़ोस में हूं काम से।
1: तो आप तरावड़ी बासमती बो अच्छी क्वालिटी का बोना है, तरावड़ी बासमती बो CSR 30 बो, आपको रेट अच्छे मिलेंगे। दूसरे नंबर पर
0: बात है, देख सकते हो लावा बिक्र 11-21 लावा है साल।
1: हाँ जी हाँ,
0: बहुत बढ़िया हुए है, पर हिम्मत को बात करनी है।
1: देखो खेती में तो
0: आरंगा हुए है, एक फिर तो आई नहीं चढ़कनी पड़े,
1: तो मैनुअल निकलवाओ आप, एक साल फसल चक्कर अपना लो आप, तो उसे फसल चक्र उसमें चारा बोलो एक साल है, तो उसके बाद फिर धान शुरू कर लो, तो इस हिसाब से खरपतवार का भी कंट्रोल रहे। और
0: बाकी जी
1: हाँ जी
2: नरेश जी, जितना हम फसल चक्कर अपनाओगे ने उतनी तो हमारी जो जमीन है वो सही रहेगी, और उसमें जो खरपतवार है नहीं, मान लो हम हर साल जो धान लगा हुए हैं उसमें जो धान के खरपतवार हैं वो तो पैदा होंगे, और मान लो हम हर जगह पे गन्ना, जैसे मान लो गन्ने वाले में गन्ना लगा देंगे तो फिर उसमें जो गन्ने वाले खरपतवार हैं वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमने मान लो कहीं गन्ना लगा रखे उसमें धान लगा दो, धान वाली में गन्ना लगा दो, जो हेर फेर करके हम फसल करें ना, जिसको हम फसल चक्र बोल रहे हैं, तो वो चीज़ ज़रूरी है एक ज़मीन में खरपतवारों की कमी करने के लिए। ठीक है ना। और रही बात जैसे आप किस्म की पूछोते, तो किस्म तो आप अपने खेत के हिसाब से, अच्छे प्रगतिशील किसान हो तो आप उस हिसाब से जो सी भी आप अच्छे लग गए, जो मेहनत करोगे सारिया के भाव भी अच्छे रहे, कोई ऐसी बात नहीं, तो वो आप लगा सको। ठीक है ना। ठीक है नरेश भाई, राम राम। तो डॉक्टर साहब पौध को हम तैयार कैसे करें, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में समय तो अब उसका ये है बिजाई का, तो उसको हम कैसे बचाऊं गर्मी से?
1: हाँ ये तो बड़ी ऐसी जगह पौध बोएं जहाँ मतलब पेड़ वगैरह हों, उनके नज़दीक हो, ट्यूबवेल के साथ, हर ट्यूबवेल के साथ पेड़ होते हैं, छाया भी आ जाए और गर्म हवा न आए
2: ना
1: उस
2: आए
1: साइड में।
2: बिल्कुल।
1: हाँ तो ये थोड़ा किसान भाई ध्यान तो रखते ही आए हैं,
2: हाँ
1: जो भी पौध बोते हैं बिल्कुल
2: हाँ
1: दूर तो बोते नहीं,
2: हाँ
1: ट्यूबवेल के साथ ही बोते हैं, और ट्यूबवेल के साथ
2: हाँ
1: कुछ पौधे वगैरह भी, फ्रूट वाले पौधे होते हैं,
2: हाँ
1: तो
2: तो देखो,
1: इसका
2: एक तो आपने जो सुझाव दिया, भाई जहाँ पेड़ पौधे हैं थोड़ा हाँ जब उनका हम सहारा ले लिया, क्योंकि उनकी छाया वो है, और जहाँ
1: गर्म हवा नहीं
2: गर्म
1: जाए
2: हवा ना रोक के हैं वो,
1: रोके।
2: एक
1: हाँ
2: तो यू हो जाए है। और एक डॉक्टर साहब, जैसे ये नर्सरी वाले लगाए हैं ऊपर का जो हरी टाट लगाए हैं,
1: हरी टाट
2: क्या
1: लगा
2: इसका कोई फायदा हो सकता
1: नहीं,
2: है?
1: इसका बिल्कुल फायदा हो सकता है। गर्म आप सब्जियों की, आपने प्योत तैयार करनी है, फॉरेस्ट्री की तैयार करनी है,
2: हाँ
1: तो ये जो टाटी बना के
2: हाँ
1: खूंटे के ऊपर टाटी रख दें, ये
2: हाँ
1: ठंडी रखती हैं, ऊपर
2: हाँ
1: से फुहारे से इन पे पानी छिड़के,
2: हाँ
1: तो काफ़ी बचाव रहता है।
2: जी
1: ये तो बड़ी अच्छी तकनीक है,
2: हाँ
1: वो तो एक मैनेजमेंट है उसका।
2: मैनेजमेंट है। और डॉक्टर साहब देखो, इतनी कड़ी धूप पड़े है, अगर जय मान लो हमने धान की प्योत बो दी, इवन कुछ भाइयों के जैसे गामा में भी जावा, हाँ मिला, हाँ अनेकों किसान भाई मिले हैं, ई भाई ये कहने लागे अब गुंडे तो लिकड़ आए लेकिन ऊपर तो मुरझाना शुरू हो गए।
1: देखो ऐसे टेम्परेचर पर, जो 46 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, इस टाइम पे वैसे तो किसी भी चीज़ की बिजाई नहीं करनी चाहिए, बीज अंकुरित तो होगा तो डेड हो जाएगा, उसको बचाना पड़ेगा कंट्रोल्ड कंडीशन में। थोड़ा हम और लेट देख सकते हैं समय को देखते हुए कि ये टेम्परेचर थोड़ा लो आ जाए, उसके बाद हम उसकी बिजाई कर लें।
2: बिजाई करें। और डॉक्टर साहब रही बात, मान लो हम प्यौध जितना भी, मान लो हमने 5 किले की, 7 किले की, 10 किले की बिजाई करनी है प्यौध की, हमने इतना खेत लगाना है, तो उस जगह पे जो हरी टाट है उसका भी हम प्रयोग कर लें तो
1: हाँ
2: वो एक अच्छी चीज़ है।
1: हरी टाट का प्रयोग कर सकते हैं।
2: क्योंकि देखो डॉक्टर साहब, बीज भी इतने महंगे हो रहे हैं कि अपा जावा हमने दुकानदार दो रहे तो
1: उस
2: बहुत महंगे महंगे
1: नहीं,
2: बीज हो गए।
1: हम हरी टाट का उपयोग कर सकते हैं, जब बारिश की पहली फुहार आएंगी,
2: हाँ
1: मौसम ठीक होगा,
2: हाँ
1: तो अपने आप ये जल्दी तैयार हो जाएंगी।
2: हाँ
1: हैं आगे इतने बोन से भी कोई ज़्यादा जल्दी नहीं होगी,
2: हाँ
1: तो इसलिए उसका बचाव रखें, जड़ने से बचाएं उसको।
2: जलने से बचा लें, और उसको जब तक है ना थोड़ा हा उसके ऊपर मान लो।
1: आरी टाट ये गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, मिल जाते हैं ये कपड़े,
2: हाँ
1: तो उससे काफ़ी फर्क रहता है। दिन में लगा दो, शाम को हटा
2: दिन
1: दो,
2: दिन में लगा ले, शाम को
1: शाम को
2: उसको थोड़ा हटा दे,
1: हटा
2: क्योंकि
1: दो,
2: उसका भी गिरना जो है वो ज़रूरी है।
1: जरूरी है।
2: दिन में धूप की हमने बचत उससे कर ली, और शाम के समय पर जैसे उसको थोड़ा हम, देखो मेहनत तो डॉक्टर साहब करनी पड़ेगी, और मेहनत जब करेंगे तो उसमें
1: एड
2: फिर
1: क्योंकि हम एडवर्स कंडीशन में कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं, तो उसमें
2: हाँ
1: मेहनत करनी
2: वो
1: पड़ेगी।
2: बिल्कुल करनी पड़ेगी। और डॉक्टर साहब देखो, किसान की जो मेहनत है वो तो सारी अण लगी हुई है, और हमारी जो दूसरी फसल है, जैसे अलग अलग हम आज थोड़ा फसलों का भी बात कर लें, उसमें जैसे बाजरे की फसल है, बाजरे की भी एक बहुत अच्छी फसल है, भाव भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, पहले तो भाव बहुत कम होया करते हैं, लेकिन इस समय पर देखें तो बड़े अच्छे भाव हो रहे हैं, तो उसमें किस चीज़ की सावधानी रखें, उसकी कब बिजाई करें, कौन सी किस्म है जो उन्नत है, तो उसके बारे में भी थोड़ा हा जो हमारे किसान भाई हैं उनको बताओ, क्योंकि इब जैसे ही मान लो ये मानसून की बरसात शुरू हो उसमें भी हम शुरू कर सकें हैं।
1: बाजरे की HBC 19 बो सकते हैं,
2: अच्छा
1: HHB 67 जो कम दिन की है,
2: हाँ
1: संशोधित है ये भी,
2: अच्छा
1: तो अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, बाजरे की बिजाई
2: नहीं अब
1: का।
2: तो नहीं कर सकते,
1: हाँ
2: लेकिन थोड़ा हा रुक, डॉक्टर साहब फोन आ गया एक। हेलो
0: राम राम जी,
2: जी, राम राम, नाम बताओ जी।
0: नाम वजीरा जी, गांव सिरसा जिला कथाड़ा जी, खेती का मैं श्यामा जी।
2: ना मैं शंगा नहीं है, आज खेती का है। हाँ
0: ठीक है जी।
2: ठीक है, धन्यवाद जी। हेलो, तो डॉक्टर साहब जो हम बात कर रहे थे बाजरा फसल की, तो बाजरा का हम कैसे मान लो जो है वो उसमें जो किस्म है उसके बारे में थोड़ा हा।
1: नियम बाजरे की जो भी किस्में हैं,
2: हाँ
1: HHB 50 है,
2: हाँ
1: HHB 60 है, HHB 67 संशोधित है,
2: संशोधित किस्म है।
1: हाँ ये अच्छी है, HHB 94 है। दूसरी जो कंपोजिट वैरायटी है, HHB 223 है, 219 है, काफ़ी वैरायटी है, तो उस HHB 226 है लेटेस्ट, तो और भी जो भी आपको बीज मिल जाए। और बाजरे में
2: जी डॉक्टर साहब बात करते हैं, पहली बार फोन लेते हैं। हेलो
0: चंद्र भाई, राम राम
2: जी। राम राम, नाम बताओ जी।
0: चंदगी राम भाव जी, गाँव गढ़ोली डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी।
2: चंदगी राम जी जी,
0: चंदगी खेती बाड़ी
2: हाँ, खेती बाड़ी संबंधी है जी।
0: सर जी, एक दोस्त एक कट्टा प्याज का पैड के घेर रखे, अभी का इतना लगा वहाँ डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ने राम राम।
1: राम राम जी। हाँ जी, दोबारा बताओ जी।
0: प्याज खोद दी एक एकड़ में जी।
1: हाँ जी,
0: 180 कट्टा भर के धरा कर, कोई सेफ्टी जगह बताओ, कैसा कैसे धरा के ना धरा।
1: नहीं, सेफ्टी का तो यही है जी, आप मतलब ये टाटी भी लगा सकते हैं, बाजरे की टाटी बना के, जो भी बांस की टाटी बना के इसमें कटा हुआ निकाल दें, और 15-20 दिन में जो भी एक महीने में इसमें का हाथ फेरते रहें, इसका छिलका उतारे ताकि कोई गले नहीं है। हाँ, ऐसी जगह लगाए पानी भी ना हो और थोड़ी ठंडक भी रहे, छा भी रही रहे और हवा भी लगती रहे। हाँ
0: सर जी, मुर्गी फार्म है भाई साहब का, मुर्गी फार्म अभी खाली पड़ा है, उसमें लगा दें सर जी।
1: हाँ, मुर्गी फार्म
2: नहीं, मुर्गियों को कोई दिक्कत ना हो,
1: मुर्गियों को कोई दिक्कत ना हो।
0: ना ना, मुर्गी तो अभी है ही नहीं, वो खाली पड़ा है
1: ना, उसमें
2: नहीं वो तो फिर आप उस चीज में तो अलग तो देखो, बाकी इसमें नमी भी ना हो साथ में, ये भी देख लियो
1: सबसे। तो
0: नया बनाया सर, सुनो जी,
1: सबसे अच्छा स्टोरेज तो ये होता है जो कच्ची जगह है, कच्चे मकान है, उनमें इनका स्टोरेज अच्छा होता है, हवादार, जिसमें झाकी जंगले हो तो उसमें प्याज का अच्छा स्टोरेज होता है। और एक इसकी कटाई का है, जय ऊपर से नाकू ना काटे तो और ज़्यादा दिन ये रहता है, कटाई करने के बाद भी फिर भी इसको रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
0: मेन चीज कटाई सर जी कर दी सारी।
1: हाँ जी,
0: कटाई करके कट्टा भर दिए सारे,
2: कट्टे भर दिए तो उनको रख दो एक साइड में, थोड़ा छाया में रख दो,
1: छाया में रख दो, और बीच बीच में कहे हफ्ते 10 दिन में कहे उसको खोल दिया करो, फैला दो एक बार।
0: हाँ सर, एक दूसरी बात, बाढ़ के नान और सर्विस करे थे।
1: हाँ जी,
0: वो सब्जी की वो मिर्च भी लाया था, टमाटर वो है, और वो क्या बोल रहे हैं, हमने मसार घर जा रहा है वह उनके फल ना आओ सर जी, ये चक्कर वो बड़ा बड़े बदरी से
1: नहीं आ जाएगा, आ जाएगा फल, ये हाई टेम्परेचर है, लगेंगे फूल भी आएगा फल भी, जो भी ऐसी कोई ये नहीं, मिर्च
0: वगैरह
1: वो गर्मी इतनी है तो अगर फूल
0: करेला है, करेला की बेल बड़ी बड़ी हो रही सर जी।
1: हाँ
0: जी, मतलब ये फूल आज जाए सिर्फ बंद हो जाए सर, एक पे एक भी ना नहीं मिटे को ना सर जी, क्या बात होगी।
1: नहीं ये क्या है, ये टेम्परेचर ही इतना है, हाई है, 46 डिग्री टेम्परेचर है। मिर्च वगैरह में जो भी आप एथ्रिल का स्प्रे कर लियो, जो भी फूल डाटने के लिए, हाँ फूल डाटने के लिए एथ्रिल का या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड मिल जाए, दुकानों पे मिल जाएगा ये, उसका स्प्रे कर दियो तो वो डट जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है।
0: बड़ा बड़ा धन्यवाद सर।
2: धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब हम
1: देखो इस वो हम बात कर रहे थे धान की, बीज किस्म अच्छी किस्में लें, जो भी रिकमेंडेड है, हाइब्रिड भी आए हुए हैं, जिस चीज़ की डिमांड है हमारे उस चीज़ की बिजाई करें। सबसे बीज का उपचार इसमें महत्वपूर्ण है
2: जी जी।
1: नमक के पानी में 10 लीटर पानी में 10 किलो बीज, 1 लीटर नमक का घोल बना के 10 किलो बीज उसमें से निकाल दे, जो ऊपर सूखा हुआ बीज है, पिंड है, वो ऊपर आ जाएंगे, फिर उसको 3-4 बार आप धो ले,
2: अच्छा पानी से,
1: अच्छे पानी से, साफ पानी से उसको धो ले। उसके बाद इसका जो भी बीज उपचार करें, 10 लीटर 10 ग्राम बेविस्टिन ले लें, 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में मिलाकर 10-12 किलो बीज उसमें के 24 घंटे भिगो के रख दें।
2: अच्छा, उसमें भिगोना ही उसमें है,
1: भिगोना ही उसमें
2: जी डॉक्टर साहब।
1: तो उसके बाद हम अगले दिन छा में सुखा के बिजाई कर सकते,
2: उसमें छोटे छोटे गुंडे निकल लें, उस टाइम उसकी बिजाई कर,
1: या फिर उसको बोरी से ढक दें, हाँ, बोरी के ऊपर पानी डालते रहें,
2: हाँ,
1: या इसको करके सारा बोरी कट्टे में भर लें, कट्टे में भर के बंद कर दें, तो उससे भी वो अंकुर होते, और कट्टे बोरी के ऊपर थोड़ा पानी छिड़कते रहें तो उसको अंकुरित हो जाएगा गुंडे। उसके बाद आप दो तीन दिन के लिए ये काफ़ी है, 2-3 दिन के बाद उसकी वो जर्मिनेशन की वह निकल जाएंगी।
2: उसमें थोड़ा डॉक्टर साहब एक चीज़ का और हम ध्यान कर लें तो वो और बढ़िया रहेगा भाई, उसको जो हवा में मान लो रख दें कुछ हमारे किसान भाई, तो उसको हवा में नहीं रखना, क्योंकि हवा है गर्म,
1: हवा गर्म है,
2: और वो फिर जब बार बार हम उसके ऊपर पानी डाल लेंगे तो उसने जो उसका मान लो अंकुरण होया है वो कई बार ख़राब हो गया है, इसलिए हम इसको हम थोड़ा हा रखने की बजाय उसको कई छाया में रखें, या तो ढक दो, पहले तो तूड़म ढक दिया करते हैं,
1: या तो किसान भाई कह कट्टे बोरी में बीज डाल के अपना ट्यूबवेल के आगे वो जीव डाल दो, वो अच्छी तरह भीग जाए 24 घंटे, उसको फिर बाहर निकाल के वो फिर स्प्राउट हो जाता है इतने उसमें
2: जी। और उसमें फिर जैसे एक बिजाई का जो तरीका है वो क्या रहे डॉक्टर साहब, मान लो एक तो बिजाई कुछ हमारे जो किसान भाई हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि भाई पहले जैसे गैदड़ ही उठा ले हैं, जिस पट्टे में भी बिजाई करनी है पहले गैदड़ ही उठा गए बीज बो कर और छोड़ दे हैं, या फिर कुछ हमारे किसान भाई इस तरह करें भाई सूखे में उसकी बिजाई कर दे हैं और फिर उसमें हाथ मार कर फिर भर दे, कौन सा तरीका अच्छा है?
1: देखो दोनों अच्छे हैं, आपने ज्यादा बोनी है आप कद्दूकस कर लो, पानी भर कर कद्दूकस कर लो, पानी जब नीचे बैठ थोड़ा हा हो जाए उसके बाद एक सार बीज आप बखेर दो,
2: जी जी,
1: वो पानी नीचे सेटल डाउन हो जाए, 2-3 दिन के बाद पानी फिर दे दो आप
2: जी,
1: खेत के चारों तरफ के BHA वगैरह डाल दो ताकि कीड़ी वगैरह बीज ना ले जाए। सूखे में भी आप ये है कि अगर आपके पास गड़ा सड़ा गोबर का खाद है एक सार सूखे में मतलब बीज बखेर के ऊपर से थोड़ा थोड़ा गोबर के खाद का सूखा ऊपर के बखेर दें और फिर पानी दें शाम के टाइम भर दें उसको, फिर दोबारा 2-3 दिन बाद फिर भर दें, तो दोनों तरीके बेहतर हैं, किसान जो अच्छी तरह कर सके वो कर सकते
2: वो उसको अपना सके। डॉक्टर साहब एक थोड़ी ही समस्या और आ जाए हमारे जो किसान भाई हैं, ये सोचते हैं भाई जैसे नहर का पानी है उसरा है, अब भाई हम दिन में सुबह भर दिया नहर का पानी है वो क्या करेगा, लेकिन चाहे उसमें नहर का पानी है चाहे ट्यूबवेल का पानी है, कोशिश ये करें भाई हमारे जो किसान भाई हैं कि वो शाम के समय पर उसमें
1: पानी शाम के समय लगाएं
2: और उसमें कम पानी लगाऊं, क्योंकि कई बार क्या है कि जैसे हम तीसरे दिन चौथे दिन ज़्यादातर प्यौध को भर रहे हैं तो उसमें क्या है कि पानी खड़ा हो गया है और शाम को जैसे हमने ज़्यादा उसकी में ज़्यादा पानी डाल दिया प्यौध में तो वो अगले दिन भी पानी खड़ा,
1: अगर गलती से पानी खड़ा होगा तो उसको ऐसी जगह निकाल दें, निकासी जरूरी है, अगर पानी ज़्यादा गलती से भर गया तो उसको सुबह होने से पहले उसको निकाल दें
2: ताकि वो उसके अंदर गर्म ना हो, गर्म होने के बाद तो फिर वो नुकसान करेगा। और डॉक्टर साहब देखो अब तो ये थोड़ी ही सलाह जो हमारे किसान भाई हैं, बाकी समय तो आ रहा है प्यौध की बिजाई करने का ही, भाई जब तक ये थोड़ा ज़्यादा धूप है ना,
1: क्योंकि ज्यादा हमारा बीज बड़ा महंगा है,
2: हाँ,
1: किसान कई बार टेक्निकली थोड़ा टेम्परेचर कुदरत झटका दे देती है तो 2-4 दिन रुक जाए थोड़ा टेम्परेचर ठीक आ जाए तो वो बेहतर रहेगा, उसी टाइम पे प्योध तैयार हो जाएगी। एक हार्ड हार्श क्लाइमेट में आप प्योध तैयार करोगे 30 दिन लग जाए 32 दिन लग जाए, वही 25 दिन में अच्छा फेवरेबल टेम्परेचर है ठंडी हुआ 25 दिन में भी उतनी ग्रोथ ले जाएगी
2: डॉक्टर साहब। एक और है कि मान लो हमने इतनी मेहनत कर वो प्योध को तैयार भी कर लिया और उस समय पर जाकर मान लो जिस समय पर हम ये सोच रहे हैं लगा देंगे 15 जून के बाद और उस समय भी मान लो गर्मी ज्यादा रही
1: आती
2: गर्मी ज्यादा हो तो वो फिर जो पकी हुई प्योध है वो फिर साल के बिताने
1: नहीं
2: देगा,
1: वो नहीं चलती
2: वो फिर किसान भाई कहेंगे वो फुटाव नहीं कर रही,
1: किसान भाइयों को बिल्कुल जल्दी नहीं करनी चाहिए मौके का टेम्परेचर का देख।
2: तो डॉक्टर साहब एक फोन है फोन लेते हैं, हेलो
3: राम राम जी।
2: जी राम राम, नाम बताओ जी।
3: नाम वजीरे जी, गाँव मैनसा जिला का थड़ा।
2: नाम क्या है आपका?
1: हाँ वजीर जी।
2: वजीर
3: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
2: हाँ बोलिए वजीर जी।
3: हल्दी बोनी है जी, बुआरा है
1: जी
3: हल्दी का?
1: हाँ हल्दी बो सकते हैं आप।
3: अच्छा जी, उसका भी उपचार करना पड़ेगा कुछ?
1: नहीं हल्दी का कोई उपचार करने की जरूरत नहीं है।
3: अच्छा जी।
1: हाँ हल्दी में तो आपने जो भी पौधे लगा रखे हैं, बाग है और है, उसके बीच में क्या आप लगाओ?
3: अभी खाली जमीन में लावांगे, आधा किला कहता थोड़ा लावांगे।
1: नहीं इस तरह है जी, ये तो पॉपुलर वगैरह के बीच में लगती हैं, जहाँ छाया हो वहाँ हल्दी ज्यादा देती है।

0: पराली दा कम्म।
1: हाँ बिल्कुल, ऊपर पराली हो, मक्की के डासरे हो या बाजरे की पूड़ी हो,
0: ना पराली है जी।
1: नहीं ऊपर ढक के और गोबर का घोल बना के, गोबर के खाद
0: अच्छा
1: का
0: जी,
1: घोल ऊपर छिड़क दो पराली
0: उस
1: ऊपर।
0: पराली का।
1: हाँ पराली ऊपर, पराली से ढक के और पराली के
0: हाँ
1: ऊपर गोबर का घोल बना के आप छिड़क दो, ठीक है,
0: अच्छा जी,
1: ताकि नमी भी रही रहे और टेम्परेचर भी मेंटेन रहे।
0: ठीक है जी। बहुत
1: हाँ तो
0: कैंडल
1: इस
0: लगवा जी, तैयारी कर रहा थोड़ा, तो लाने पे तैयार है बस।
1: नहीं, आप मई से जुलाई तक ला सकते हो।
0: हाँ जी, मतलब ये पांचवा पांचवा महीना में इसमें
1: हाँ, ये आप लगा
0: तो
1: सकते
0: ला
1: हो।
0: जाएंगे। अच्छा
1: हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। इसमें आपने क्या करना है,
0: हाँ जी,
1: नीचे गोबर की खाद
0: हाँ
1: चार ट्रेली, तीन चार ट्रेली 1 किले की।
0: वहां तो प्रक्का खूब पा जी, हमें 5 सालों के माने यूरिया डीएपी दवाई गेरे
1: हाँ
0: किला में। अच्छा
1: बिल्कुल जी हाँ, 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो पोटास और 20 किलो फास्फोरस पड़ेगा इसमें।
0: जी,
1: हाँ और 60 क्विंटल
0: और
1: बीज लगेगा इसका 1 एकड़ में।
0: मतलब 3.5 क्विंटल आधा किला में।
1: हाँ, इतना लगेगा, लेकिन उसमें आप एक चीज़ का ध्यान करियो कि जो
0: हाँ
1: ये
0: जी,
1: हल्दी की फसल ले हुए हैं हमें, तो ये थोड़ा हा उस जगह पर ली जा है जिस जगह पर ऊपर छाया का प्रबंध मारा है।
0: छाया तो कौन है
1: नहीं छाया नहीं
0: नहीं
1: है तो फिर
0: इस
1: आप
0: तरह।
1: ये रिस्क मत ज़्यादा लियो भाई। वजीर जी, मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा, पहले आप आधा बीघा बो के देख लो, आपका खुद
0: हाँ
1: का
0: जी,
1: भी
0: थोड़ी सी
1: बीज
0: तो
1: तैयार
0: लाए
1: हो
0: रामा मिला
1: जाएगा।
0: ले, पांच
1: बीज
0: सात खट्टा जगह ऐसा लावा।
1: नहीं, आप बो के देख लो, लेकिन छा जरूर होनी चाहिए, पॉपुलर के बीच में सबसे अच्छी होती है ये,
0: सही है जी, सही है, आपका तजुर्बा है।
1: या चाहे एक लाइन में पौधे लगे हुए हों तो छा
0: हाँ जी, हाँ
1: जरूरी
0: जी, हाँ जी,
1: हो।
0: जरूरी है जी, सही है जी, बात
1: ये
0: है।
1: तो एक जो उसको हम अतिरिक्त आमदनी कह दें है ना किसान भाई की, अगर भाई ऊपर
0: हाँ
1: ऊपर तो मान लो दूसरी फल हमने मिल
0: ठीक,
1: गया और नीचे तो
0: बिल्कुल।
1: या मसाले वाली या चीज़ मिल गई, तो ये उस हिसाब से लेनी अच्छी हो है, ठीक
0: ठीक
1: है
0: है
1: ना।
0: जी,
1: इस
0: बात
1: चीज़ का आप
0: ठीक,
1: ध्यान करना और जहाँ तक
0: ठीक है
1: जो
0: जी, ठीक
1: सम
0: है, नहीं आपकी बात में दम है पूरा, सही है जी।
1: ठीक है। धन्यवाद जी वजीर जी। और हेलो,
0: हेलो
1: हाँ जी नाम बताओ।
0: हेलो,
1: हाँ जी नाम बताओ। हेलो
0: बुलगीत भाई, राम राम है। मुन्ना
1: हाँ सुरेंद्र भाई बोलूँ, नाम राम राम आपकी, नाम बताओ अपना।
0: बोल रहा था, गांव की वाला
1: हाँ मुन्ना राम जी बोलो।
0: डॉक्टर साहब, राम राम। खेती
1: राम राम जी।
0: बाड़ी का है ना जी?
1: हाँ
0: हाँ
1: जी
0: जी, हाँ
1: हाँ खेती
0: खेती
1: बाड़ी का है, बताओ। हाँ
0: डॉक्टर साहब, ये दशेक पे डाला रखा है, बताओ वहाँ का कि
1: हाँ हाँ
0: डॉक्टर साहब, बार बार ये कीड़े ही शिकायत हो गया है। हाँ
1: कीड़े की
0: जी,
1: इस तरह है, सब्जियों में ये रहने दो, नहीं स्प्रे करो तो ठीक है,
0: अच्छा
1: ठीक है ना। ऊपर गोभ में कीड़ा है तो उसको काट दो, ठीक है, और
0: अच्छा
1: कोई पत्तों पर तेला वगैरह लगे तो एक मेलाथियोन छिड़क दो या राख छिड़क दो, खाने की चीज़ पर आप स्प्रे न करो तो अच्छा है। कोई बैंगन गलती से काना भी हो गया, एक आधा कीड़ा लग गया तो उस काने ऐसे को कर दो, वैसे तो दवाई है लेकिन आप क्यों उसमें जहर डालो। हाँ
0: डॉक्टर साहब, हम तो ये आप बताओ ना, ये न्यूराक छिड़का करा, उसमें BHT मारा करा, उसमें 2-3 दिन तो वो कीड़े का फर्क रह दिया है, पछे फिर वापिस लाल दिया है,
1: नहीं
0: एक लाल लाल
1: आप,
0: कीड़ा है। अच्छा
1: हाँ, वो लगता है, कोई ऐसी बात नहीं है।
0: जी,
1: और
0: अच्छा
1: इसमें मुन्ना राम जी आप जो नीम वाली दवाई आवे है ना, थोड़ा बहुत उनका ही प्रयोग कर लो, नीम वाली
0: फिर
1: दवाई का प्रयोग कर लियो, आप स्प्रे कर लियो।
0: ये मत करियो ये जो दूसरी दवाई आवे हैं उसमें। देखो खाने के लिए चलो खानी तो सब नए हो है, फिर भी कोशिश ये करनी है कि भाई हम कम से कम जो रासायनिक जो दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग करें, और जो भी
1: नहीं चलो वो तो बात ठीक है, बाकी दवाइयों का जो जितना हम कम प्रयोग करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। और इस समय जो मौसम है, हेलो
0: हाँ
1: हाँ
0: बताओ,
1: बोलो जी।
0: निमते
1: नहीं
0: है
1: ये बिल्कुल ठीक है, इसमें बड़ी वो है, एक तो वह वैरायटी कौन सी है, इस टाइम टेम्परेचर बहुत हाई है तो फल तो घाट आएगा ही, आगे फल आएगा
0: अच्छा,
1: जब फेवरेबल मौसम आ जाएगा इसका।
0: तो इस
1: ये
0: चीज़
1: फिलहाल
0: कितना टेम्परेचर है डॉक्टर साहब यो?
1: ये तो 40 से ऊपर है। हाँ
0: अच्छा
1: जब थोड़ा हाँ तापमान कम आ जाएगा इसमें, देखो हमारी फलत है वो भी अच्छी मिलेगी और जो कीड़े हैं उनका भी
0: एक
1: जरूर
0: आधा दिन
1: फर्क।
0: में कोई बरसात है उनकी संभावना है कि
1: नहीं
0: नहीं?
1: ना अभी कोई नहीं
0: अब तक
1: लगता।
0: कोई नहीं लग रहा, ठीक है मुन्ना भाई, राम राम। तो डॉक्टर साहब देखो जो हमारे

किसान भाई थे उनके अनेकों अच्छे बहुत अच्छे प्रश्न आए, और आपने बहुत बढ़िया तरीके से डॉक्टर नरेश अंगवान जी उनका जवाब दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे किसान भाई हैं उनसे भी इजाज़त लेते हैं सारे बाण भैया ने। राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आकाशवाणी रोहतक केंद्र के प्रसारण आप सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ आज मैं आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त शशि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

ये गीत आपने सुना मॉनसून वेडिंग फिल्म से। आवाज़ और संगीत सुखविंदर सिंह के थे। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं धुरंधर तारीवंश से। आवाज़ें हैं खान साहब और शाश्वत सचदेव की। गीत नुसरत फ़तेह अली खां का है, संगीत शाश्वत सचदेव और नुसरत फ़तेह अली खां का।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। खुशी फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, आवाजें हैं अलका याग्निक, शान और साथियों की। गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का।

अभिजीत और साथियों की आवाज़ों में आपको सुनवाते हैं बागी फिल्म का गीत। गीत फैज़ अनवर का है, संगीत साजिद वाजिद का।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अलका याग्निक की आवाज़ में सुनते हैं जानम समझा करो फिल्म का गीत। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत अनु मलिक का।

सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में गीत अभी आपने सुना फिल्म बीवी नंबर वन से। गीत समीर का लिखा था, संगीत अनु मलिक का। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। मुझे कुछ कहना है फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में। गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं दिल लगी फिल्म से। आवाज़ें हैं शंकर महादेवन और महालक्ष्मी की। गीत जावेद अख्तर का है, संगीत जतिन ललित का।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल लगी से, आवाज़ें थी शंकर महादेवन और महालक्ष्मी की, गीत जावेद अख्तर का था, संगीत शंकर एहसान लॉय का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं आपको अंदाज फिल्म से, आवाज़ें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की, गीत समीर का है, संगीत नदीम श्रवण का।

डीटीएच पर। और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अलीशा चिनॉय के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अलीशा चिनॉय के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रही हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अलीशा चिनाई के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अलीशा चिनाई के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

इस गीत के साथ ही अपने दोस्त शशि को दीजिए इजाजत कार्यक्रम सुगम संगीत संपन्न करने की। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए अलीशा चिनॉय के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: से भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश

0: के सामने आएगा।
1: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 100,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Child Immunization Program. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi on 26th of this month. And in IPL cricket, match between Sunrisers Hyderabad and Royal Challengers Bengaluru underway. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सन 1959 में प्रदर्शित हुई फिल्म उजाला की कुछ गीत।

ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज़ में। एक फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सन 1959 में प्रदर्शित हुई फिल्म उजाला की कुछ गीत। इस फिल्म का निर्माण किया था FC मेहरा ने और निर्देशन किया था नरेश सहगल ने। इस फिल्म के जो पटकथा लेखक थे वो थे कमर जलालाबादी, कहानी लिखी थी नरेश सहगल ने और डायलॉग्स लिखे थे मनोहर सिंह सहराय ने। इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर यानी कैमरामैन थे शिवराम माल्या। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई शम्मी कपूर, राजकुमार, माला सिन्हा, लीला चिटनिस, टुनटुन, धूमल, कुमकुम, रमेश सिन्हा, शिवराज और असरानी ने। आइए सुनते हैं अगला गीत मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में।

मन्ना डे और साथियों की आवाज़ में गीत था। गीत शैलेंद्र का था, संगीत शंकर जयकिशन का। उजाला फिल्म के गीतों को लिखा था हसरत जयपुरी, शैलेंद्र, और इस फिल्म में बतौर गीतकार काम किया था शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने। आइए सुनते हैं अगला गीत, शैलेंद्र का लिखा है और आवाज़ें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की।

इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ कार्यक्रम एक फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाई सन 1959 में प्रदर्शित फिल्म उजाला के कुछ गीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है परिचर्चा। विषय है कचरा प्रबंधन, समस्या समाधान, चुनौतियां व आवश्यकता। प्रतिभागी हैं रचना भटेरिया, अरविंद भाटिया, रवि प्रकाश। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं।

0: विनय कुमार।
1: श्रोताओं, आज की परिचर्चा का विषय रहेगा कचरा प्रबंधन, समस्या समाधान व इसके बारे में चुनौतियाँ, व हम लोग इसके बारे में कैसे जागरूक हो सकते हैं। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं तीन मेहमान। उन तीनों को आपसे परिचित कराते हैं। सबसे पहले मेहमान है हमारे पास में डॉक्टर रचना पटेलिया जी। आप पर्यावरण विज्ञान विभाग महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से हमारे पास में आए हैं, और पर्यावरण के मद्देनजर रखते हुए इस पक्ष के जितने भी पहलू हैं उनको आप हमारे सामने रखेंगे। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं अरविंद भाटिया जी। आप ट्रेनर रहे हैं, आपका खुद एक स्वयंसेवी संगठन है, और आप कचरा प्रबंधन के प्रति लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, जागरूक करते हैं, और उसके बारे में जगह जगह पर जाके बताते हैं। और तीसरे विशेषज्ञ हमारे साथ में आए हैं रवि कपूर जी। आप उद्यमी हैं और इस क्षेत्र में विशेष महारत रखते हैं, और आपका लंबा चौड़ा अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, उद्यमी में भी, कार्य कौशल के रूप में भी, और प्रशिक्षण के रूप में भी। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर रत्ना, आपके पास चलते हैं। तो बताइए, कचरा है और पर्यावरण है, इन दोनों का परस्पर एक दूसरे से तालमेल है। जबकि यूं कहें कि भाई कचरा पड़ा है तो पर्यावरण हमारा स्वस्थ नहीं है, कैसे देखते हैं?
2: पहले तो हम कचरे की बात करें तो कचरा को मैनेज करना, जो कि हमारा आज का विषय है। कचरा कोई भी सब्सटेंस, कोई भी इस तरह का मटेरियल जो कि डिस्कार्ड कर दिया हो, जो कि किसी तरह का हमारे काम में ना आए, इस तरह का कोई वस्तु होगी, उसको मैनेज कैसे किया जाए? तो मैनेज हुई उसका एक सिस्टमैटिक, जो हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो ये सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस है, जो कि जहाँ से प्रोडक्शन होती है कचरे की, वहाँ से लेके अल्टीमेट डिस्पोजल तक उसको कैसे डिस्कार्ड करते हैं, हम टोटली एनवायरनमेंट से कैसे ख़त्म करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, वो अलग अलग चैनल के थ्रू पास होता है। पहले प्रोडक्शन होती है, उसकी सोर्स की जनरेशन होती है, फिर वहीं पे सेग्रीगेट करते हैं हम उसको, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है, और अल्टीमेटली वो डंपिंग साइट पे, अगर वो किसी भी तरह से रिसाइकल ना कर सके, तो लास्ट में उसकी लैंडफिलिंग में डंपिंग की जाती है।
1: जी, पर्यावरण के मद्देनजर एक बात और समझाइए हमको, क्या कचरा मानव निर्मित होता है या प्राकृतिक भी हो सकता है?
2: प्राकृतिक होता है कचरा, और मानव आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस किया जाता है, और लेकिन जो प्राकृतिक कचरा होता है वो अपने आप नेचर में अपनी एक सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है नेचर की, जो कि हर वस्तु की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है, चाहे हम सॉइल की बात करें, हम रिवर की बात करें, हम किसी भी पेड़ पौधे जीव जंतु की बात करें, बिना किसी आउटसाइड सोर्स के किसी भी चीज़ हम ना यूज़ करें तो अपना सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी से अपने आप हील कर जाता है।
1: मतलब आप कह रहे हो कि अगर पत्ते झड़ रहे हैं, घास फूस ज़्यादा है, तो प्रकृति अपने आप
2: उसका निवारण कर लेगी।
1: पानी
2: वो अपने
1: गंदा
2: आप
1: है, तो अपने आप
2: अपने आप, अगर कुछ लिमिट तक अगर वो गंदा है तो वो अपने आप नेचर उसको रिकवर कर देगी। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम उसको एक्सेसिव पोल्यूट करेंगे,
1: जी,
2: तब हमें बाहर से एंटर करना पड़ता है किसी तरह उसको, प्रदूषित जो भी क्षेत्र है उसको प्रदूषण रहित करने के लिए, तब हमें अपनी इंटरफेरेंस चाहिए होती है, जब एक्सेस कोई चीज पोल्यूट हो जाती है।
1: जी, तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर जिसमें कुछ होते हैं, तो इसी बात को लेके अरविंद जी आपके पास आ रहे हैं।
3: जी सर।
1: आप लोगों को प्रशिक्षण देते हो।
3: जी सर।
1: तो बताइए, आप लोगों के पास जाते हो, उनके पास कचरे के ढेर होते हैं, हमारी रसोई से कचरा शुरू हो जाता है।
3: जी।
1: लोग कचरे को किस प्रकार से, किस नजरिए से देखते हैं?
3: लोगों का जो दृष्टिकोण है वो काफी इनडिफरेंट है, या इग्नोरेंट कह सकते हैं। जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो उसको अपनी जिम्मेवारी नहीं समझना चाहते। पब्लिक एट लार्ज मैं बता रहा हूँ, बहुत ही कम लोग हैं जो कि जिम्मेवारी से कचरे का निष्पादन करते हैं। देखो, कचरा जो शब्द है ना, मेरा मानना यह है कि ये हम इंसानों ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस शब्द का जो है ना ईजाद किया है, नहीं तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है।
1: जी।
3: हमने बहुत सारी सैकड़ों चीज़ों को एक ही नाम दे दिया, कचरा, अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि हम उसका निष्पादन नहीं करना चाहते, उस पर मेहनत नहीं करना चाहते।
1: जी।
3: ठीक है, सब्जी बच गई, उसको क्या बोल दिया, कचरा। ठीक है जी, पेपर बच गया, उसको कचरे का नाम दे दिया। हमने सैकड़ों चीज़ों को एक ही नाम दे दिया, और उसकी जिम्मेवारी से भी हम जो हैं पीछे हट गए।
1: जी।
3: ये मेरा जो मानना है, लोगों को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कचरे को लेकर। इसके लिए अब जो नए रूल्स आ रहे हैं उसमें भी यही है कि पॉल्यूटर को पे करना पड़ेगा, जो जितना प्रदूषण फैलाएगा उसको उतना कंपनसेशन भी देना पड़ेगा।
1: जी, तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे प्रयोग का है, हमारे यूज का है, वो हमने यूज कर लिया, जो बाकी बच गया वो कचरा है, हम उसको बाहर कर देते हैं और उसके बारे में किसी व्यवस्था के बारे में नहीं सोचते हैं।
3: जिस दिन हम अपनी डिक्शनरी से कचरे शब्द को हटा देंगे, कचरा अपने आप खत्म हो जाएगा।
1: जी रवि कपूर जी, बताइए आप उद्यमी हैं और कई सालों से इस काम में हैं, कचरा आपके पास में बार बार में आ रहा है, तो क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? क्या आपको कचरा उपलब्ध हो पा रहा है या इसमें भी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि कचरे का निष्पादन भी सही से नहीं हो पा रहा है अभी?
0: देखिए, कचरा जो हमारे पास में आता है एज अ प्रोसेसर या हम उसको जो कलेक्ट करते हैं, कचरा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कचरा मिक्स आता है। ऑर्गेनिक कचरा है, ड्राई कचरा है, दोनों मिक्स हो जाते हैं,
1: जी
0: तो उसका निष्पादन करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है या हो ही नहीं पाता, तो
1: जी
0: इसलिए कचरे के ढेर बन जाते हैं।
1: जी
0: क्योंकि लोगों ने तो ये सोचा, हमने ये सोचा कि ये जो है हमारे काम का नहीं है तो ये सारा कचरा है, तो हमने गीला सूखा सारा मिला दिया और वो
1: जी
0: सारा कचरा बन गया।
1: बिल्कुल
0: और उसके बाद में जो कचरा आता है उसमें जो हमारे पास में आता है, एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो उसमें से वैल्यू वाला कचरा होता है या जो काम का होता है वो निकाल के और बाकी सारा इकट्ठा कर देते हैं, तो वो उसको प्रोसेस करने की एक कॉस्ट होती है, तो वो
1: जी
0: कॉस्ट नहीं मिलती।
1: कॉस्ट नहीं मिलती है, लेकिन उससे पहले एक और पहला कदम ये होगा रवि कपूर जी, कि कचरे को आप एकत्रित करो, कचरे को इकट्ठा करो, तो क्या इसमें आपको सुलभता मिलती है कि सारा कचरा आपको एक जगह पे पड़ा मिल जाए और उसको आप ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मंगवा ले, या फिर कचरा छोटे छोटे एक समूह में पड़ा होता है, कहीं कहीं पे कहीं पे कुछ कचरा पड़ा है, कहीं पे कुछ कचरा पड़ा है, और आपको उसको इकट्ठा करने में मशक्कत करनी पड़ती है, और फिर जो इंडस्ट्री वहाँ तक ले जाने में और खर्च बढ़ जाता है, क्या ये समस्या भी आती है?
0: ये समस्या तो बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि ये सारा कचरा इकट्ठा करने का सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ है कि या तो लोग फेंक देते हैं, उसको प्रॉपर जगह के ऊपर नहीं देते हैं, या जो इकट्ठा करने वाले हैं वो उनके पास में टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, तो जो इकट्ठा करने का सिस्टम तो एक प्रॉब्लम है ही है, और उसकी जो कॉस्ट है वो मिलती नहीं। क्योंकि कचरा अल्टीमेटली निष्पादन करना या इकट्ठा करना हर चीज़ की एक कॉस्ट है जिसके
1: जी
0: बारे में कोई नहीं सोचता।
1: जी
0: एक
1: बिल्कुल
0: एक लोगों के अंदर जो है दिमाग में ये बैठ गया है कि कचरा जो है शायद इसमें से कोई वैल्यू निकल रही है और हमने फेंक दिया, अब कोई उठा के ले जाएगा, वो किसी और की जिम्मेवारी है,
1: जी
0: वो कोई नहीं लेने के लिए तैयार।
1: बिल्कुल डॉक्टर रत्ना जी,
2: जी
1: बताइए, कचरा हमारे पर्यावरण में है, हमारे आसपास में है, हमारे मोहल्ले में है, हमारे घर के आसपास में, हर एक कोने में पड़ा है,
2: जी
1: तो पर्यावरण तो दूषित हो रहा है उसकी वजह से। जब पर्यावरण दूषित हो रहा है तो क्या हमारे स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ता है?
2: जी बिल्कुल, हमारे ऊपर, हमारी प्रकृति पर, हमारे खुद पर, सभी पे, सभी जो पर्यावरण में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी इफेक्ट होते हैं उसकी वजह से। हम बात करें अपनी हेल्थ की, तो जितने भी वर्कर्स हैं, जो ये रैग पिकर्स हैं, जो उठाते हैं कूड़ा कचरा, जो कचरा बीनने के लिए जो लोग उस जगह पे एक्सपोज करते हैं अपने आप को, वो डेली बहुत ही हजार्डस वेज से अपने आप को एक्सपोज करते हैं। रेस्पिरेटरी इश्यू, सांस लेने में दिक्कत होगी, स्किन की इश्यूज, एलर्जीज आ जाती हैं, ये दिक्कतें हैं, और हजार्डस सब्सटेंस है तो कैंसर होने का भी खतरा रहता है उनको।
1: जी बिल्कुल
2: और हमें इतनी, जब जहाँ पर भी खुला खुले स्थान पर कचरा एकत्रित होता है, वहाँ पर वैसे भी सारे के सारे ये छोटे जीव जंतु है, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, वो पनपते हैं उस जगह पे, तो वो अपने आप ही बहुत सारी समस्याओं का निवारण करना उस जगह का बहुत हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज की बात करें, सारी गैसेस, खुले जो कचरा है वहाँ से गैसेस रिलीज होती हैं, मीथेन जैसी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग, आजकल हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अनइवन वेदर चेंजेस आ रहे हैं, हम खुद भी फील कर रहे हैं, एक्सट्रीम गर्मी की आजकल हम बात कर रहे हैं कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, पहले इतने सालों में नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे जो समस्याएं हैं, चाहे हम ओपन डंपिंग की बात करें, हर जगह से जो गैसेज रिलीज हो रही हैं वो एयर पोल्यूशन का भी एक, एयर पोल्यूशन को भी एक उसका जरिया बन रही है। वाटर पोल्यूशन का बताएं तो हम जिस जगह पे भी ये कूड़ा एकत्रित है वहाँ पे
1: पानी में
2: लीचेट
1: भरा
2: की
1: देते हैं।
2: लीचेट की प्रॉब्लम है, वहाँ पे लीचिंग होकर सॉइल अंडरग्राउंड वाटर में जा रहा है वो, तो
1: अच्छा
2: कहीं ना कहीं वो हमारी फूड चेन के अंदर एंटर कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स में, उसके अराउंड जितने भी खेती करी जा रही है, आप देखेंगे वहाँ पर हमेशा कि इतने ज़्यादा हैवी मेटल्स अराउंड सराउंडिंग में मिलते हैं वहाँ पे कचरे में, कि वो अपने आप में वहाँ पर जो भी खेती करी जाएगी और वहाँ पर मतलब जो वेजिटेबल्स भी होंगे वो पूरी ग्रीन होंगी वहाँ पे, और क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे पोल्यूटेंट है तो वो कहीं ना कहीं आके वो हमारी मार्केट में आएंगी और वही फूड चेन के थ्रू हमारे अंदर एंटर करती है, तो इसीलिए ही कैंसर जैसी समस्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ती भी जा रही हैं।
1: कहना चाह रहे हैं कि कचरा धीरे धीरे हमारे फूड चेन सिस्टम में आके वो दोबारा से साइकिल्ड हो जाता है
2: जी,
1: और वहाँ पे आके चाहे वो हवा के जरिए वो पानी
2: चाहे पानी के जरिए हर तरह से हमारे मिट्टी के भी डिग्रेड होती जा रही है। लॉन्ग टर्म में हम देखें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उस एरिया की जहाँ पर भी ये डंपिंग होती है उसके सराउंडिंग एरियाज में बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, और सराउंडिंग में जितने भी वाटर बॉडीज हैं सबके अंदर जितने भी जीव जंतु हैं वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है वो लॉस हो रही है, सराउंडिंग बायोडाइवर्सिटी है सब, मतलब लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट चेंज है, मतलब आप समस्याएं गिनाएं कौन समस्या नहीं होती एक खुले कचरे से।
1: जी तो अरविंद जी,
3: जी
1: जैसा डॉक्टर रत्ना बता रही है कि पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान होता है इससे।
3: जी सर,
1: आप जगह जगह पे जाते हो, ट्रेनिंग भी देते हो, लोगों से बात करते हो
3: जी,
1: और इस विषय में लोग आपके पास में आते भी हैं
3: जी सर,
1: क्या आप ये सब बातें बताते हो उनको और कचरे के बारे में बताइए क्या क्या बताते हो
3: जी,
1: भाई गीला कचरा है सूखा कचरा है या फिर भाई पानी कंटेमिनेटेड हो रहा है प्रदूषित हो रहा है
3: जी,
1: इनकी कितनी कैटेगरीज होती है थोड़ा सा विस्तार।
3: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर, सबसे जो बड़ी गलतफहमी है लोगों को वो ये है कि हमें पर्यावरण को बचाना है, असल में हमें पर्यावरण को नहीं बचाना है, हमें खुद को बचाना है, क्योंकि पर्यावरण जो है एक बहुत बड़ा इशू है और हम उसके एक चींटी भर भी नहीं है, है ना
1: जी।
3: हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि हम पृथ्वी को बचाना है, हमें पर्यावरण को बचाना है, क्या हम बचा सकते हैं? हमें खुद को बचाना है
1: जी।
3: हम पर्यावरण के साइकिल को अगर डिस्टर्ब ना करें तो जो वो पूरा उसका साइकिल है वो सही हो जाएगा। बिल्कुल
1: जी, सही हो जाएगा। तो और इस साइकिल को ठीक करने के लिए कि कचरे का साइकिल ठीक
3: करना पड़ेगा। कचरा केवल एक मनुष्य ही है जो कचरा फैला रहा है, और लाखों करोड़ों जीव जंतुओं में से आप देखिए कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं है जो कि पृथ्वी पर कचरा फैला रहा है या पर्यावरण के साइकिल को खराब कर रहा हो, कोई भी नहीं है ऐसा।
1: गीला कचरा और सूखा कचरा है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो।
3: हाँ, इसके चार कैटेगरीज हैं कचरे की। एक तो है गीला कचरा, जिसको कि बोलते हैं कि जो दोबारा से रिसाइकल हो जाता है, नेचुरल, जो नेचुरल है, बायोडिग्रेडेबल है या जैविक है, जैविक कचरा और अजैविक, यानी कि जो रिसाइकल हो सकता है, ठीक है जी, वो उसमें ड्राई वेस्ट बोलते हैं उसको
1: जी।
3: गीला कचरा यानी कि जैविक कचरा जो कि बायोडिग्रेडेबल भी है, जैविक है, दोबारा से उसको जो है मिट्टी के अंदर डाल दें तो वो एक खाद का काम करेगा
1: जी।
3: ये तो हो गया हमारा ग्रीन वेस्ट या जिसको हम बोल रहे हैं जैविक कचरा। उसके अलावा है ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट में क्या आता है? प्लास्टिक, पेपर, मेटल, है ना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ड्राई वेस्ट में आती हैं, गत्ता है, लकड़ी है, ये सब ड्राई वेस्ट में आता है, रबड़ है, तो ये ड्राई वेस्ट में आ गया, यानी इन चीज़ों को हम रिसाइकल कर सकते हैं। पेपर से दोबारा पेपर बन सकता है, गत्ते से भी दोबारा बन सकता है गत्ता, प्लास्टिक से प्लास्टिक दोबारा बन सकता है उसको गला के, तो ये रिसाइकलेबल वेस्ट होता है
1: जी,
3: ड्राई वेस्ट। उसके अलावा होता है हमारा सैनिटरी वेस्ट। सैनिटरी वेस्ट में सैनिटरी पैड या बच्चों के डाइपर्स, ये वाला जो वेस्ट है ये अलग कैटेगरी है इसकी। और चौथी जो कैटेगरी है स्पेशल केयर वेस्ट होता है, जिसको डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट भी बोला जाता है, जैसे उसमें कांच आ गया या दवाइयाँ आ गई, सिरिंज हो गए यूज़ किए हुए, इस तरह की केमिकल्स हो गए, जैसे हम कीड़े मारने की दवाई यूज़ करते हैं तो उनके खाली कैनिस्टर हैं, बॉक्सेस हैं, वो चीज़ें आ गई, ये डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट में आते हैं। डोमेस्टिक अगर हम बात करें, घरेलू कूड़े की बात करें, तो ये चार तरह के हमें अलग अलग कैटेगरी में कूड़े को एज़ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, मैं बता रहा हूँ, ये चार कैटेगरीज हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में बताई गई हैं
1: जी।
3: और वैसे तो हमें अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि हमें जितना भी कचरा हो उसको कम करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
3: सबसे बड़ी समस्या है प्लास्टिक की
1: जी,
3: तो सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम प्लास्टिक को कैसे कम करें
1: जी, इस पे भी आएंगे
3: जी।
1: तो चार प्रकार का कचरा रवि जी बताया, अरविंद जी ने
3: जी सर,
1: तो आप कह रहे हो कि जब आपके पास में कचरा आता है तो सब कुछ गड्डमड होता है, मिक्सअप होता है वो, और आप बता रहे हो कि प्रोसेसिंग में चुनौतियां आती हैं उसकी, क्या क्या चुनौतियाँ आती है और क्या नुकसान होता है फिर इससे आपको?
0: देखिए जो मिक्स कचरा आता है, तो मिक्स कचरे में तो सब कुछ अलग करने की चुनौती आती है, और जब मिक्स कचरा होता है तो उसको प्रोसेस नहीं किया जा सकता। देखिए एक सीधा सा समझने के लिए मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूँ कि जो हमारा कचरा, जो घरेलू कचरा बनता है, उसमें लगभग 60 से 65% जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जिसको गीला कचरा हम कहते हैं,
1: जी
0: जिसको प्रोसेस करना बहुत ही आसान है। उसको जो है कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो हमारे एनवायरनमेंट में इजीली वापस मट्टी में चला जाता है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन तभी कर सकते हैं अगर वो अलग हो।
1: जी
0: लेकिन अगर उसके अंदर सब कुछ मिक्स हो जाता है तो
1: जी
0: हम उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
1: जी
0: बाकी जो 30-35% है, उसमें से मैक्सिमम जो है वो ड्राई वेस्ट होता है, जो रिसाइक्लेबल होता है। जो जो ड्राई वेस्ट में से जो रिसाइक्लेबल पार्ट है, वो तकरीबन 10 से 12-14% तक रिसाइक्लेबल होता है।
1: जी
0: तो वो जो रिसाइक्लेबल है, वो हम जो जिस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक बड़ी एक भ्रांति है कि प्लास्टिक जो है बड़ा नुकसानदायक है, प्लास्टिक जो है हमारे लिए बड़े परेशान करता है। लेकिन सही फैक्ट ये है कि सारा प्लास्टिक रिसाइक्लेबल होता है। अगर उस प्लास्टिक को आप अलग दे दें तो हम प्रोसेस उसको जो है कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो उसको अलग रखना जरूरी है, हमको अलग करना जो है उसके लिए बहुत जरूरी है।
1: तो इसमें ये बताएं कि जैसे हमारा सबसे पहले यही सवाल था, क्या प्रोसेसिंग में आपकी लागत बढ़ जाती है फिर?
0: लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जो उसमें से रिकवरी है, जो उसमें से प्रोसेसिंग करके जो सामान निकल सकता है, वो बहुत कम हो जाता है।
1: जी
0: तो जिसको ये कहते हैं कि हम कचरे से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अगर हम कचरे से जितनी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर वो मिक्स कचरा है तो उसकी वैल्यू जो है सिर्फ 10% से भी कम हो जाती है,
1: जी
0: मिक्स होने की वजह से। एक तो खर्चा बढ़ जाता है और वैल्यू भी कम हो जाती है।
1: जी बिल्कुल। और उसकी जो क्वालिटी है, और फिर आगे उसका जो प्रोडक्शन है, उस पे भी असर उसका पड़ता है। जी डॉक्टर रचना, आप बताएं, हम प्लास्टिक के बारे में बार बार जिक्र करते हैं, और जैसा हमारे दूसरे विशेषज्ञों ने भी बताया है,
2: जी
1: बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि प्लास्टिक सेहत के लिए खतरनाक है, और विज्ञान में भी अक्सर यही बताया जाता है कि भाई प्लास्टिक को गलाया नहीं जा सकता, इसको सड़ाया नहीं जा सकता, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, और इसके जो कंटेमिनेशन होते हैं वो हमेशा रहते हैं। तो पर्यावरण की दृष्टि से आप प्लास्टिक को कैसे देखते हो?
2: प्लास्टिक हालांकि हम सभी यूज़ करते हैं, और कोशिश हमेशा रहती है कि प्लास्टिक ना यूज़ किया जाए।
1: जी
2: हम आजकल प्लास्टिक मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स भी आए थे 2016 में,
1: जी
2: तो हमारा जो मेन पर्पस रहता है वो यही है कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें,
1: जी
2: और कोशिश करें जो हम क्लॉथ बैग की तरफ शिफ्ट करें अपने आप को,
1: जी
2: क्योंकि प्लास्टिक अपने आप में पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
1: हाँ
2: पर्यावरण, अब आप मान नहीं सकते, जो प्लास्टिक है वो एक्सट्रीम ऑफ एनवायरमेंट में एंटर कर चुका है।
1: बिल्कुल अरविंद जी,
3: जी सर
1: घरों में प्लास्टिक का खूब यूज होता है,
3: जी सर
1: रोज हम प्लास्टिक की थैलियां लाते हैं, अन्य किसी प्रकार का प्लास्टिक लाते हैं,
3: बिल्कुल
1: उसको
3: बिल्कुल
1: कचरे में फेंक देते हैं,
3: बिल्कुल सर।
1: कैसे मैनेज करें?
3: हाँ इसके ऊपर तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो मैं कहीं भी जाता हूँ स्कूलों में
1: हाँ
3: बच्चों को मैं बताता हूँ। मैं दो तीन सिंपल उपाय बताता हूँ सभी के लिए, सभी श्रोताओं के लिए।
1: हाँ
3: एक उपाय ये है कि कपड़े के, पुराने कपड़ों के 10-20 थैले बनवा लें,
1: जी
3: उसको अपनी गाड़ी में, अपनी स्कूटर में, अपने बैग में, जहाँ भी आपको असेसिबल है वहाँ पे रख लें उसको।
1: ठीक है।
3: अब आप जब भी बाज़ार जाएंगे तो हमेशा आपके पास कपड़े का थैला होगा। आपको सिर्फ आदत ये डालनी है कि आपको ये याद रखना है कि जब भी आप सामान खरीदें पॉलीथीन नहीं लेंगे आप,
1: जी
3: ये ध्यान रखना है। आप एक हफ्ते के बाद उसका रिजल्ट देखेंगे कि दिन में जब आप एवरीडे हर रोज़ आप अगर 5 सामान लाते हो तो 5 पॉलीथीन्स लेकर आते हो घर में, तो
1: जी
3: वो 5 पॉलीथीन आप एक दिन के कम करेंगे, उससे साल के कम से कम 1,000 पॉलीथीन आप बचाएंगे, कम करेंगे यूज़,
1: जी
3: और वो कपड़े का थैला जो है वो 1 साल 2 साल 3 साल तक आप यूज़ कर सकते हो।
1: जी
3: ये उपाय नंबर एक। अब मैं उपाय नंबर दो बता रहा हूँ। जो हम पीने की ये बिसलरी या ये पैकेज वाटर लेते हैं पीने के लिए, जो आजकल बाजार में मिलती है ना बॉटल्स,
1: जी
3: उनका यूज़ बंद कर दें। देखो आप 100 ml 200 ml की छोटी छोटी प्लास्टिक की बोतल आने लग गई, अब तो एक से पानी पीते हैं और उसको बोतल को हम फेंक देते हैं। मैं मानता हूँ कि प्लास्टिक की बोतल रिसाइकलेबल है और होती भी है, लेकिन कितने परसेंट?
1: बल्कि
3: 50% से ज़्यादा प्लास्टिक की बोटल्स या तो पानी में या फिर मिट्टी में पोल्यूशन का कारण बनती हैं।
1: पोल्यूशन का कारण बनती है और
3: जी
1: में जो पानी होता है उसको हम पीते हैं,
3: जी
1: प्लास्टिक होता है,
3: माइक्रो प्लास्टिक भी होता है उसके
1: अंदर।
3: जी जी जी, तो इसको आप बंद कर दें।
1: हाँ।
3: तो इस तरह के अगर हम कुछ उपाय हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम प्लास्टिक को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक के हम पैकेज, अब फूड है, आप देखिए हम स्ट्रीट फूड लाते हैं, जोमेटो किया आपने, स्विगी से फूड मंगाया, वो किस कंटेनर में आ रहा है आपके घर पे?
1: जी।
3: वो सारा का सारा प्लास्टिक खा रहे हैं आप, प्लास्टिक खा रहे हैं आप, वो इतना टेम्परेचर होता है उस फूड का, आप ये उसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि उसके प्लास्टिक के जो कण हैं उसके फूड के अंदर नहीं आए होंगे।
1: जी।
3: आप पुराने ज़माने को याद करें, आप अपना बचपन याद करें, आपके घर कितना प्लास्टिक आता था? कुछ भी नहीं। घर में खाना बनता था, स्टील के बर्तन होते थे, साफ हो जाते थे।
1: तो आप ये कह रहे हैं कि हम प्लास्टिक के यूज को कम करें।
3: बिल्कुल सर।
1: लेकिन इसमें एक और समस्या ये है कि प्लास्टिक हमारे घर में आ गया है। अब उसको निपटाएं कैसे?
3: जी, वो भी सिंपल है सर, उसको हमें अलग अलग करना है। देखो, हमें कचरे को मिक्स नहीं करना है।
1: जी।
3: अब आ तो गया, ये आ गया तो उसको हमने अब मिक्स नहीं करना है, करना सिर्फ इतना ही है, हम अलग अलग बॉक्सेस ले सकते हैं, एक में प्लास्टिक ले लें, एक में पेपर ले लें, है ना। और जो बायो वेस्ट है उसको तो हम सिंपल सा सॉल्यूशन है, या तो कहीं गड्ढे में दबा दें। अब आजकल एक और कॉन्सेप्ट चला हुआ है जो ये कंपोस्टिंग का, कई पार्कों में जो हैं कंपोस्टिंग पिट्स बने हुए हैं, हम उसके अंदर भी डाल सकते हैं अपना जैविक कचरा, या कहीं भी खाली स्पेस है, खाली लैंड है, वहाँ पर गड्ढा खोद के हम दबा सकते हैं। हम अपने घर में भी खाद बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक सॉल्यूशन दिया था, उसमें 3 बिन हमारा सॉल्यूशन है, 3 बिन कंपोस्टिंग सॉल्यूशन। उसके अंदर 3 बिन के जरिए हम अपने घर का, किचन का सारा जैविक कचरे से हम खाद बना सकते हैं। उसके लिए केवल 3 हमें कंटेनर्स चाहिए बस।
1: जी,
3: हमारा 50% कचरा जैविक कचरा ही होता है घर का।
1: बिल्कुल
3: जी।
1: रवि जी, प्लास्टिक की बात कर रहे थे और आपने बताया कि प्लास्टिक रिसाइकलेबल है।
0: जी,
1: तो इसके बारे में अपने अनुभव बताइए।
0: देखिए, प्लास्टिक जो मैंने कहा, प्लास्टिक हमारे जीवन में तो आ ही चुका है।
1: जी।
0: उससे हम पीछा छुड़ाने की बात करते हैं, शायद हम उससे पूरा तो पीछा नहीं छुड़ा सकते,
1: नहीं छुड़ा सकते, लेकिन जब आप
0: कम कर सकते
1: में आ रहा है, जब आपकी फैक्ट्री में वो पहुंच चुका है,
0: राइट,
1: ट्रांसपोर्ट हो चुका है,
0: राइट,
1: उसके आगे का समझाया।
0: देखिए, प्लास्टिक जब हमारे पास में आ जाता है तो जितना हम प्लास्टिक कचरे में से अलग कर लेते हैं
1: जी,
0: उसको हम जो है रिसाइकल के लिए भेज देते हैं। उसकी अलग अलग कैटेगरीज रहती है और वो ज़्यादातर जो है रिसाइकल के लिए चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है जो इकट्ठा नहीं हो पाया, जो नाली में छूट गया, सड़क पे पड़ा हुआ है, वो प्रॉब्लम जो है वो आती है। जहाँ तक रिसाइकलिंग का सवाल है तो प्लास्टिक सारा का सारा रिसाइकलेबल होता है, जितना आके छट जाएगा, अलग हो जाएगा, वो रिसाइकल के लिए पॉसिबल है।
1: रिसाइकल होके क्या बनता है उससे?
0: उसका दोबारा प्लास्टिक बन जाता है।
1: जी।
0: उसकी थोड़ी क्वालिटी कुछ प्लास्टिक की बराबर ही रहती है और कुछ की हल्की डेटोरिएट हो जाती है या उसमें कुछ केमिकल मिला के फिर उसको अच्छा कर दिया जाता है।
1: जी।
0: जैसे आज की डेट में अभी जो प्लास्टिक के नए वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आ गए हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से भी ये मैंडेटरी हो गया है कि आप जो प्लास्टिक पैकेजिंग बना रहे हैं उसके अंदर आप रिसाइकल्ड प्लास्टिक का यूज़ करना अनिवार्य हो गया है।
1: जी।
0: तो जैसे उसके अंदर 30%, 15% हर प्लास्टिक के अंदर, अब जो आगे प्लास्टिक जो यूज़ करने वाले हैं उनको वो यूज़ करना ही पड़ेगा और उसका सर्टिफाई भी करना पड़ता है कि या हाँ हमने रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज़ किया है।
1: जी बिल्कुल। तो लेकिन रिसाइकल प्लास्टिक का यूज़ कर रहे, क्या जो हमारा प्लास्टिक का कचरा है वो आपके पास आ रहा है, इससे प्लास्टिक के अलावा और कोई बाय प्रोडक्ट भी बन सकता है?
0: बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, प्लास्टिक से कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो मिक्स हो गए या गंदा प्लास्टिक है और उससे दोबारा रिसाइकल नहीं हो सकता, तो उससे जो है दोबारा ऑयल बनाया जा सकता है। मेरे पास में भी एक ऐसा प्लांट चल रहा है, कई जगह पे हमने लगाए हैं, कि जिसके अंदर सारा मिक्स प्लास्टिक, क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है
1: जी,
0: तो उसको वापस हम हाइड्रोकार्बन में ले जाते हैं, रिवर्स साइकिल करते हैं और उसमें से डीजल बना देते हैं। उसमें से कार्बन निकलता है और डीजल निकलता है और बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में उससे ऑयल बनाया जा सकता है।
1: क्या बाजार में इसकी मांग है?
0: ये तो डीजल है
1: जी,
0: तो डीजल तो हमेशा चाहिए।
1: बिल्कुल जी। तो डॉक्टर रत्ना, आपके पास में आ रहे हैं, और 1 लाख टके का सवाल है कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग चल रही है जैसा आपने जिक्र किया था, और इस ग्लोबल वार्मिंग में जब कार्बन ओमिशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कार्बन निकल रहा है, जहरीली गैसें निकल रही हैं, और इसमें कचरा भी कुछ आगे जोड़ रहा है, प्रदूषण में कुछ ना कुछ भागीदारी कर रहा है, तो अगर हम कचरे को ठीक मैनेज करें, इसका हम ठीक प्रबंधन करें, तो क्या कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ हम आसानी से बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, और कई देशों में तो ऐसा है कि हम उनके उदाहरण से केस स्टडी लेके यहाँ पे समझ भी सकते
2: बिल्कुल
1: हैं
2: बिल्कुल,
1: सर।
2: लेकिन मैं बेस्ट एग्जांपल इंदौर का बताऊंगी अभी, जो हमारे लिए सबसे इंडिया के क्लीनेस्ट सिटी मानते हैं इंदौर को हम। वहाँ पे जो लोगों की मतलब उसका जो सक्सेस होने का और फर्स्ट पोजीशन जो पूरे इंडिया में क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर करने का सबसे, कि वहाँ के सिटीजन्स ने पूरी इन्वॉल्वमेंट करी है अपनी, सिटीजन्स ने सपोर्ट किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, म्यूनिसिपैलिटी को, और वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लाइव एग्जांपल है। हमें खुद को भी कुछ ना कुछ ऐसे फॉलो करके, अपनी सपोर्ट के बिना, सिटीजन्स के सपोर्ट के बिना, यूथ की इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और यूथ को आगे आना पड़ेगा, सिटीजन्स को आना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, अरविंद जी
3: जी सर,
1: यूथ की बात की है डॉक्टर रत्ना जी ने,
3: जी बिल्कुल,
1: तो बताएं क्या यूथ को वेस्ट मैनेजमेंट, हमारा जो कचरा है इसको साफ करने के लिए कुछ ट्रेनिंग लेनी आवश्यक है?
3: जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी जो एजुकेशन है वो हमें स्कूलिंग में, जो बिल्कुल प्राइमरी स्कूल है ना सर, वहाँ से शुरू करनी चाहिए। आप जापान का एग्जांपल देखिए, जापान में बिल्कुल प्राइमरी जो स्कूल होता है वहीं पर इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको कैसे हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखना है। उनसे सफाई भी करवाई जाती है बच्चों से, उनसे बर्तन भी साफ़ करवाए जाते हैं अपनी मेस के, और उनके फ्लोरिंग भी साफ़ करवाई जाती है, सब कुछ उनको सिखाया जाता है बचपन से ही। तो ये चीज़ें जो है हमें स्कूलिंग में, ये दिस शुड बी पार्ट ऑफ द कोर्स करिकुलम। तो
1: जी
3: वेस्ट जो है हमारा इंडिस्पेंसेबल पार्ट है हमारी लाइफ का, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। अच्छा, एक विषय मैं कहना चाहूँगा, देखो प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक नो डाउट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट ये मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अगर आपको एक गाड़ी दे दी जाए और उसमें ब्रेक ना हो तो उसका क्या रिजल्ट आएगा,
1: जी
3: क्या होगा आप बताएं?
1: तो
3: बिना ब्रेक की गाड़ी आपको दे दी जाए तो क्या होगा उसका?
1: बिना ब्रेक की गाड़ी दे दी जाए तो उसका गाड़ी होने पर एक सवालिया निशान है उसका।
3: एक्सीडेंट होगा,
1: जी,
3: होगा
1: दुर्घटना
3: ना।
1: होगी।
3: तो प्लास्टिक जो है ये बिना ब्रेक की गाड़ी है, ये हमने बना तो दिया लेकिन हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं,
1: जी
3: हमारे पास कंट्रोल ही नहीं है कि हम इसके जो है इसका निष्पादन कैसे करें।
1: जी
3: तो गवर्नमेंट
1: कंट्रोल,
3: को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है कंट्रोल करना चाहिए,
1: जी
3: बहुत ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत है,
1: जी
3: और किन प्रोडक्ट्स में कितना प्लास्टिक यूज़ होना चाहिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट एक्शंस की ज़रूरत है।
1: बिल्कुल
3: जी,
1: रवि जी, प्रशिक्षण की बात की है, ट्रेनिंग की बात की है, चुनौतियाँ बहुत सारी हैं और इसके समाधान भी बहुत सारे हैं, तो आप चलते चलते बताइएगा कि जब प्रशिक्षण हम ले रहे हैं, युवा एक तो को खुद पे लागू करेंगे, अगर कोई कचरा प्रबंधन को रोजगार की तरह देखे, उसके लिए क्या अवसर हो सकता है?
0: देखिए कचरा अपने आप में रोजगार के नए अवसर अब दे रहा है। जो नए रूल्स आए हैं, जैसे डॉक्टर रचना ने बोला कि, तो ये रोजगार के नए अवसर जो है, इसके नए रूल्स के साथ में भी इससे नए अवसर निकल के आ रहे हैं।
1: जी
0: अभी 2026 के अंदर प्लास्टिक रूल्स के अंदर, सॉफ्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर और अपडेटेड नए रूल्स आ गए हैं। गवर्नमेंट की नॉर्म्स बड़ी स्ट्रिक्ट आ गई हैं कि आपको कचरा किस तरह से अलग अलग इकट्ठा करना है, किस तरह से उसका प्रोसेस करना है, तो वो सारी चीज़ों के अंदर जैसे जैसे वो स्ट्रिक्ट होती जा रही है गवर्नमेंट, उतना जो है नया लोगों के पास में जो है उसके लिए काम करने के अवसर भी निकल रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, तो काम करने के अवसर निकल रहे हैं और रोजगार उन्मुख भी हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि कचरा प्रबंधन के विषय में ये जो परिचर्चा थी, इससे श्रोता लाभान्वित होंगे, और डॉक्टर रत्ना बटेरिया जी, अरविंद भाटिया जी और रवि कपूर जी, आपने इस परिचर्चा में भाग लिया, आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
3: धन्यवाद सर,
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
4: कचरा प्रबंधन समस्या समाधान चुनौतियां व आवश्यकता, अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर परिचर्चा। प्रतिभागी थे डॉक्टर रचना भटेरिया, अरविंद भाटिया और रवि कपूर। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे विनय कुमार। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। कुछ ही क्षणों बाद आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से प्रस्तुत है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके दोस्त शशि का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, लेकर हाजिर हूँ आपके भेजे गए खत और उनमें बसी कुछ फरमाइशें।

हेमंत कुमार की आवाज में गीत अभी आपने सुना फिल्म जाल से। गीत साहिर का था, संगीत एस टी बर्मन का, पसंद आप सभी की। पुरानी दिल्ली सीताराम बाजार से नरेश देवी, धामणी मानोरा से तुलसीराम पेंटर डेरे, माया डेरे, संदेश डेरे, आदेश, किरण, प्रज्वल और दादुल्या डेरे, सोमठाणा जिला वाशिम से डॉक्टर विशाल, चंद्रकांत पाटिल, नीलू पाटिल, शेखर सोनाने, नितिन, किशन वायले और आकाश ढोले। इसी गीत को सुनना चाहा था गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर चौंधले और आरती चौंधले ने। बेरड़ी से इस गीत के लिए मैं चिट्ठी लिखी हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु ने। पटेल नगर मलोट पंजाब से खत लिखा डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और आरजू जाजोरिया। मुक्तसर से आप हैं बब्बू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत और निशु। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश ने। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से चिट्ठी लिखी ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय ने। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से फरमाइश लिख भेजी है प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय ने। शेरपुर कला गाजीपुर से आप हैं अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। संबलपुर कांकेर से फरमाइश भेजी है फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव और तेजल यादव ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। करनाल से खत लिखा मीनाक्षी तिवारी और सुधीर नूतन ने। दतरेंगी से चिट्ठी लिखी भागवत वर्मा ने। आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी की आवाज में चंद्रकांता फिल्म का गीत। गीत साहिर का लिखा है, संगीत एन दत्ता का।

भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। मॉडल टाउन करनाल से चिट्ठी लिखी है संदीप कुकलानी, जग्गी दुआ, नरेंद्र तनेजा, सुनीता जैन और सुनीता शर्मा, साथ ही किरण ठाकुर ने। मलोट कैंप पंजाब से फरमाइश लिख भेजी है सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विवान, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी ने। सुरेवाड़ी औरंगाबाद से आप हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्राजक्ता प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर। गांव कैरों जिला तरन तारण पंजाब से चिट्ठी लिखी है गुरदर्शन लाल चलूत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशब्द ने। मुकाम हिपरसोगा तालुका ओसा जिला लातूर से आप हैं उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैज नबी, शाकिर शेख, इस्लाम भी शेख, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सिमर शेख, सानिया शाकिल पठान, बिस्मिला भी शेख, गदर शेख और नीलोफर शेख। हिपरसोगा तालुका बिलोली जिला नांदेड़ से आप हैं चांदनी अयूब सैयद, बाल राजे अमन सैयद और माहिरा सैयद। आदर्श नगर मलूट से फरमाइश लिख भेजी है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा ने। चंडीगढ़ से चिट्ठी लिखी है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। आप सभी को आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं बरसात की रात फिल्म का गीत। आवाजें हैं सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की। गीत साहिर का है, संगीत रोशन का।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमें चिट्ठी लिख भेजी है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। लिखने वालों के नाम हैं अभिजीत गवहणकर राही, सरिता गवहणकर और प्रिंस एकांश गवहणकर। बदलापुर मुंबई से आप हैं सिद्धांत गवहणकर और प्रणीता गवहणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से आप हैं वैशाली शैलेश गवहणकर, श्वेता सुमित गवहणकर, ध्वनि गवहणकर और टुक टुक। जरूड वरुड महाराष्ट्र से आप हैं बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक युवराज। पुणे से आप हैं पंकज वाड़ोदे और साथ ही आर्या और प्रियंका। चकला बाजार सामाना से चिट्ठी लिखी है पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल और समस्त खुशदिल परिवार ने। गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। आप सभी ने सुनना चाहा है कभी अंधेरा कभी उजाला फिल्म का गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और मन्ना डे की। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत ओपी नैयर का।

0: प्यार की हवाएं काली रात की घटाएं आ जा।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अगली चिट्ठी हमें मिली है राजनगर मधुबनी बिहार से। लिखने वालों के नाम हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से लिखते हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक और पंखुरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से आप हैं मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मयराज और गुनगुन। और ये ख़त हमें लिख भेजा है जलगांव सोमनाथ ज़िला जालना से। लिखने वालों के नाम हैं डॉक्टर रामदेव भूतेकर, अभिषेक, गणेश, कार्तिक, अश्विनी। औरंगाबाद से आप हैं वैष्णवी जगदाले, हरसुल सावंगी। भाव सिंहपुरा औरंगाबाद से आप हैं वैभव गौरव लोखंडे। और वाकुलनी बदनापुर से है फरमाइश भेजी हमें मेघराज युवराज कोलते, रिधौरा देवी और रुद्र ने। मलोट पंजाब से चिट्ठी लिखी है राजकुमार इंदौरा, बिमला, गैरी, विकास, प्रियंका, रमन, रितु, भविंश, मिशेल, किंशुक और दीपांशी इंदौरा ने। अलीका डबवाली से आप है बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। भटिंडा रोड डबवाली से खत लिखा राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने। महादेव घाट अमलेश्वर से चिट्ठी लिखी है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर ने। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से खत लिखा पूर्णिमा सारथी, पूजा, आरती, भव्या और सुषमा ने। नवागढ़ कटई से फरमाइश लिख भेजी है।

आपके भेजे गए पत्रों पर आधारित पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं प्रसार भारती की ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी। ये चिट्ठी हमें लिख भेजी है नया पारा भिराई से। लिखने वालों के नाम हैं बसंत सिंह, बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी, ईश्वर राज, चंद्रकांत, प्राची और टीयूषी सूर्यवंशी। DLF कॉलोनी रोहतक से खत लिखा है महेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, जितेंद्र, मानसी, कपिल और हर्षित शाह ने। खुर्जा उत्तर प्रदेश से आप हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से चिट्ठी लिखी है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहानी। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से आप हैं बबलेश पवार, डैनी और मनीष। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतद बिरक और मीका बिरक। आप सभी ने सुनना चाहा है आजाद फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत राजेंद्र कृष्ण का है, संगीत सी रामचंद्र का।

0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में ये चिट्ठी हमें मिली है गोविंदगढ़ माछीवाला श्रीकरणपुर राजस्थान से। लिखने वालों के नाम हैं राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला, गुड्डू, जीनू, मन्नू, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत वडवाल, शिव सेठी, करणपुरी और स्माइल टुटेजा। गांव नथाना पंजाब से आप हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से खत लिखा है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये ने। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत और मनविंदर पांधा। और ये खत हमें लिख भेजा है वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कौर और मोहम्मद शादाब खत्री ने। अनारकली बाजार जगराओं से चिट्ठी लिखी है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गाव्या और सुच्चा पाठक ने। आप सभी को सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर पतंगा फिल्म का गीत। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की है। गीत राजेंद्र कृष्ण का है, संगीत सी रामचंद्र का।
1: पतंगा पतंगा जल जल जल।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आदर्श गांव बलियाली जिला भिवानी हरियाणा से चिट्ठी लिखी है दर्शनलाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण, ममता, कमल और गर्विश, साथी तमन्ना बंसल ने। महाराष्ट्र हिंगोली से आप हैं शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। और कनेरा मोहल्ला पटियाला से चिट्ठी लिखी है बत्ता परिवार ने। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। आप सभी ने सुना चाहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कोहिनूर फिल्म का गीत। गीत शकील बदायूनी का है, संगीत नौशाद का।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमें चिट्ठी लिखी है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और धनक्ष आरू साहू ने। डबवाली हरियाणा से आप हैं जेके बोकोलिया, सुनीता बोकोलिया, संजय, अनिल और मीनू बोकोलिया। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। खंडवा से मोहम्मद रफीक पंवार, मोहम्मद साकिब पंवार और मोहम्मद हसनैन पंवार। गांव दीवाल से शंकर लाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। गांव छेंगा देवी खंडवा से अशोक कुमार वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री, आरोही और कान्हा। आप सभी को आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं आन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कैथल से खत लिखा है सागर और आम्रपाली ने, लुधियाना से बसंत लाल और कोमल, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर। आप सभी ने सुना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में दो आंखें बारह हाथ का फिल्म का गीत। गीत भरत व्यास का है, संगीत वसंत देसाई का।

सादुल शहर से खत लिखा है ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान ने। और ये चिट्ठी हमें लिख भेजी है सिराजपुर गणेशपुर से। चिट्ठी लिखने वालों के नाम हैं हिना कौसर, मोहम्मद वकील, फिरोज आलम और नाज परवीन। आप सभी को आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं दाग फिल्म का गीत। आवाज़ तलत महमूद की है, गीत साहिर का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अमरावती से ख़त लिखा है कमरुल्ला नसीम बेगम, आयशा ख़ान, हदीमा ख़ान, आसमा, सानिया, शोएब ख़ान, मुश्तबा ख़ान, रऊफ़ और शाहिद ने। हिसार से आप हैं राजेंद्र सैनी और राहुल सैनी। आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में यहूदी फिल्म का गीत। गीत शैलेंद्र का है, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: जाते।
1: इस गीत के साथ ही अपने दोस्त शशि को दीजिए इजाजत कार्यक्रम भूले बिसरे गीत संपन्न करने की। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार हम अपने केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक

0: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत